0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं अपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड नेम एंड फेम इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो भी कभी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या परमानेंट खुशी जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कहाँ से तलाशना है, और उस परमानेंट खुशी के लिए क्या करना है, ये नॉलेज उन लोगों में बहुत यंग उम्र में ही मिलने लग गई है। मैंने जैसे बोला कि 36 इयर्स मुझे लगे कि वहां मेरा सर्च शुरू करने के लिए, तो मेरा बेटा जो 7 साल का था, ही वॉज रियली ब्लेस्ड। उसको अनोइंगली वो दीक्षा मिली, अनोइंगली उस पाथ को चुनने का मौका मिला, एंड देन ही कुड गो मूव फॉरवर्ड। उसी तरह से मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त किया, देन माय पैशन, इट वाज माय पैशन टू टेक अलोंग पीपल ऑन दिस पाथ, हैंड होल्ड करके लोगों को, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने आत्मज्ञान के रास्ते पे चलने का, उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाने का मेरा पैशन रहा है। हीलिंग वाज माय पैशन। पहले मैं बीमार थी, उसमें से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस जर्नी पे चलती रही, और चलते चलते जितने लोगों को पॉसिबल है, जितने लोगों को चाहिए, इच्छा है, उन लोगों का हाथ होल्ड करके मैं आगे लेके चलना ही मेरा मकसद बना लिया अपने जीवन का
0: जी।
1: तो इसमें मैंने पाया है कि 8 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक तब को मैं इस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ। आई फैसिलिटेट द कोर्सेस फॉर देम। तो वो कोर्सेस के माध्यम से उनको अनोइंगली नोइंगली वो कौन है ये जानने का मौका मिल जाता है। और जो अल्टीमेट चीज है, हम इस पृथ्वी पे आए क्यों, क्या करना चाहते हैं,

0: उसके रास्ते पे उनको ले जाना शुरू कर देती हूँ. तो आई फील दैट यंगर जनरेशन इज रियली ब्लेस्ड. और मैं देखती हूँ कितने यंगस्टर्स हैं जो एक बार इस रास्ते पे एक चख लेते ना, जैसे कि आंखें बंद किया और आपने ध्यान अपने सांस पे लेके गए, सी हु यू आर, आपको समझ में आने लगता है.
1: वाह,
0: और आज के डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सारे स्ट्रेस में ही हैं, और जैसे स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ भी रास्ता अगर थोड़ा सा भी उनको चखा दो तो दे आर गोइंग डीपली इन टू इट. तो आई वुड से कि इवन इफ दे आर फॉलोइंग ए ट्रेंड, इट नेवर माइंड, बट वो रास्ते पे चल पड़े ना.
1: जी
0: और वो जो चलना शुरू करते हैं फिर उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ इस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं. सो दे आर एंजॉइंग दैट अल्टीमेट ब्लिस एंड परमानंद जो है वो महसूस कर पा रहे हैं.
1: ऑल
0: तो
1: राइट,
0: उससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं हमें.
1: बहुत सुंदर, विचार करने वाली बात है। और हमें विश्वास कई कई बार हो जाता है कि हम यूथ से या आज की जनरेशन से थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबली हम चाहते हैं कि वो हमारी तरीके की जिंदगी जिएं, लेकिन उनको भी पूरा हक है अपने तरीके से जीने का। तो रोहिणी जी ने बहुत प्यारे ढंग से हमें क्लैरिफाई किया, समझाया है। आइए विचार करते हुए इस भजन को सुनें और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत सुंदर। और जाहिर से बात है रोहिणी जी, जैसे जैसे हमने पिछले सवाल में थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपने हमें बताया, हमको समझ में आई बात। और आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है हम पर, हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि वो हमारे मतलब हमको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा पूछा। सोशल मीडिया समझिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इतने फास्ट इम्प्रूव हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सोशल मीडिया क्या, ये सब चीजों की वजह से तो हमें कोने कोने में बैठे हुए भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी से पता चल जाता है, इज़न्ट इट
0: जी।
1: तो अब इसके दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी चलती थी तो लोग, सिर्फ एक टीवी ही थी और कुछ थी नहीं, तो लोग उसमें ग्लूड हो जाते थे, बट देन देयर वाज अ टाइम कि दे वर फेड अप ऑफ दैट, दे कुड कम आउट ऑफ इट। सिमिलरली ये भी आप मानिए, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फेसबुक है, लोग उसमें गुम हो जाते हैं। हाँ, उनमें से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, वो खुद अपने विजडम से उनको ये यू नो दे नीड टू हैव देयर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बात सच्ची है कौन सी बात झूठी है, इतना तो विजडम उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। और वो मीडिया के वजह से वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी बहुत जरूरी है। बट ऑल सेड एंड डन, सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड इज गुड। इट्स गुड दैट सोशल मीडिया के वजह से काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिन जिन को रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ टटोलते टटोलते बाई चांस एक्सीडेंटली भी अगर उसमें कहीं देख लेते हैं एंड देयर उनका इंटरेस्ट जग जाता है, तो इट कैन कॉज एन अवेकनिंग इन देम। सो यू कैन टेक इट इन बोथ वेज
0: जी,
1: सोशल मीडिया कैन इंपैक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, और बहुत ही अच्छे वैल्यूज के साथ में सोशल मीडिया को अगर लेके चले तो इट विल हैव वेरी गुड इंपैक्ट ऑन इवन स्पिरिचुअलिटी एंड द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं।
0: आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात बार बार कही जा रही है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड, हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना होगा। इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि हम अपना नुकसान कर बैठें, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए, ये एक थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करने का, विचार कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।

0: और है जो पीछे नहीं रह सकता, वो है रिलीजन। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन आध्यात्म और धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, हमें बताइए ना, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है?
1: धर्म तो वो हुआ जिसमें आप लोग पर्टिकुलर रिलीजन से आप पैदा हुए हो, उसी रिलीजन में जहाँ पे आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप आपके आत्मा ने उन पेरेंट्स को चुना और इस रिलीजन को चुना, आप पैदा हुए और उसमें चल रहे हो, एक आस्था के साथ चल रहे हो, दैट इज अ रिलीजन। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द रिलीजन। आप अगर एक बनाना लोगे, बनाना का जो छिलका है वो समझिए कि वो रिलीजन है, और बनाना जो है वो है स्पिरिचुअलिटी है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल अगर बोलो तो।
0: जी जी जी जी
1: तो हम लोग क्या कहाँ फंस गए, हम लोग सारे अपने अपने रिलीजन के मतलब बनाना के छिलके में फंसे हुए हैं। बनाना को टेस्ट करना और बनाना को एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो बंदा स्पिरिचुअल होता है, आई मीन स्पिरिचुअल पाथ में जो चल पड़ता है, उसको ही इज एबल टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड and he understands the true being of love. You are made up of love and you are love. To wo ek experience hai, spirituality is an experience, I would say.
0: Ji.
1: Aur wo experience aapko itna mature kar deta hai ki aap har kisi mein positive cheez hi dekh sakoge aur प्रेम से दुनिया को कनेक्ट कर सकोगे, क्योंकि होल वर्ल्ड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट द कॉन्शियसनेस ऑफ प्योर लव, और आप कण कण से आप जुड़ सकते हो विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ लव। होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ लव, तो ये हमें उस तरह से कनेक्ट कर सकता है, और स्पिरिचुअलिटी इज दैट, आई वुड से। और रिलीजन में तो वो बात वहां से कुछ और में चली जाती है ना? तो रिलीजन इज फर्स्ट स्टेप, यू कैन से एटलीस्ट रिलीजन, एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, कुछ आस्था है, कहीं पे श्रद्धा भक्ति बनी हुई है उनके अपने ही तरीके से, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप इसको आगे मिला के ले जा सकते हो।
0: I get you point. दोस्तों, अगेन बहुत ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये हल्का फुल्का विषय वैसे भी है नहीं, क्योंकि जब ये पूरी जिंदगी को बदल के रख देने की ताकत रखता है तो गहराई से विचार तो दोस्तों करना होगा ना। चलिए एक प्यारे से भजन को सुनते हुए विचार करते हैं, मेडिटेट करते हैं।

0: वाह
1: बहुत सुंदर। अब एक शब्द मुंह से निकल गया मैम, मेडिटेशन।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे आपने मेडिटेशन बोला था वाह बोला
1: जी। सो क्या अध्यात्म में मेडिटेशन का रोल है, किस तरह से है? अगर है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं मेडिटेशन को? मतलब इसका मतलब हुआ ध्यान। तो मैं एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल रही है ध्यान का मतलब क्या है मैम, और क्या अध्यात्म में ध्यान अगर हम यूज करें तो कुछ ज्यादा फायदा है, मतलब व्हाट इज द यूसेज?
0: बिल्कुल सही बोला आपने। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो सदियों पुरानी हमारे जो संस्कृति है भारत की, हजारों साल से लोग मेडिटेट करते रहे हैं। ऋषि मुनिया जो जो हमारे गैंजेस के बैंक्स के ऊपर बैठ के करते रहे हैं, दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट लेटिंग गो, जस्ट लेट गो ऑफ योर सेल्फ। आपके क्रेविंग्स या अवर्शंस को लेट गो करना ही है और कुछ नहीं है। इट इज वेरी सिंपल टू लेट गो, और वो ही हम कर नहीं पाते हैं। जैसा ही हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस बनती है। वेरी सिंपली आई वुड से पास्ट क्या है? पास्ट तो चला गया, क्या आप उसको लेके आ सकते हो? क्या नहीं ला सकते? और फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हो आगे क्या होने वाला है?
1: कुछ नहीं पता,
0: आगे का भी हमें पता नहीं। बड़ी सिंपल, एक बड़ी सुंदर एक सॉन्ग है, आई रिमेम्बर, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। Isn't it?
1: Absolutely.
0: तो जो भी है वो सिर्फ यही इस पल है, और इस पल की गहराई में जाना जो है वो मेडिटेशन है। So whatever you are doing, you are fully into that, पूरे दिल जान से आप जो भी काम कर रहे हो, जब उसके अंदर आप घुस जाते हो, that is meditation. You know, fully being your 100% in that work, whatever you are doing is meditation. और इस पल को जीना वही meditation बोलते हैं।
1: जी।
0: और इसी पल के लिए very beautifully it has been said, present is a, it's a gift, isn't it?
1: Correct.
0: ये पल जो है gift है, वो आपके लिए present है वो।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: इसको ही समझना हमारे लिए बहुत important है, and it's a very beautiful technique जो हम अपने सांसों के माध्यम से meditation के अंदर जा सकते हैं, and breath is the one that connects you to the outer activity and the inner world.
1: Yes.
0: आप आंखें बंद करो, और एक मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद करें और ध्यान अपने सांस पे ले जाएंगे, जस्ट फॉर ए मिनट,
1: जी,
0: कैन यू डू दैट? आप आंखें बंद करो और ध्यान अपने सांस पे ले जाएं, धीरे से आंखें खोले, यू फील सो रिलैक्स्ड।
1: Absolutely.
0: So I can make you meditate just for 10 minutes and you can experience and let me know how you feel it.
1: Of course.
0: आपना रास्ता जो है, बोलते ना ब्रह्म ज्ञान खुद के अंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने अंदर ही दबा दिया है। It is everything is inside you and you are as a human being searching outside everything. तो वापस अपने घर का रास्ता, मतलब ये मान के चलो कि मेरा जो मकसद बना है आपको आपसे पहचान कराना, यू नो, खुद से खुद का जो मिलन है
1: जी,
0: वही है रास्ता अपने आप अंदर ले जाने वाला, और जो आपको आपके हु यू आर पे ले जाता है, आप समझ पाओगे। दैट इज इट,
1: आई गेट यू।
0: अल्टीमेटली बस अपने अंदर ही जाना है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया से हमने अपने आप को समेट के अंदर ले जाना सीखना है।
1: Correct.
0: और इसके लिए अगर आपके लाइफ में कोई भी गुरु अगर मिल जाता है, गुरु मीन्स एनी वन हु कैन गाइड यू with confidence into that direction. Guru is nothing like आपके कमरे के बाहर रोशनी है, धूप है, आपके कमरे के अंदर धूप आने के लिए आपको खिड़की खोलना पड़ेगा ना.
1: एब्सोल्युटली.
0: तब खिड़की से रोशनी आ सकती है, धूप अंदर आ सकता है. तो गुरु इज द वन हु इज ब्रिंगिंग लाइट इन टू योर लाइफ. यू हैव टू डू एवरीथिंग इज जस्ट लाइक यू नो, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, रेलिंग का सपोर्ट हो तो आप बहुत आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो.
1: जी.
0: अगर रेलिंग नहीं है तो आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है. सो गुरु कैन मेक योर लाइफ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन विच यू कॉल इट द स्पिरिचुअलिटी, टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. तो ब्लेस्ड आई एम. मुझे भी टाइम लगा था एक गुरु मेरे जीवन में आने के लिए, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज ब्लॉक्ड. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी पूजा पाठ करने वाले थे, तो मुझे तो लगा कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं अपने आप जो कर रही हूँ दिस इज द ओनली वे करके. बट वेन आई रियलाइज, जब मेरे लाइफ में एक गुरु आए, एक पहला अपना तबीयत बिगड़ गया था जिसके वजह से मैं डेथ बेड पे जाके आई थी. As I told you, I lost my mother when I was 34, and I myself went into death bed when I was 35. जब वहां से लौट के आई तो बोलते ना, एक रात के अंधेरे में जब आप चले जाते हो तो सुबह तो एकदम immediately after that is सवेरा only.
1: Correct.
0: Midnight के बाद में तो सवेरा आने वाला है. So I had gone to that lowest ebb, and then when I came out, I could see the sun. I could see the light in my life, and that was the path that I kept holding on to. And commitment ke saath mein wo sadhana karna bahut hi zaruri hai. Agar aapka maqsad aap apne aap ko janna chaho ki main kaun hu, main kahan se aayi hu aur main kahan ja rahi hu, to is cheez ke prashnon ka jawab ke liye to aapko sadhana commitment ke saath mein karna bahut hi zaruri hai.
1: Ji. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार किसी पर्टिकुलर इवेंट से इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेट होकर और प्रोबेबली प्रेशराइज होकर कोई चीज सीख लेते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि उसके बेनिफिट्स कितने थे जो हम शायद आसानी से सीख भी सकते थे. दोस्तों आज मौका है रोहिणी जी की बातें सुनकर स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का, अपने आप को पहचानने की कोशिश करने का, कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने अंदर झांक लीजिए. बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुंदर. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से भजन को सुने और फिर मैं वापस आता हूं रोहिणी जी के पास.

0: बहुत सुंदर। रोहिणी जी, आपकी सारी की सारी बातें सुनकर अगर कोई व्यक्ति ये तय करे कि अभी तक तो चलिए मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं आध्यात्मिक बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा, तो आप उसको मतलब दो तीन सिंपल, बहुत सिंपल कोई स्टेप्स बताइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया होगा वो इंसान इस चीज के लिए, तो 1 2 3 कुछ स्टेप्स बताइए कि क्या करे वो।
1: जैसे आपने बोला कि एकदम फ्रेश बंदा है और उसने शुरू करना है कुछ आध्यात्म के रास्ते में
0: जी,
1: पहले उसके अंदर वो मैच्योरिटी आनी है कि हाँ मैं कौन हूँ जानना चाहते हो तो आप ये समझो कि आप इस रास्ते पे चल सकते हो।
0: Okay.
1: आप सिर्फ बॉडी हो क्या, या आपने जो भी लाइफ में एक्वायर किया है वो सारे आपके साथ शुरुआत से नहीं थे, आपने एक्वायर किया हुआ है। आर यू ओनली दैट? इज देयर एनीथिंग समथिंग बियॉन्ड दैट? आप सिर्फ खाना पीना सोना या वेल्थ एक्वायर करना, नेम फेम करना, इतना ही समझते हो क्या लाइफ, या लाइफ में कुछ और भी है, या ऐसा कोई चीज है जो परमानेंट खुशी नाम की चीज है? लाइफ इज एटर्नल बोलते हैं, क्या उस चीज को जानना चाहते हो? लाइफ इज एटर्नल कहाँ है, कैसे है? तब वो इस रास्ते पे चलने के लिए शुरू हो जाते हैं।
0: ओके,
1: अगर ये क्वेश्चंस उनके अंदर उठना शुरू हुआ तो वो समझो कि इस बात पे पैर रखने के लिए तैयार है। और यहाँ शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं, आज के डेट में लोग इतना परेशान, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है हर इंसान का, इवन छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, एवरीवन इज गोइंग इनटू स्ट्रेस। डू यू एग्री टू दैट?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
1: तो अब पहला क्वेश्चन, आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो क्या? तो डेफिनेटली एवरीबडी वुड लाइक टू गो आउट ऑफ स्ट्रेस एंड बी हैप्पी एंड जॉयफुल ऑलवेज, कम व्हाट मे बी द सर्कमस्टेंसेस। डू यू वांट टू कम बैक टू दैट जॉयफुल स्पेस इन यू? तो अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो जैसे आपने बोला है, मेडिटेशन इज वन ईजी वे, सहज मेडिटेशन है जो एफर्टलेसली कर सकते हैं। अब मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करना है, क्या आप आंखें बंद कर सकते हो? और कोई गाइड कर रहा हो तो उसको गाइड सुनते सुनते आप कर सकते हो कि नहीं, वो देखो। वेरी सिंपली आई कैन से आई विल जस्ट गाइड यू इनटू अ मेडिटेशन जस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड सी। 10 मिनट्स क्या, 5 मिनट, 2 मिनट भी आप शुरुआत करते हो तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ध्यान आंखें बंद करना है।

0: अपने सांसों पे ले जाना है। पहला ब्रेथ जो है, आप जब आए थे यहाँ पे दुनिया में पहला काम क्या किया था? पहला सांस लिया
1: सांस ले
0: था,
1: ली, ऑफ कोर्स।
0: है ना। और लास्ट हम क्या करते हैं बॉडी छोड़ने से पहले? लास्ट सांस लेते हैं,
1: सांस लेते हैं
0: छोड़ देते हैं, सांस छोड़ी और बाहर गए,
1: जी
0: इजंट इट?
1: जी
0: सो द होल लाइफ इज बिटवीन दैट फर्स्ट ब्रेथ दैट यू हैव टेकन एंड द लास्ट ब्रेथ दैट यू आर गोइंग टू लीव। और वो बीच में जो भी गुजरा है, अप्स एंड डाउन, वो हमारी लाइफ रही है। और ये सांस ही है, ये सांसों का डोर ही है जो आपको, आपके माइंड को और आत्मा को कनेक्ट करता है। तो
1: राइट
0: आपके आत्मा तक पहुंचने के लिए ये सांसों की डोर के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। हम
1: करेक्ट
0: कौन हैं उसका पहचान कराने का, खुद के अंदर दिव्य दर्शन करने का मौका मिल सकता है अगर हम सांसों की रिदम के माध्यम से जाएं। सो आई टीच इन फैक्ट सुदर्शन क्रिया, जिसमें आपको ये मौका मिल जाता है खुद का दिव्य दर्शन प्राप्त करने का।
1: वाह
0: दैट
1: ब्यूटीफुल।
0: वेरी सिंपली, वेरी इजीली दैट कैन बी डन विद अ ह्यूमन बीइंग इस हम ब्रह्मास्मि तो हम सभी सुनते हैं।
1: सुनते
0: द
1: हैं
0: होल वर्ल्ड इज वन, इट इज फुल ऑफ वन कॉन्शियसनेस। नो द साइंटिफिकली देखो तो पूरा दुनिया एक जनरल वाइब्रेशन ही है। हम उस वाइब्रेशन को, जनरल वाइब्रेशन को अलग महसूस करते हैं, इसलिए हमारे अंदर वी फील दैट देर इज अ स्पेशल वाइब्रेशन इन अस। व्हेन वी लेट गो दिस स्पेशल वाइब्रेशन इन अस एंड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग वननेस विद दिस यूनिवर्सल वाइब्रेशन, तो आप ये समझो खुद का, आत्मा का, परमात्मा का मिलन हो चुका है और उसी पे जाना है हमने,
1: राइट मैम,
0: इजंट इट?
1: एब्सोल्युटली, बहुत
0: एंड
1: खूबसूरत,
0: दैट
1: बहुत
0: इज
1: खूबसूरत।
0: पॉसिबल। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से सांसों के माध्यम से हम कर सकते हैं। टेकिंग अटेंशन टू योर ब्रेथ, कीप टेकिंग अटेंशन टू योर ब्रेथ कॉन्शियसली, बार बार उसको लेके आना है। हाँ, लोग समझते हैं कि मेडिटेशन मतलब थॉटलेस हो जाना, दैट इज नॉट इट। आप माइंड को जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट दैट रेजिस्टिंग द थॉट्स एंड यू नो, जैसे आप रिजेक्ट करते हो, रेजिस्ट करते हो थॉट्स को जस्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट मेडिटेशन मीन्स थॉटलेसनेस, वो गलत कॉन्सेप्ट है। मेडिटेशन इज नॉट बीइंग थॉटलेसनेस, मेडिटेशन इज एक्सेप्टिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग, विटनेसिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग ऑन योर माइंड। सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, थोड़ा सा हमने बस लेट गो ही करना है। जैसे ही लेट गो करते हो आप वो शांति एक्सपीरियंस करने लगते हो, स्ट्रेस आपका डिसॉल्व होने लगता है। द मिनट आपका स्ट्रेस कम हुआ यू विल फील मोर एनर्जेटिक। हमें सिर्फ एनर्जी तो चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, जो भी काम कर रहे हैं पूरा अच्छे से करने के लिए, और पूरा दिन ही हम एनर्जेटिक फील करें और किसी भी तरह की चैलेंज को हम कम कर पाए, उसके लिए जो शक्ति चाहिए, मन को चाहिए, माइंड को भी चाहिए, वो शक्ति आपको मेडिटेशन से और सांसों के ध्यान पे करने से आपको आ जाएगा।
1: राइट मैम, दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जैसा मैम ने बताया, और उसको अपनाना, उसको प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत खूब रोहिणी मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, थैंक यू सो वेरी मच। आज बहुत सारे मिथक हमारे दूर हुए हैं, बहुत कन्फ्यूजन्स हमारे क्लियर हुए हैं, और सिंपल रास्ते हमें मिले हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत सारी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मे योर जर्नी बी कंप्लीट एंड होल, दैट्स व्हाट आई वुड विश एवरी लिसनर। हमारे यहाँ पे जो भी आपको सुन रहा है, सब अपने अपने तरीके से, रास्ता सभी का एक ही है, हम अलग अलग रास्ते से जा भी रहे हैं, पर्पस एक ही है और जाना भी हमने एक ही जगह में, दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए ही हम इस पृथ्वी पे आए हैं। बस वो अगर हमें समझ में आए तो हम बड़े आराम से निकल सकते हैं।
1: राइट मैम,
0: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू,
1: थैंक यू। मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: रामपुर
1: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

0: सुनते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
0: ये है कैसा जादू मेरे लिए, तो सच भी भरम है। सुनिए
1: कहिए कहिए,
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए कहिए ना।

दोस्तों, जिस नाश्ते को आप रोज खाते हैं वो शायद एक भूल की देन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज सुबह आपने नाश्ते में क्या खाया? पोहा, पराठा, उपमा, इडली, या फिर उन क्रिस्पी फ्लेक्स में दूध डालकर खा लिया जो बोल में तैरते हुए बहुत शरीफ से लगते हैं? अगर आपने सीरियल खाया है तो जरा ध्यान से सुनिए आज की कहानी को, क्योंकि आज की कहानी उसी सीरियल की है। और यकीन मानिए, इस कहानी में एक डॉक्टर है, एक भूल है, एक किचन एक्सीडेंट है, दो भाई हैं, थोड़ा गुस्सा है, थोड़ी जिद है, और फिर अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक छोटे से शहर से, नाम था बैटल क्रीक। सुनने में तो लगता है जैसे कोई एक्शन फिल्म का टाइटल हो, लेकिन वहां जो हो रहा है वो किसी एक्शन फिल्म से कम भी नहीं है। दोस्तों, वहां एक डॉक्टर रहते थे, डॉक्टर जॉन हार्वी केलॉग। नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही अनुशासित, बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अलग सोच वाले, इतने अलग कि लोग उनके हेल्थ रिट्रीट को अमेरिका की सबसे अजीब जगह कहते थे। सोचिए, आप वहां पेशेंट बनकर गए हैं और आपको कहा जाता है ना चाय, ना कॉफी, ना मीट, ना शराब, ना कोई चटपटा खाना, ना समोसा, ना कचौड़ी, ना मिर्ची बड़ा, ना चाट, बस सादा सा खाना, बिल्कुल फीका, बिल्कुल सीधा। आज के जमाने में तो लोग पहले दिन ही गूगल रिव्यू पर एक स्टार देकर भाग जाएंगे ऐसे रिट्रीट से। क्यों भागेंगे ना? सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, ठंडे पानी से ट्रीटमेंट, खुली हवा में एक्सरसाइज, और फिर एक ऐसा खाना जिसे देखकर भूख भी सोच पड़े। डॉक्टर साहब का मानना था कि ज्यादा स्वादिष्ट और मसालेदार खाना इंसान के मन में अनावश्यक इच्छाएं पैदा करता है। उनका विश्वास था कि सादा भोजन शरीर और मन दोनों को शांत रखता है। अब ये बात कितनी सही है और कितनी नहीं, इस पर दुनिया आज भी चर्चा कर रही है। लेकिन एक बात तो पक्की थी, पेशेंट्स बोर हो रहे थे और बहुत बोर हो रहे थे। किचन स्टाफ भी परेशान था, रोज वही फीका खाना, रोज वही सादापन, और सभी सोच रहे थे कुछ नया कैसे बनाया जाए। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। किचन में गेहूं पकाया गया, लेकिन किसी वजह से वो रात भर वहीं पड़ा रह गया। भूल गए, होता है। बस, कभी आपने दूध गैस पर रखा और भूल गए ऐसा हुआ है? कभी मोबाइल चार्ज पर लगाकर भूल गए ऐसा भी हुआ है? वैसे ही किचन वाले गेहूं को भूल गए। सुबह देखा तो गेहूं बासी हो चुका था। अब आम तौर पर तो उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन किसी ने सोचा चलो देखते हैं। उसे रोलर मशीन से गुजारा गया और अचानक वो पतली पतली क्रिस्पी परतों में टूट गया। सबने सोचा लो जी, और खराब हो गया, अब तो गया काम से। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। नाश्ता सर्व हुआ, पेशेंट्स ने खाया और उन्हें पसंद आ गया, बहुत पसंद आया। जिस चीज को किचन डिजास्टर समझा जा रहा था, वही सबसे पॉपुलर आइटम बन गया। कभी कभी जिंदगी भी ऐसी होती है ना, जो चीज उस वक्त बर्बादी लगती है बाद में वही वरदान बन जाती है। फेल हुआ एग्जाम, छूटी हुई ट्रेन, नाम

मिला हुआ जॉब, टूटा हुआ रिश्ता, और उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सालों बाद समझ आता है कि नहीं, वही तो असली शुरुआत थी। उस ब्रेकफास्ट टेबल पर एक और आदमी बैठा था, नाम था CW पोस्ट। उसने ये आइडिया देखा, समझा, और फिर अपनी कंपनी शुरू कर दी। थोड़े ही सालों में वो करोड़पति बन गया। बिजनेस बढ़ता गया, पैसे आते गए, और बैटल क्रीक सीरियल कैपिटल बनने लगा। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग किरदार अभी बाकी है, डॉक्टर केलॉग का छोटा भाई विल कीथ केलॉग, यानी WK केलॉग। वो सब देख रहा था, हर तरफ नए बिजनेस, नए ब्रांड्स, नए लोग, सब पैसा कमा रहे थे। और जिस घर में ये आइडिया पैदा हुआ, वहीं सबसे कम फायदा हो रहा था। सोचिए उसकी हालत, जैसे किसी ने आपके घर की रेसिपी चुरा कर रेस्टोरेंट खोल लिया हो और आपको क्रेडिट भी नहीं दिया। कैसा लगेगा आपको? आखिर एक दिन उसने फैसला कर ही लिया, बस अब और नहीं। उसने अपने भाई से अलग रास्ता चुना, अपनी कंपनी शुरू करी। और फिर उसने उस ब्रेकफास्ट एक्सीडेंट को एक पूरी इंडस्ट्री में बदल दिया, एक ऐसी कंपनी जो आज भी दुनिया भर में पहचानी जाती है। नाम हम सब जानते हैं, केलॉग्स। जी हाँ, वही केलॉग्स जो शायद आज भी किसी सुपरमार्केट की शेल्फ पर रखा हुआ आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा कंपनी का नाम नहीं लगता, मुझे सबसे खूबसूरत लगता है एक भूल, एक छोटी सी भूल जिसने दुनिया बदल दी। हम सब गलतियों से डरते हैं, हम परफेक्शन के पीछे पीछे भागते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो। लेकिन दुनिया की कितनी बड़ी खोजें हैं जो गलतियों से हुई हैं। पेनिसिलिन, माइक्रोवेव, पोस्ट इट नोट्स, और अब आपका ब्रेकफास्ट सीरियल। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दरवाजे गलत मोड़ पर ही मिलते हैं दोस्तों। तो अगली बार जब आप सुबह अपने ब्रेकफास्ट बोल में सीरियल डालें, तो सिर्फ दूध और फ्लेक्स मत देखिए, उसमें एक भूला हुआ गेहूं देखिए, एक किचन एक्सीडेंट देखिए, एक डॉक्टर की अजीब सी सोच देखिए, और भाई की ये जिद देखिए, और सबसे बढ़कर ये देखिए कि कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी सफलता एक छोटी सी गलती के रूप में आती है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी फिर एक और अजीब, दिलचस्प और जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी के साथ। तब तक अपनी गलतियों से घबराइए मत, क्या पता आपकी अगली भूल ही आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मालिक नौकर से, आज तुमने रोटी में ज्यादा घी लगा दिया है। नौकर बोला, गलती हो गई मालिक, लगता है मैंने आपको अपनी रोटी दे दी।

2014 सारियां और एक अधूरा सपना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत अजीब सा सवाल पूछती हूं। आपके घर में कोई पुरानी अलमारी है, कोई पुराना संदूक, कोई ऐसा डिब्बा जो सालों से खुला ना हो, और अगर है तो क्या आपने कभी सोचा है कि उसमें सिर्फ सामान नहीं, कहानियां भी रखी होती हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि यादें सिर्फ फोटो एल्बम्स में रहती हैं, लेकिन सच तो ये है कि यादें कपड़ों में भी रहती हैं। दोस्तों, एक पुरानी सी शॉल में, एक रुमाल में, एक स्वेटर में, और कभी कभी एक साड़ी में। आज की कहानी ऐसी ही साड़ियों की कहानी है, 2014 साड़ियों की कहानी, और एक नानी की, और शायद हम सब की। दोपहर का वक्त था, गर्मी का मौसम, पंखे की आवाज कमरे में धीरे धीरे गूंज रही थी, खिड़कियों के बाहर धूप थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, वैसी खामोशी जो किसी के चले जाने के बाद घर से आती है, घर में बस जाती है। नानी को गुजरे कुछ हफ्तों हो चुके थे और उनकी पोती पहली बार उनके कमरे में अकेली बैठी थी। वो कमरा जहां कभी नानी की हंसी गूंजती थी, जहां उनके चश्मे की डंडियां रखी रहती थी, जहां तेल की खुशबू और पुरानी क्रीम की महक थी, जहां उनकी कहानियों की गूंज थी, सब कुछ वही था, बस नानी नहीं थी। कमरे के कोने में एक पुराना सा लोहे का संदूक रखा था, वही संदूक जो बचपन से देखते आए थे, लेकिन खोलने की हिम्मत कभी नहीं हुई। उसने धीरे से संदूक खोला और एक पुरानी सी खुशबू हवा में घुल गई, कपूर की, पुराने कागजों की और गुजरे वक्त की। हाँ, वक्त भी एक खुशबू होती है। उस संदूक के ऊपर एक डायरी रखी थी, बहुत पुरानी, थोड़ी सी फटी हुई, और उस पर नानी की हैंडराइटिंग छोटी छोटी, सीधी साधी, जैसे उनका स्वभाव। उसने डायरी खोली और हैरान रह गई। डायरी में कहानियां नहीं थी, रेसिपीज भी नहीं थी, कोई हिसाब किताब भी नहीं था, बस एक लिस्ट थी, 1, 2, 3, और ऐसे ही 2014 तक, 2014 साड़ियां। हर साड़ी के सामने एक तारीख, एक मौका, एक याद। पहली साड़ी थी हल्की हरी चंदेरी, नीचे लिखा था मेरे बहन की शादी लखनऊ 1961। उनकी पोती रुक गई। नानी की बहन? उसने तो कभी सुना ही नहीं था। एक साड़ी ने उसे एक और नई कहानी दी, और फिर वो पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ती गई। एक साड़ी, एक कहानी और एक जिंदगी। साड़ी नंबर 18, घर का पहला रेडियो। साड़ी नंबर 26, पहली बार ट्रेन में अकेला सफर। साड़ी नंबर 30, पहले बेटे के स्कूल का पहला दिन। और फिर साड़ी नंबर 52, गहरा मरून रंग। उसके सामने लिखा था, आज मैंने शहर बदलने से मना कर दिया। वो चले गए, मैं रुक गई, बस इतना ही। लेकिन कितनी बड़ी कहानी है इन दो लाइनों में। कौन गए, क्यों गए, क्या हुआ, कुछ नहीं लिखा था।
लेकिन कुछ कहानियां पूरी लिखने की जरूरत ही नहीं होती। उनकी खामोशी इतनी काफी होती है कि वो सब कुछ कह जाती है। फिर एक पीली रेशम की साड़ी सुनहरी जरी के साथ, उसके सामने लिखा था, मेरी पहली कहानी छपी। पोती एकदम से सीधी बैठ गई। नानी कहानियां लिखती थी? उसे तो कभी पता ही नहीं था। हमारे बुजुर्ग कितने अजीब होते थे ना, पूरा जीवन साथ रहते हैं और फिर भी उनकी आधी कहानियां हमें पता ही नहीं चलती। हम उन्हें

और उसके सामने सिर्फ चार शब्द, इस साल सब लगभग खत्म हो गया। बस ये चार शब्द और कुछ नहीं। पोती बहुत देर तक उस लाइन को देखती रही। कभी कभी चार शब्द पूरी किताब से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। शाम होने लगी, कमरे में धूप का रंग बदलने लगा, लेकिन वो वहीं बैठी रही। साड़ियां खुलती गईं और नानी की जिंदगी सामने आती गई, एक एक परत, एक एक इंच, एक एक याद। साड़ी नंबर 112 बहुत रंगीन, जैसे बरसात के बाद का आसमान। और उसके सामने लिखा था, आज मुझे समझ आया कि अकेला रहना और तन्हा रहना दो अलग बातें हैं। वाह क्या बात कह दी नानी ने, कितने सालों का तजुर्बा था उन शब्दों में। हम सब कभी ना कभी ये सीखते हैं कि तन्हाई दर्द देती है, लेकिन अकेलापन, अकेलापन कभी कभी आजादी और सुकून दे जाता है। अब शाम रात में बदल रही थी और फिर आई साड़ी नंबर 180, हल्की कोरल रंग की। उसके सामने लिखा था, आज मैं रात 12 बजे तक नाची, बहुत मजा आया, मैं खुद को खूबसूरत महसूस कर रही थी। पोती जोर जोर से हंस पड़ी और फिर उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि पहली बार उसने अपनी नानी को सिर्फ नानी नहीं, एक जवान औरत के रूप में देखा था, जो नाचती भी थी, हंसती भी थी, सपने भी देखती थी और खुद को खूबसूरत भी महसूस करती थी। और फिर आखिरकार आई साड़ी नंबर 2014, आखिरी साड़ी, सफेद, हल्की आइवरी, अब तक बिल्कुल ना पहनी हुई, प्लास्टिक में लपेटी हुई, एकदम नई, साफ इंतजार करती हुई। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था, इसे मैं अपनी छुटकी की ग्रेजुएशन पर पहनूंगी, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन होगा। बस पोती चुप हो गई, कमरे में अंधेरा हो चुका था और उसे समझ आ गया कि ये साड़ी कभी पहनी ही नहीं गई। नानी उस दिन तक पहुंच ही नहीं पाई। दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि लोग चले जाते हैं, लेकिन सच कहूं लोग पूरी तरह कभी नहीं जाते, वो रह जाते हैं, किसी पुरानी रेसिपी में, किसी डायरी के पन्ने में, किसी किताब के बीच रखे फूल में, किसी गीत में, किसी खुशबू में, या फिर 2014 साड़ियों में। कुछ महीने बाद ग्रेजुएशन का दिन आया, सब लोग तालियां बजा रहे थे, नाम पुकारा गया और वो स्टेज पर चली, लेकिन उस दिन उसने अपनी साड़ी नहीं पहनी, उसने पहनी थी नानी की वो आइवरी साड़ी, साड़ी नंबर 2014। लोगों ने समझा खुशी के आंसू है, किसी को क्या पता था कि उस दिन एक सपना पूरा हुआ था, एक नहीं दो लोगों का, एक पोती का और एक नानी का, जो शायद कहीं दूर से मुस्कुरा रही थी। दोस्तों अगर आज घर जाकर अपनी अलमारी आप खोलें तो किसी पुरानी चीज को हाथ जरूर लगाइएगा, हो सकता है वहां भी कोई कहानी आपका इंतजार कर रही हो, बस खोलने की देर है। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा और मिलूंगी फिर आपसे।

एक और कहानी के साथ। तब तक अपनों की यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी कहानियां हमेशा हमारा इंतजार करती हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आंटी एक बैंक में गई और बैंक कर्मचारी से बोली, मुझे एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है। बैंक कर्मचारी बोला, जी मैम, किसके साथ? आंटी जी बोली, जिसके खाते में ढेर सारे रुपया हों।

कप कॉफी में छुपा एक पहाड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, आज मैं आपसे एक और अजीब सवाल पूछती हूँ। मेरा फेवरेट काम है, आप जानते ही हैं, रोज की बात है। क्या आपके कप कॉफी में एक पहाड़ समा सकता है? क्या एक घूंट के अंदर बादल, बारिश, जंगल और मिट्टी की खुशबू रह सकती है? और क्या एक स्वाद हमें बिना टिकट, बिना ट्रेन, बिना एयरप्लेन के हजारों किलोमीटर दूर ले जा सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक कॉफी की कहानी। लेकिन सिर्फ कॉफी की नहीं, एक जगह की, एक मिट्टी की, एक विरासत की, और उन लोगों की जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन की भाषा समझते आए हैं। कभी कभी हम चीजों को इतना आम समझने लगते हैं कि उनके पीछे छुपी हुई कहानियां ही देखना भूल जाते हैं। बस सुबह उठते हैं, कॉफी बनाते हैं, एक सिप लेते हैं और दिन शुरू हो जाता है, बस। लेकिन सोचिए, वो कप कॉफी आप तक पहुंचने से पहले कितनी लंबी यात्रा करती है, या करी होगी? उसने कितनी बार बारिश देखी होगी, कितनी बार धूप देखी होगी, कितनी बार हवा के साथ झूमी होगी, और कितने हाथों ने उसे संभाला होगा। आज हम चलते हैं कर्नाटक के एक खूबसूरत शहर चिकमंगलूर में। नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन शायद महसूस कभी ना किया हो। चिकमंगलूर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक एहसास है। सुबह सुबह बादलों का धीरे धीरे पहाड़ों से लिपट जाना, पेड़ों का पत्तों पर मोती की तरह पानी की बूंदे बन जाना, दूर कहीं से आती पक्षियों की आवाज, और मिट्टी की वो खुशबू जो बारिश के बाद हवा में घुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने यहाँ अपना सबसे खूबसूरत गीत लिखा हो। दोस्तों, कॉफी यहाँ तेज धूप में नहीं उगती, ये जंगल की छांव में पलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग शोर में नहीं सुकून में बढ़ते हैं, पेड़ों के नीचे, पक्षियों के गीतों के बीच, हवा और बारिश के साथ, धीरे धीरे, आराम से, बिना किसी जल्दी के। और शायद इसीलिए इसका स्वाद भी इतना गहरा होता है। मुझे लगता है अच्छी चीजें कभी जल्दी में पैदा हो ही नहीं सकती, ना अच्छा रिश्ता, ना अच्छा गीत, ना अच्छी एक किताब, और ना अच्छी कॉफी। सबको वक्त चाहिए, सबको पकने का समय चाहिए। लेकिन चिकमंगलूर की कहानी सिर्फ कॉफी के पेड़ों से शुरू नहीं होती, इस कहानी में एक दिलचस्प किरदार भी है, एक सूफी संत, बाबा बुदान। कहते हैं कि 100 साल पहले जब वो यात्रा पर निकले, तब उन्होंने पहली बार कॉफी का स्वाद चखा और उन्हें लगा कि ये तो कुछ खास है, बहुत खास। उस समय कॉफी के बीज बाहर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन कहानी के मुताबिक वो 7 बीज अपने साथ भारत ले आए, बस 7, सिर्फ 7। सोचिए, आज लाखों कप कॉफी के पीछे सिर्फ 7 बीज खड़े हैं। कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां बहुत छोटी चीजों से शुरू होती हैं। एक बीज, एक सपना, एक हिम्मत, एक फैसला, और फिर वक्त उसे विरासत बना देता है। दोस्तों, हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, आप कहाँ के हैं? जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ। लेकिन क्या आपने कभी किसी कॉफी के कप से पूछा है, तुम कहाँ की हो? नहीं ना, लेकिन शायद पूछना चाहिए।
क्योंकि हर जगह का अपना स्वाद होता है, हर मिट्टी की अपनी पहचान होती है, जैसे हर इंसान की, जैसे राजस्थान की बोली अलग है, पंजाब का रंग अलग है, कश्मीर की हवा अलग है, वैसे ही जमीन का कॉफी से एक अलग रिश्ता है। कभी कभी मुझे लगता है हम इंसान भी कॉफी के दानों की तरह होते हैं, जिस मिट्टी में पलते हैं उसका असर हम पर आ ही जाता है, जिस शहर में बड़े होते हैं उसकी आदतें हमें आ ही जाती हैं, जिन लोगों के साथ वक्त गुजरता है उनकी बातें हमारी आवाज में उतर ही आती हैं, और फिर सालों बाद भी हम अपनी जड़ों का स्वाद लेकर चलते रहते हैं, बिल्कुल कॉफी की तरह। एक और बात है, कॉफी का असली मजा तब आता है जब हम उसे जल्दी जल्दी नहीं पीते, एकदम आराम आराम से पीते हैं, महसूस करते हैं, उसकी खुशबू को वक्त देते हैं, उसके स्वाद को समझते हैं। और जिंदगी भी तो ऐसी ही है दोस्तों, हम सब इतनी जल्दी में हैं, हर चीज में भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, दिन भाग रहे हैं, साल भाग रहे हैं, लेकिन खुशी, खुशी कभी भाग कर नहीं मिलती, खुशी तो रुकने से ही मिलती है, महसूस करने से ही मिलती है, एक कप कॉफी के साथ खिड़की के पास बैठने से मिलती है, पुरानी यादों को याद करने से मिलती है, और अपनों के साथ बात करने से मिलती है। और शायद इसीलिए कॉफी सिर्फ एक पीने की चीज नहीं, ये एक विराम है, एक रुकावट, एक छोटा सा मौका खुद से मिलने का, खुद को सुनने का, और ये याद करने का कि दुनिया में अभी भी बहुत सी खूबसूरत चीजें बची हुई हैं। बादल, पहाड़, बारिश, मिट्टी, खुशबू और कहानियां, बहुत सारी कहानियां। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कॉफी का कप हाथ में उठाएं, तो सिर्फ कॉफी मत देखिए, उसके अंदर के एक पहाड़ को देखिए, एक जंगल को देखिए, एक बारिश की बूंदों को देखिए, और एक कहानी देखिए, शायद खुद को भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कप कॉफी ही हमें दुनिया से ज्यादा अपने बारे में सिखा जाती है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी फिर एक नए किस्से और एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए जिंदगी को जल्दी जल्दी मत पीजिए, उसे भी कॉफी की तरह आराम से महसूस कीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति को ताना देते हुए पत्नी ने बोला, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है? मकान मेरे पिताजी का है, मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मेरी चाची भिजवा देती हैं, और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? पति बोला, शर्म तो तुम्हारे भाई को आनी चाहिए, वो इसी शहर में रहता है, फिर भी कोई मदद नहीं करता।

0: जो भी
1: कहिए
2: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
0: तो दोस्तों आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं। जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता, चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 स्कॉर्पियन 29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

आगे बढ़ा हिम्मत के कदम, एक बार मर्द बन के तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने, ठोकर की गर्द बन के, ठोकर की गर्द।

रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूँ। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, झाबुआ की आवाज।
5: कोयले की कहानी।
6: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से, धीरे धीरे हौले हौले मृत वनस्पति बदली मुझमें।

0: फंदे से, फंदे से, फंदे से, रस्सी कहे अचंभे से,
1: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
0: मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
2: बड़ मक्कड़ बम्बे बाओ, बम्बे बाओ, बम्बे बाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ, 80-90 पूरे 100, 100 में निकला धागा तो चोर निकल के भागा। बच्चों खूब हंसो, मजे करो, बैठे ना रहो, खूब हंसो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना
1: है काका? आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने, और हाँ ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शेरू, ओ शेरू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर्रिया, हप हप हप, चला चला चला है।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो।
7: अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
7: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना।
7: हाँ।
4: उसके पशु खेत में घुसाए थे।
7: और शंभू कहाँ था?
4: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
7: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
4: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
7: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
4: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
7: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
4: मेरे पास लाठी है ना।
7: हाँ।
4: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
7: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
4: चलिए काका, चल शेरू आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
7: शंभू! अरे ओ शंभू!
3: अरे ओ शंभू!
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया, सोने नहीं देता।
3: क्या है?
7: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूँ। उठ, उठ, और चलकर

0: एक तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है?
1: आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े?
0: मुझसे पूछ रहा है।
2: तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
1: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे किसी और के पशु घुसे होंगे।
3: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
1: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
2: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
1: लेकिन मेरे पशु कहाँ हैं?
2: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
1: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
2: अच्छा चल जा और देख। हाँ? आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना
1: जी,
2: किसी और के खेत में ना घुसें
1: जी।
2: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ
1: जी,
2: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
1: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
2: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
3: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
2: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
3: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू आ। इदा,
4: इदा, चल, किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
5: मेरा किशन बड़े काम का है, अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश
1: काका।
5: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
3: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कान्हाराम चौहान, गाँव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए CIET NCERT का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कान्हाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
0: जिला और
2: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थक कर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलिपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलिपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे

मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथ

हाथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े।
मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।
2: अरे तुम्हें क्या हुआ?
3: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
2: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
3: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

0: तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।
1: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
2: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
3: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
1: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
4: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः, प्रातः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल,

या से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गाँव, जहाँ।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
5: रेडियो टांट्याभील 90.8 FM, झाबवा की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसान साथियों, रेडियो टांट्याभील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, रेडियो टांट्याभील का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह आपको आपके खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं को आप हम तक पहुंचा सके और हम एक्सपर्ट के माध्यम से आप तक उसकी उसका परामर्श दे सकें और आपके खेतों में नई से नई तकनीकी खेती को हम कैसे कर सकते हैं आदि जानकारियों को आप तक पहुंचा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो हमारा जो पर्यावरण है, दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, तो इस बदलाव को देखते हुए हमें हमारी कृषि पर भी बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा किसान भाई जानता है हमारी जो कृषि है वो पूर्णतः हमारे पर्यावरण पर निर्भर है। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमारी खेती, हमारा जल, हमारी वायु आदि के ऊपर, हमारी फसलों पर इन्हीं सभी का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पहले का किसान था वो प्राकृतिक खेती करता था और वह सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती करता था, परंतु हमारे आज के किसान जो हैं वो व्यावसायिक खेती करते हैं और व्यावसायिक खेती में अधिक से अधिक उपज लेने के उद्देश्य से हम काफ़ी रसायनिकों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे वातावरण में, हमारी मृदा के लिए और हमारे जल स्रोतों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। साथ ही किसान साथियों, अगर हम देखें तो आज हमारी जो फसलें हैं उनमें काफ़ी रसायनिक की मात्रा मिलती है, जो कि हमारे मानव जाति के लिए, सबके लिए एक हानिकारक साबित हो रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती है, इसके माध्यम से भी बहुत ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है, बहुत ही अच्छी कृषि की जा सकती है। तो किसान साथियों, अगर हम अपना रुख पुनः प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारी उपज उतनी ही मिलेगी और उससे ज़्यादा मिलेगी, और हमारी जो उपज है उसमें हमें एक नवीनता देखने को मिलेगी, जो हमें भरण पोषण है हमें पूर्णतः मिलेगा, साथ ही हमें जो हमारा वातावरण से मिला हुआ प्राकृतिक और प्योर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, यहाँ पर ज़रूरी है हमें प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करने की। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से अधिक उपज ले सकते हैं और हम परिवार का भरण पोषण के साथ ही साथ हम व्यावसायिक कृषि भी कर सकते हैं, तो जानेंगे आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
4: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान, आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो, टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
6: कार्यक्रम में खास तौर से हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की। किस तरीके से हमने जाना, कोरोना कालखंड की अगर बात की जाए, हमें बैक टू बेसिक्स आना पड़ा, यानी फिर से जो चीजें हम करते थे पहले, और खासतौर से जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो जो पुरानी पद्धतियां थी उस पर आने की आवश्यकता है। और उसी के लिए हम मान सकते हैं जो प्राकृतिक खेती है उसको लगातार सरकार अपने स्तर पर बढ़ावा दे रही है, और ना जाने कितने ही किसान हैं जो लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती जो है वो कर पाए, और इसके साथ साथ जो हमारी कृषि क्षेत्र है, जो खेती है, उसको रसायन मुक्त भी कर सकें। एक मुहिम है किसान की जो लगातार वो चला रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन कैसे जो प्राकृतिक खेती है और अधिक मुनाफा दे सकेगी, इस पर आज हम कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे।
7: न सिर्फ फसलों में जहर घुल रहा है बल्कि मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है। खराब सेहत की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी लगातार घटती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रही है। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने की बात कही है। पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। ये जमीन किसानों की ही होगी। प्राकृतिक खेती में खाद और कीटनाशक घर पर मौजूद प्राकृतिक सामग्री से बन जाते हैं। दो तरह के खाद होते हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। ये मुख्य रूप से गाय आधारित खेती है और एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती हो जाती है। क्योंकि इसमें लगने वाली सामग्री घर पर प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे जीरो बजट खेती भी कहते हैं। ये खेती मूल रूप से मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर इसे सेहतमंद बनाती है। बजट में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद ली जाएगी।
8: देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
6: किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और ना सिर्फ कोशिशें, और खासतौर से डॉक्टर गंगनेश, अगर देखा जाए तो आज के समय की मांग हम मान सकते हैं, अभी का जो स्थिति है कृषि क्षेत्र की उसको देखते हुए हम मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है।
9: जी बिल्कुल, प्राकृतिक खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राकृतिक खेती जो है, जो नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, कि वर्षों से हमारे भारतवर्ष में तो जो ट्रेडिशनल है, जितना भी जब हमारे ऋषि मुनियों से अगर शुरू करें, हम हमारे वैदिक भी लिटरेचर को अगर देखें तो वहां पर भी कृषि के ऊपर और नेचुरल फार्मिंग का बहुत ज्यादा उसमें इवन शोध किए गए हैं उस टाइम में जी। और उन्हीं चीजों को आज अपनाया जाता है। और उस टाइम क्या होता था कि कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब सिंथेटिक कोई भी चीजें नहीं थी, तो उसके आधार पर ही जो खेती की जाती थी। और नेचुरल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जंगल जो फॉरेस्ट है हमारे, कैसे फल फूल रहे हैं, अपने आप ही वहां पर फल होते हैं, अपने आप ही वहां पेड़ उगते हैं। तो यही एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल फार्मिंग का भी, कि वहां पर कौन जाकर कल्टीवेशन करता है, वहां कौन जाके इनपुट्स देता है, वहां कौन जाके केमिकल फर्टिलाइजर देता है। अगर आप जंगल में देखें और आप नेचर को देखें नेचुरल तरीके से, तो वहां पर माइक्रोब्स हैं जंगल में, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, रिसाइकलिंग हो रहा है लीफ का, वही वहां पर वर्षा भी हो रही है अपने आप में, जो क्लाइमेट चेंज की बात है वो भी अपने आप में नियंत्रण रहता है वहां पर, और इसी के साथ में सबको फल फूल भी मिलते हैं, प्रकृति अपने आप में फलती फूलती है। तो यही नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है और यही नेचुरल फार्मिंग का आधार है।
6: जी बिल्कुल, तो देखिए आधार जो है वो अगर मजबूत होगा तो और ज्यादा मजबूती इस क्षेत्र में हमें मिल सकेगी। भारतभूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से जैविक खेती से भी जुड़े रहे हैं और ना जाने कितने ही किसानों को इस दिशा में आगे भी आपने बढ़ाया है, लेकिन आपको कैसे लगता है कितनी आवश्यकता कि ना सिर्फ जैविक खेती बल्कि प्राकृतिक खेती की तरफ भी जो किसान है उसका रुझान होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे खेत में प्राकृतिक खेती करें लेकिन एक छोटे से हिस्से से ही, जैसे शायद पहले जैविक खेती की शुरुआत हम करते थे।
10: जी नमस्कार, मैं आदरणीय गगनेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए इस संदर्भ में कुछ बात रखना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक साफ तौर से बात सामने आती है कि प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाना इसके लिए एक अनिवार्य वस्तु बन जाती है। प्रकृति अपने आप में कैसे काम करती है, प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक किस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है, मौसम बदलते हैं, फसलें पैदा होती हैं, और वहाँ पर खरपतवार और रोगों का नियंत्रण रहा, इसकी प्रेरणा हमको अपने पूर्वजों से बराबर मिलती रही। लेकिन आज का सवाल एक ज्वलंत सवाल है कि आज़ादी के बाद जो चुनौतियां हमारे सामने थी वो भुखमरी थी, और भुखमरी के कारण हम लोगों ने बहुत जो प्रयास किया, इसमें अनुसंधान, शोध, शिक्षा, नीतिगत सभी विषयों के लोग इसमें लगे, किसानों ने भी मेहनत की और एक मुकाम पर हम लोग पहुंचे और राष्ट्र एक अस्तित्व को लेकर आगे खड़ा हुआ। लेकिन जो सवाल आपका है वो बड़ा वाजिब सवाल ये है कि क्या केवल नाम भर बदलने से काम होगा, या नाम के पीछे जो कंटेंट है और जो कैरिकुलम है उसको कैसे हम किसानों तक पहुंचाएंगे
11: जी।
10: और जो किसान आज तक अभी तक भी अपनी खेती में केवल उत्पादक बनकर रह गया है और खेती के बाजारीकरण के प्रभाव में उसकी सारी इकोनॉमी कर्जे में बदल गई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र ने प्राकृतिक खेती को किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए जो आह्वान किया है, इसके लिए हम राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हैं और उन सभी मनुष्यों को भी साधुवाद करते हैं कि जो इस दिशा में विजन और मिशन के साथ में इसके बारे में पूरा सोचेंगे
11: जी।
10: मेरा एक छोटा सा निवेदन इसके साथ और भी है, चर्चा तो आगे करते ही रहेंगे। मैं यहाँ ये बात और कहना चाहूंगा कि आधुनिक खेती में इनपुट बेस्ड प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जो कदम बढ़ाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनपुट बेस जो हम बात का अभी तक कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्शन बेस यदि लेंगे और प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक आगे जाने के लिए जो हमने क्लस्टर अप्रोच में फार्मर प्रोडक्शन जो एफपीओ का जो विकल्प खोला है पूरे देश में
11: जी।
10: ये एक बहुत बड़ा विकल्प है। सजगता के साथ यदि हम कदम बढ़ाते हैं तो अवश्य सफल होंगे और प्राकृतिक खेती आज देश की जरूरत है
11: जी। बिल्कुल, एक जरूरत देखिए देश की, और जैसा कि भारत भूषण जी ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं, और ये बात हमारे किसानों पर बहुत सटीक बैठती है क्योंकि एक किसान के लिए असंभव कुछ नहीं, पूरे ना सिर्फ साल भर वो मेहनत करते हैं बल्कि उन्हीं की बदौलत आप देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारी सुनिश्चित हो चुकी है उन्हीं की वजह से ये है, लेकिन यहाँ पर अब जो परिवर्तन है वो आज के समय की मांग है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा किसान जो है वो बरसों से खेती करता आ रहा है, और हमने हमारे पूर्वजों से खेती के तौर तरीके आदि चीजें हमने उन्हीं से सीखी है। लेकिन आज़ादी के बाद जो भुखमरी, जो समय की मांग थी, उसके हिसाब से हमने अपने रासायनिकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उपज को प्राप्त किया, परंतु अभी समय आ चुका है, अभी हमारा देश सक्षम है, तो अभी हमें जरूरत है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करने की, और कैसे प्राकृतिक खेती द्वारा हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमारी मृदा को बचाना है, और साथ ही हमें हमारे जल स्रोतों का भी यहाँ पर बचाव करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय और जानते हैं कैसे यह करना संभव हो सकता है।
12: धन्यवाद। ये कार्यक्रम 2016 में शुरू किया हमने, और केंद्र सरकार की जो प्रोग्राम्स थे, राज्य सरकार की प्रोग्राम्स हैं, और ये एक डेडिकेटेड मिशन बनाया ये हर किसान के पास ये कार्यक्रम ले जाने के लिए। और इस साल हम 3730 गांव में हैं, 28% गांव में हैं, और लगभग 6,50,000 किसान इसमें अभी जुड़े हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हमारे राष्ट्र के सारे किसान, कितने 80% 85% किसान अगले 5-6 साल में ये कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। और ये प्राकृतिक खेती जो है ये विश्व में हर देश में चल रहा है
11: जी,
12: और इसमें बहुत साइंस है, इसमें ये आप सबको जानना चाहिए कि इसका साइंस जो है ये एडवांस साइंस है, और बहुत साइंटिफिक वैलिडेशन हो रहे हैं अलग अलग देशों में, हमारे देश में भी, और इट इज लाइक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न साइंस कंबाइंड
11: जी।
12: एंड हमारे मेरा विचार है ये भविष्य का व्यवसाय है, क्योंकि इसमें तीन फायदे हैं। एक तो किसान की आमदनी दुगनी तिगुनी जितना भी बढ़ोत होना है हो सकती है इसके द्वारा,
6: जी।
12: दूसरा जो कंज्यूमर्स हैं उनका हेल्थ का विषय में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारे आहार में, जो रासायनिक विष पदार्थ नहीं होना चाहिए, ये सब ये प्राकृतिक खेती से होता है। लेकिन तीसरा विषय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है
6: जी।
12: क्योंकि संतुलन, अभी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, माने बाढ़ आने से भी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए
6: जी,
12: या ड्राउट होने से भी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए, और वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। तो प्राकृतिक खेती से ये जो अभी संतुलन नहीं है बिगड़ गया है
6: जी।
12: हमारे देश में हर साल हम वी आर लूजिंग सॉयल, सॉयल ऑर्गेनिक मैटर खो रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती एक ही मार्ग है जिससे हम सॉयल की जो पूर्व फर्टिलिटी थी उसको लाने के लिए, पानी का विनियोग भी कम होता है। तो ये क्योंकि तीनों क्षेत्र में पीपल प्लैनेट जो यू कैन समराइज
6: जी
12: इज, सो दिस इज इन माय ओपिनियन द फार्मिंग ऑफ द फ्यूचर, ये भविष्य का खेती ऐसे ही होगा
6: जी। भविष्य की खेती के तौर पर विजय जी आप इसको देख रहे हैं, और आपके शब्दों में अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मान सकते हैं जल जमीन जलवायु जो है जीवन को किस तरीके से सार्थक बना सकती हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती जो है हमारे किसानों को लगातार सीख दे रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं कृषि की पुरानी पद्धति जो प्राचीन पद्धति है और आधुनिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं दोनों का समावेश जो है वो हमें प्राकृतिक खेती में नजर आता है। इस बारे में डॉक्टर गंगनेश आपकी राय हम जानना चाहेंगे, किस तरीके से ये जो जानकारी है ये किसान तक कि ना सिर्फ प्राचीन पद्धति बल्कि इसके साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है वो भी है इसमें जुड़ा हुआ।
9: बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय विजय कुमार जी ने और आदरणीय हमारे भारतभूषण त्यागी जी उन्होंने कहा
6: जी।
9: कि इसमें हमें साइंस का भी बहुत महत्व है और इसमें हमें इनोवेशन की भी जरूरत है। मतलब साइंस का तो है ही है हमें, बट इनोवेशन भी हमें लेके आना है इसमें, और इनोवेशन इस तरीके से कि एंटरप्रेन्योरशिप भी जिसको हम कहते हैं उद्यमियता, वो भी हमें लेके आना है इसमें, तो तब जाकर जो है इसका संतुलन बनेगा और तब जाके हम अच्छी प्रोडक्शन भी ले पाएंगे और अच्छा होगा। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विज्ञान के अगर हिसाब से देखा जाए तो जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं और नेचुरल फार्मिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एक्टिविटीज नेचुरल फार्मिंग में अडॉप्ट की जाती हैं, जैसे उसमें हमें ऑन फार्म, मतलब हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है, फार्म पे ही सब कुछ तैयार करना है, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, घन जीवामृत है, आच्छादन है या वास्पा है, तो इसको हम आच्छादन वास्पा को यही कहते हैं कि मल्चिंग जो की जाए, और मल्चिंग के साथ में क्या होता है, साइंस ये है कि जब हम स्ट्रॉ मटेरियल जो हमारा पड़ा हुआ है खेत के ऊपर ही, पत्ते हैं सूखे हैं हरे पत्ते हैं, उसकी कंपोस्ट बनाई जाए और उसको मल्च के तौर पर भी हम यूज करें, तो मल्चिंग से क्या होगा, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि साइंस की बात यहां पर क्या है कि जब मल्चिंग की जाती है तो वहां पर एक तो वाटर कंजर्वेशन नेचुरल हो जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता भी सस्टेन धीरे धीरे होने लगती है, माइक्रोब्स भी जो जीवाणु है अच्छे जो मृदा में वो पनपने लगते हैं, और जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी तत्व हैं जो हमें चाहिए अच्छी प्रोडक्शन के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ साइंस की बात होती है, इसके साथ
6: उनकी पूर्ति हो जाती है।
9: और इसके साथ ही साथ जो जैसे वास्पा की बात करें तो वास्पा में हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं प्लांटेशन है, नेचुरल फार्मिंग हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कॉफी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन है, तो उसके साथ साथ हम लौंग लगाएं साथ में, तो उसको जो बड़ा पेड़ है वो छाया दे रहा है, तो आच्छादन और उसकी क्रॉप की जो प्लांटेशन जो लेयरिंग है वो इस तरह से हो कि वो आपस में एक दूसरे को छाया भी प्रदान कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी हो रहा है, पत्ते भी मिल रहे हैं, और नेचर का जो नेचुरल कंजर्वेशन, जो नेचुरल लॉज है, नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, साइंस के आधार पर भी ये सारी भी अपने आप ही सेट हो रही है और अपने आप ही स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं,
6: तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और आपको अलग से कोई जो लागत है वो इसमें लगानी नहीं पड़ती। भारतभूषण जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक किसान जो है अपने आप में बहुत अनुभवी होता है और किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होता, क्योंकि वो लगातार उन्हीं क्रियाओं को करते हैं जब कृषि की हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो जब हम इसके पीछे विज्ञान की बात करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम कहे देखे शुरू कर दीजिए प्राकृतिक खेती, इसके पीछे का जो विज्ञान है जिसका भी यहां डॉक्टर गगनेश ने भी जिक्र किया, ये क्यों आवश्यक है किसान जो है इस बात को अच्छे ढंग से समझे।
10: देखिए, इसमें एक तो जो ऑन फार्म इनपुट की बात बार बार आती है
6: जी,
10: मैं डॉक्टर विजय कुमार जी भी सुन रहे हैं और मैं सारे देश के सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि जब भी इनपुट का शब्द आएगा, इनपुट का शब्द है मैंने बाहर से हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी होती है या उसी के

0: जोड़कर हम कुछ तैयारी करें। मैं इसमें और एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो एक लंबे समय तक हमने प्रयोग किए, जब हम नेचर के लॉ को देखते हैं तो उसमें एक तो कोएग्जिस्टेंस दिखता है, धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक इंटीग्रेशन में काम करते हैं। दूसरी बात ये देखती है कि सभी डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम करते हैं, माने कहीं भी मोनोक्रॉपिंग नहीं है, बल्कि खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाने की बात है, जमीन के कार्बन को बढ़ाने की बात है, या पीएच और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आधुनिक खेती के जरिए कुछ खराब हुई उसको ठीक करने की बात है, तो ये ठीक करने वाला मनुष्य नहीं है। प्रकृति के नियम को फॉलो करते ही मिट्टी में अपने आप ही वो सारी की सारी क्रियाएं होने लगती हैं
1: जी।
0: और इससे किसान को केवल ये बताना है कि विविधता में फसल प्रणाली लागू किए जाने के कारण जमीन में पानी का संतुलन बनने लगता है, बैक्टीरिया अपने आप डेवलप होने लगते हैं
1: जी।
0: और जमीन की सतह पर भी खरपतवारों का नियंत्रण होने लगता है, अनेक चीजों के उत्पादन मात्रा में भी, गुणवत्ता में और विविधता में भी मिलता है। यहाँ एक और बात दिलाना चाहूंगा कि देश के सामने एक संकट आता है, बार बार सवाल उठते हैं कि प्राकृतिक खेती से कहीं उत्पादन ना कम हो जाए
1: जी।
0: तो जब हम मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं तो उत्पादन कम होने की संभावनाएं बार बार कुछ फसलों में बन जाती हैं। ऐसे में निराशा का विषय जब ये है कि जब हम पूरी विविधता को नहीं समझे, लेकिन यदि अनेक फसलों को साथ साथ लगाकर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है, गुणवत्ता में भी बढ़ता है, इकोलॉजी भी सस्टेन होती है, और एक बड़ी बात होती है कि हमें धरती की सतह पर प्रोडक्शन डेंसिटी बढ़ जाती है, जो धरती की सतह के ताप दाब नमी को संतुलन बनाए रखने के लिए इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है
1: जी। यानी जो सारे संशय हैं, देखिए वो कैसे दूर आपके हो सकते हैं, कैसे आप इजाफा जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको सीमित नहीं रहना किसी भी फसल के उत्पादन तक, और खासतौर से विजय जी अगर बात की जाए, जैसा भारत भूषण जी ने कहा, जो विविधीकरण है वो काफी आवश्यक है आज के समय को अगर देखा जाए।
2: भारत भूषण जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो फसल की वैविध्यता है, डाइवर्सिटी है, उससे एक और बड़ा लाभ है कि जो जमीन के अंदर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया, तो इसकी डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, और डाइवर्सिटी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो जितने भी पौधे हैं उनको सबको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर पौधे को 30, 40, 50 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कुछ बहुत कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन ये सब भी जब जमीन में जो माइक्रोब्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बढ़ती है, ये सब पौधों को मिलते हैं, और पौधे जब ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक है, सेलेनियम है, बोरॉन है
1: जी,
2: ये सब पौधों में आ जाता है, फलों में आ जाता है, तो फिर हमारी हेल्थ का भी बहुत बेनिफिट है। तो ये जो फसलों की वैविध्यता है वो एक बहुत बड़ी बात है
1: जी।
2: और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में 50% से भी ज्यादा जो जमीन है वो रेनफेड लैंड्स है
1: जी,
2: वर्षा आधारित है, और अब आप सबको मालूम है कि रेनफॉल पैटर्न में बहुत ही वेरिएशंस आ रहे हैं
1: जी।
2: और हम जो प्राकृतिक खेती आंध्र प्रदेश में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि रेनफेड लैंड्स में हम 3 फसल ले सकते हैं
1: जी,
2: बिना इरिगेशन के। तो जमीन जो है हम उसको 365 डेज ग्रीन कवर कहते हैं, जमीन को 365 डेज क्रॉप डाइवर्सिटी विविध पौधों के साथ रखने से
1: जी,
2: जमीन के लिए अच्छा और किसान के लिए अच्छा है, और हमारे पशुओं के फॉडर मटेरियल्स, तो इट लाइक ए विन विन विन फॉर एवरीबॉडी। एंड मोर इम्पोर्टेंट, सॉइल का टेम्परेचर कम करके जो ग्लोबल वार्मिंग की जो डेंजर, अभी हम बहुत ही क्लाइमेट इमरजेंसी में है
1: जी,
2: तो विश्व के जो साइंटिस्ट जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं उनका मानना है ये प्राकृतिक खेती से ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी है उसका सोल्यूशन भी हमारे ये कीपिंग द ग्राउंड कवर्ड विथ लिविंग रूट
1: जी।
2: और एक और बात मैं गणेश जी का जो है थोड़ा एक और एक अंश उसमें लाना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक खेती का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है दैट इज द बेसिस फॉर लाइफ,
1: जी।
2: तो जो भी पौधे खाना बनाते हैं, पत्तों के पत्ते बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, एक तिहाई वन थर्ड पोर्शन जो है वो शूट सिस्टम में जाता है, लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स, लेकिन दो तिहाई टू थर्ड जमीन में है, वो रूट्स में है और रूट एक्सुडेट्स में है। तो ये खाना देते हैं सूक्ष्म जीवी को। सो प्रकृति ने ऐसा बैलेंस बनाया है कि पौधे जो है जमीन को, जो सूक्ष्म जीवी है उनको खाना दे रहे हैं
1: जी।
2: और वापस जो सूक्ष्म जीवी है पौधों को जो चाहिए वो उनको दे रहे हैं। तो जितना हम वैविधता बढ़ाएंगे उतना ही सूक्ष्म जीवियों की संख्या बढ़ेगी, उनकी वैविधता बढ़ेगी और साल भर 365 डेज ऑफ द ईयर ये ये फिनोमिनन है वो भी एक एक ग्लोबल ब्रेक थ्रू माना जाता है, क्योंकि बिना बारिश के ये फसल आने का एक ही मार्ग है कि हवा में जो वाटर वेपर है,
0: बिल्कुल,
2: जब हम प्राकृतिक खेती से पौधे उगाते हैं वो पौधे में एक क्षमता है कि हवा में जो पानी है उसको वो ले सकता है।
3: किसान साथियों, अभी आप देख रहे थे रासायनिक कृषि से क्या क्या आपदा हमारे पर आ सकती है, क्या विपत्ति हमारे पर पड़ सकती है आदि जानकारियों को आप लोग सुन रहे थे। इस जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
4: आज ये कोहड़े लेन कई सालियो भाई
5: लाटना वाटवान का हो भाईयो
4: उबर थोड़ी बार मारी बात हमले पंजाब ले।
5: अरे नीले नीले भैया वाट दे रोटा हने करे नियल बालवानो गरीबी ने मलाई
4: हो पर थोड़ी बार हमले
5: ये देखो मन वार्ड पर थाई रे

0: સરી સાહેબ, માણસ તો એના ઝાડુ નું નહીં વાટું.
1: હા હું તો સમજી ગયો, કાલ ઘડે નાશ લે.
2: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में. अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से बिजली गीत को सुना. इसी के साथ हम आगे की खेती बाड़ी कार्यक्रम की आगे की चर्चा को जारी रखेंगे. कैसे जानेंगे हम कैसे प्राकृतिक खेती हमें मुनाफा देती है, उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है इस प्राकृतिक खेती का राज.
3: कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को बैक टू बेसिक्स के लिए तैयार कर दिया है. इस महामारी ने

0: प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे होती है। दरअसल प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देशी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। तो जरा सोचिए, जब हमारी एक देसी गाय ही इतने काम की है तो अच्छी खासी संख्या में गायों को पालना हमारे लिए कितने काम का होगा। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। आखिर प्राकृतिक खेती क्यों की जाए? प्राकृतिक खेती में किसान को नगद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसका मतलब आपके पैसों की भी बचत होगी। इतना ही नहीं, कम लागत प्राकृतिक खेती से ही जैविक उत्पादन भी किया जा सकता है।
1: इसमें किसानों को पलायन जाने की जरूरत नहीं है
2: जी।
1: साल भर गांव में ही जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या परिष्कार हो सकती है। और क्योंकि किसान 12 महीने 365 दिन कुछ ना कुछ फसल ले रहा है और गांव की इकोनॉमी बढ़ती है
2: जी।
1: जो भी उस पर आधारित है वो सो रूरल लाइवलीहुड की बढ़ोतरी होती है। सो देयर इज इट्स इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में ये एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन हो सकता है
2: जी।
1: कि गांव में ये सीजनलिटी ना हो कि एक ही फसल है और दो तिहाई दिन लोग खाली हैं, ऐसा नहीं हो
2: जी।
1: अगर थ्रूआउट द ईयर ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न हुआ
2: जी,
1: ये रूरल इकोनॉमी को ये पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा।
2: यानी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिकी है, देखिए वो किस तरीके से इससे बदल सकती है, और इसके लिए लगातार सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। इस बारे में डॉक्टर गगनेश आपसे हम जानना चाहेंगे, और किस तरीके से सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्राकृतिक खेती को।
3: जी बिल्कुल, जैसे टी विजय कुमार सर ने जो इतना अच्छा बताया कि साइंस किस तरह से इसमें नेचुरल फार्मिंग में कर रहा है, सारी चीजें कैसे सहयोग करेगा और किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने बहुत पहले तीन वर्ष पहले जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना की तरह ही उसके सब स्कीम चलाई
2: जी,
3: जिसका नाम है बीपीकेपी या भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो उस स्कीम में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इस वक्त केरला भी आगे आ रहा है, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सब और उड़ीसा में भी, ये सब 7-8 जो हमारे प्रदेश हैं, इसमें करीब 4-5 लाख हेक्टेयर एरिया जो है इस भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत इस वक्त कवर किया जा चुका है
2: जी।
3: और इसका जो फोकस है इस स्कीम में, इसमें किसानों को क्लस्टर में इकट्ठा आगे किया जाता है और किसानों को जो नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि ऑन फार्म ही, जैसे हमने बात की कि उनको चाहे

0: वहाँ पर वो बीजा अमृत जीवा अमृत बनाना है या और भी कोई बोटेनिकल और भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, बायोपेस्टिसाइड्स नीम आधारित काउ यूरिन आधारित फार्म के ऊपर जो बनाना है उसके लिए उनको 12,300 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 साल के लिए ये स्कीम चलाई गई और इसमें काफी किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो फोकस था सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का वो यही था कि प्रकृति के नियमों के आधार पर और खेती को बढ़ावा दिया जाए और ये देखा जाए पायलट बेसिस पर कि क्या इसका जो है रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, काफी सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं और यही जो टी विजय कुमार साहब ने जो बात की कि यही जो इन्हीं चीजों के ऊपर इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर ट्रेनिंग्स दी गई लोगों को, फार्मर्स को, किसानों को, और उनको ये बताया गया कि इसके लाभ क्या है, किस तरह से इसको किया जाए, गाय आधारित, काउ डंग आधारित, काउ यूरिन आधारित किस तरह से खेती हम कर सकते हैं और जो आउटसाइड इनपुट्स हैं बाहर से हमें कुछ भी चीजें परचेज ना करनी पड़े और आसान जो प्रमाणीकरण का सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट किया जाए, जैसे पीजीए सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है उसको करवाया गया। तो इस तरह से ये स्कीम चलाई जा रही है।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर धनी, जैसा आपने कहा, लेकिन ये बात यहां पर भारतभूषण जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किसान के लिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी चुनौतियां उसके सामने आती हैं, बतौर किसान किस तरीके से आप अंतर करते हैं जैविक खेती की हम बात करें और प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं? तो
2: देखिए, लंबे समय से किसानों की आर्थिक कमजोरी का कारण कहीं ना कहीं जो भी रहा उसकी पूरे देश में समीक्षा भी होना बहुत जरूरी है और जिस प्रकार की बातें अभी आदरणीय टी कुमार जी ने रखी हैं, टी विजय कुमार जी ने
1: जी,
2: मैं उन्हीं में कुछ बिंदुओं को जोड़ना चाहूंगा कि जब हम विजनरी होकर किसी चीज को देखते हैं तो उसमें जो सारी पद्धतियां जो विकसित होती हैं उन सभी को इंटीग्रेट करना जरूरत है ताकि किसानों तक एक ही बार में पूरी सूचना जाए
1: जी।
2: किसानों को एक बार में हम केवल एक चीज बताते हैं और दूसरी बार में फिर दूसरी चीज बताते हैं तो किसानों के लिए मुश्किल होता है। इस समय किसान केवल ये सुनना चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़ने में प्राकृतिक खेती की क्या भूमिका है
1: जी।
2: तो केवल इतना बताना है कि प्राकृतिक खेती में अब तुम्हारा किसानों का खर्चा तो कम होगा ही होगा, साथ में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण के साथ प्रसंस्करण और प्रसंस्करण के साथ ब्रांडिंग पैकेजिंग करते हुए यदि हम बाजार व्यवस्था तक जाते हैं तो आधुनिक खेती में जो बाजारीकरण के प्रभाव से किसानों की आमदनी बहुत कमजोर हुई
1: जी,
2: उसके प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा बढ़ने के, बल्कि गुणात्मक रूप से बढ़ने के संभावना उसमें से दिखती है
1: जी।
2: किसान सुनना ये चाहता है कि यदि मैं आज से ही प्राकृतिक खेती करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, तो करने वाले हिस्से में किसान की अभी तक भूमिका रही है। अब हम उसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ दें कि करके समझने से अच्छा जो अध्याय था हमारा वो समझकर करने का है
1: जी।
2: अर्थात किसान 3 वर्ष तक यदि किसी योजना में जुड़ते हैं तो उनको उस बीच में इतना अभ्यास जरूर करा दिया जाए ताकि उनको प्राकृतिक खेती का विजन भी क्लियर हो जाए और उनके मिशन में प्राकृतिक खेती एक व्यवसाय के रूप में स्वावलंबी आर्थिक विकास की प्रेरणा के साथ राष्ट्रीय धरोहर बन जाए
1: जी।
2: भारत को आज इस चीज की जरूरत है,
1: बिल्कुल आवश्यकता हम महसूस करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो हम हमेशा से हम कहते आए हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां न सिर्फ मजबूती जो चाहिए बल्कि वो मजबूती हर एक किसान तक आनी चाहिए और हर एक किसान के अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ शायद वो अब मजबूती है और हमारी वजह से ही कहीं ना कहीं जो कृषि है इस देश की वो आत्मनिर्भर बनी है। इस बारे में विजय कुमार जी आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, जब हम आत्मनिर्भर कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती को अगर उससे जोड़ा जाए या अब आज के समय में हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो आने वाले समय में जैसा आपने कहा था जो भविष्य की खेती है, तो कहीं ना कहीं भविष्य की खेती जब इन सभी घटकों से मिलेगी तो और ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भारतभूषण जी की बात थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि ये सबसे प्राकृतिक खेती में खास विशेषता ये है कि ये नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर है।
2: बिल्कुल,
3: जितना ज्ञान बढ़ेगा किसान का
1: जी
3: उतना ही इसमें रिजल्ट आएगा, तो इसमें समय लगता है और किसान के पास कौन जाएगा, कौन है किसान तो ट्रेनिंग के लिए समय बर्बाद नहीं करेगा कहीं दूर जाके, तो हम क्या करते हैं आंध्र प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी, हम जो चैंपियन फार्मर है, जो किसान इसमें एक्सपीरियंस्ड है, प्रिंसिपल समझ में आया है, उन्होंने 2-3 साल ऐसा फसल लिया है, उनको हम किसान शिक्षक मानते हैं।
1: देखिए किस तरीके से एक जो किसान है वो ना सिर्फ एक किसान शिक्षक की भूमिका में हो, बल्कि जो एक कहीं ना कहीं विश्वास जो है तब और ज्यादा आता है किसान का, जब दूसरा किसान जो है उनको और ढंग से सारी चीजें समझाते हैं। और डॉक्टर गगनेश, अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ योजना अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब एक किसान दूसरे किसान को चीजें बताता है तो शायद और बेहतर ढंग से उसका जो परिणाम है हमारे सामने होते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि हमने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं ना सहभाग गीता प्रतिभूति प्रणाली, अगर हिंदी में कठिन उसमें कहा जाए तो पीजीए सिस्टम के नाम से इस सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण सिस्टम को जाना जाता है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक में देखा कि उसमें काफी अच्छा जो नॉलेज एक्सचेंज से और किसानों के द्वारा खुद की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को खुद ही करना, पहले तो नॉलेज को शेयर करना, पहले तो अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस मोबिलाइजेशन किसानों की हमने करवाई, उनको कलेक्टिव्स में जोड़ना, फिर उनको ट्रेनिंग दिलाना, तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ये सारी चीजों को एडॉप्ट किया, करवाया किसानों से, किसानों को ट्रेन भी किया और किसान कुछ हद तक ट्रेन भी हुए हैं
1: जी।
0: और नॉलेज एक्सचेंज, नॉलेज शेयरिंग से एक दूसरे के खेत में क्या हो रहा है, खुद ही उन्होंने एक दूसरे का इंस्पेक्शन भी किया, पीयर अप्रेजल भी किया, जिसको हम पीयर इंस्पेक्शन कहते हैं, पीयर अप्रेजल कहते हैं, उसके आधार पर एक दूसरे की खेती को मोहर भी लगाना कि हाँ हम एक दूसरे का प्राकृतिक कर रहे हैं खेती में, कुछ भी हम सिंथेटिक केमिकल्स पेस्टिसाइड्स बाहर से नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो चाहे वो जैविक खेती हो, दोनों के लिए ही। प्रमाणीकरण की अगर बात करें तो प्रमाणीकरण का हमारा जो ये एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें ये कहा जा सकता है कि नॉलेज एक्सचेंज जो है किसानों को बहुत ही जरूरत है, और नॉलेज एक्सचेंज से किसानों ने अपने आप को एम्पावर किया है
1: जी।
0: और अपने आप को उन्होंने प्रमाणीकरण में भी बहुत से सर्टिफिकेशन में काफी आगे आए हैं, और इस वक्त हमारे आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लाख किसान जुड़ चुके हैं इस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन से
1: जी। ये भी एक अच्छा खासा आंकड़ा है किसानों का, जिसके जरिए देखिए लगातार हम बात करते हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र के जब विकास और विस्तार की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये आंकड़े बल्कि जो परिणाम हमारे सामने हैं वो अपने आप में सारी बात को बतला ही देते हैं। भारत भूषण जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक किसान के लिए जाहिर तौर पर चुनौतियां जो हैं वो होती ही हैं, प्राकृतिक खेती में आपको क्या लगता है, तो जैसा आपने बताया कि जो तकनीकी ज्ञान है या सारी जानकारी किसान को होनी चाहिए, लेकिन और किस तरह की चुनौतियां आपको लगती हैं जो प्राकृतिक खेती में एक किसान के सामने आती हैं?
2: देखिए, एक तो किसानों के स्तर पर सामाजिकता टूटी है
1: जी,
2: और अकेले अकेले भागने का जो कार्यक्रम रहा पिछले आधुनिक खेती में, उससे किसानों में जो आपस में बातचीत करने के तरीके थे उनमें कमजोरी आई है
1: जी।
2: लेकिन प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जहाँ किसान जब अपनी आमदनी के साथ साथ ये भी सोचता है कि यदि हम मिलकर काम करते हैं तो हमारे खर्चे भी कम होते हैं और हमारे सामान की जो बिक्री है वह भी स्थायी हो जाती है,
1: मतलब
2: उसके भी अवसर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गगनेश जी ने जो अभी बात कही थी कि जब पोर्टल पर हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के बारे में पीयर अप्रेजल की बात या उनके इंस्पेक्शन की बात, तो जो अब तक थर्ड पार्टी करती रही उसमें किसानों को जब अपनी जिम्मेदारी मिली कि हम भी एक सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हम अपनी चीजों का वेरिफिकेशन खुद कर सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे खेत का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इससे ही देखने में आया कि यदि प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय मानकों के सही आंकड़े के साथ चलाया जाए तो किसानों में सामाजिकता का भी विकास होगा, और जो छोटे किसान अपने को कमजोर मानते हैं कि आधा एकड़ है, एक एकड़ है, लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी ये पता लगता है कि खेत में उत्पादन करने के लिए हमको केवल बाहर से चीजें नहीं लानी थी बल्कि खेत में ही बहुत सारी चीजें हैं
1: जी।
2: और उन फसलों पर जैसे सब्जियों की खेती है और फलदार पौधों की खेती है, जड़ी बूटियों की खेती है, उनको अपनाए जाने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है, बल्कि कई बार क्लाइमेट के परिवर्तन और जंगली जानवरों के जो प्रकोप के किसानों के खेतों में हो रहे थे उनसे भी किसानों को निजात मिल रही है।
1: जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है कि कैसे आपकी लागत कम होगी और आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। जैसा कि यहाँ डॉक्टर गगनेश, आपने भी कहा सहभागिता जो है वो काफी जरूरी हो जाती है। विजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से जो किसान है वो उनका रुझान नजर आता है प्राकृतिक खेती की तरफ, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक साल करीब तो हमारे जो किसान है वो करते हैं और थोड़ा सा उत्पादन उन्हें कम लगता है, वो विश्वास उनको दिलाना कि अभी आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा है, क्या कुछ चुनौती आपको नजर आती है इस तरफ?
3: मैं भारत भूषण जी का और विघ्नेश जी का थोड़ा बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमने देखा है जो पहला साल है वो बहुत मुश्किल साल है
1: जी,
3: तो क्योंकि जो गांव में 10 लोग हैं तो एक ही किसान एक काम करता है शुरू में, हमारा अनुभव है 5-10% किसान ही इसको पहले साल अपनाते हैं। और ये फर्स्ट ईयर में अगर सही तकनीकी जानकारी नहीं मिली तो फिर वो पूरा स्कीम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम हर गांव में जो किसान 3-5 साल का अनुभव है वो किसान वहां पर शिक्षक है और वही उसी गांव में रहता है
1: जी।
3: ये नहीं कि किसान कहीं ट्रेनिंग पर चले गए, नहीं, शिक्षक उनके गांव में है। और दूसरी बात यह है कि महिला संगठनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि खेती में कृषि में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो रोल है, इट इज मोर देन मेंस रोल, 60-70-80% है। तो जो हमारे महिला संगठन है ये हर हफ्ता हर 15 दिन ये प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो उनसे उनको स्फूर्ति मिलती है। अगर कहीं पर कोई किसी किसान ने ठीक नहीं किया उनको सलाह मिलता है ये। तो मेरे ख्याल में ये हमारे देश का एक स्ट्रेंथ है कि देश में लगभग 8 करोड़ महिलाएं ग्रामीण प्रांत में संगठन में हैं, जुड़े हुए हैं
1: जी।
3: तो पूरे देश में प्राकृतिक खेती जल्दी ले जाने का बहुत बड़ा पॉजिटिव फाउंडेशन है, क्योंकि हमारा जो आंध्र प्रदेश में जो भी हमने किया है लगभग 15 लाख महिला जो हमारे संगठन में है, क्योंकि आपको ये भी है कि हमारे कार्यक्रम में जो बिना जमीन के किसान मजदूर हैं
1: जी,
3: तो उनके परिवारों के साथ भी हम काम करते हैं, क्योंकि उनको ये किचन गार्डन्स, होमस्टेड गार्डन्स, तो 2 सेंट है, 3 सेंट है, जितना भी कम जमीन है उनको घर के लिए जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्राकृतिक पद्धति से जो पैदा किए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सामूहिक काम
1: जी
3: बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नॉलेज डिसेमिनेशन है, फार्मर ही, किसान ही इसको दूसरे किसान के पास ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर हमेशा चर्चा होना चाहिए गांव में, अलग अलग इनोवेशंस की खोज होती है गांव में ही
1: जी।
3: और ये किसान ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है
1: जी, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है।
4: जी हाँ किसान साथियों, विचारों के आदान प्रदान के इस प्रक्रिया में हमारा जो किसान है वह अपने खुद की जो एक नई सीख है वो बाकी किसानों के साथ साझा करता है, वो बाकी किसानों को भी अपनी सीख को सिखाता है, उससे बाकी किसान भी अपने अपने खेतों में जो उन्हें सीख मिलती है यह उन्हें बाकी लोगों को तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं बहुत ही फायदा मिलता है। साथ ही हम एक्सपर्ट के माध्यम से भी और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से भी हमारी जो सीख है उन्हें एक दूसरे किसानों के साथ साझा करने की जो ये प्रक्रिया है ये काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। और यहाँ पर किसान हमारे पूर्वज भी यह करता आया है और हमें इसे जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें हमारे जो पड़ोसी किसान हैं उनके खेतों में हम जो विजिट करते हैं उनसे भी उनके खेतों की उनकी फसलों से हमें जो सीख मिलती है उन्हें हमें दूसरे किसानों तक पहुंचाना है, और हमें हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसको भी बढ़ावा देते हुए उसे हम आगे ले जाना है। साथ ही जानेंगे कुछ और प्राकृतिक खेती से जुड़ी, जैविक खेती से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: उनके साथ बात करते हुए बहुत लंबे समय से और कई राज्यों में ये बात सामने आई है कि किसान को एक ही बार में बहुत संतोषजनक तरीके से यदि गांव के ही लोग या उनके बीच का ही कोई आदमी एक सही बात उनके सामने रखता है, और उन सही बातों में कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं कि जैसे कीड़े बीमारियों का इलाज क्या होगा, हम कब से इस कार्यक्रम को शुरुआत करें
1: जी,
2: हमारे खाद के तरीके क्या होंगे, या हम जो पुराने अभ्यास करते रहे उनमें से हमको क्या बदलाव करना होगा। जैसे एक खेत में पौधे ही लगाने हैं और बीज की मात्रा है तो उसमें दूरी का नियम कैसे काम करता है
1: जी,
2: या उसमें हमको किस समय पर फसल लगानी है और हमारा मेहनत उसमें कितना लगेगा, हमें कौन से प्रकार का बीज चयन करना पड़ेगा, हमारा सामान कहाँ पर बिकेगा और उस बिकने के लिए हमको क्या परिस्थितियों से गुजरना होगा
1: जी।
2: तो इन सारी बातों के क्रम से यदि उत्तर किसानों के पास जाते हैं तो किसान में कोई संकोच नहीं है कि वो बदलना नहीं चाहता। स्थिति तब होती है कि यदि हम प्रारंभ में केवल उत्पादन भर तक बात करते हैं और फिर बाद में फिर प्रोसेसिंग की और बिक्री की बात करते हैं तो उससे उनके बीच में जो टुकड़े टुकड़े में बात जाती है। तो अभी हमारी योजनाओं में थोड़ा सा मैं डॉक्टर टीवी जयकुमार जी को ये जरूर निवेदन करूंगा, चूंकि आप राष्ट्रीय पॉलिसी पर भी आपकी आपका ध्यान रहता है और आपका सम्मान भी पूरे देश में है, मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा एक मिनट में। मुद्दे ये हैं कि राष्ट्रीय कार्य नीति, जब नीति का विषय आता है तो जो विजन है वो परिभाषा के साथ भी और योजना का को कितने आयाम है, हमको पर्यावरण को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, कुपोषण को देखना है, इकोनॉमी को देखना है और मेजर तरीके से इस समय जो चुनौती है वो इकोलॉजी भी है, हेल्थ भी है और इकोनॉमी भी है। तो ये एकदम तरीके से इंटीग्रेट अप्रोच में किस तरीके से किसान तक पहुंचेगी ये हमारे राष्ट्रीय नीति का विषय है
1: जी।
2: दूसरा मैं कहूंगा कि मंडल स्तर पर कम से कम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान जो क्लस्टर में है या महिलाओं के जो समूह हैं उनके साथ बैठकर राज्य सरकारें इस पर नीतिगत चर्चा करें कि राष्ट्रीय कार्य योजना में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए इसकी किस प्रकार की योजना इस क्षेत्र के साथ बनाई जा सकती है, ताकि ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक मॉडल के रूप में किसान सहभागिता के साथ खड़े हो जाए।
1: लेकिन मुख्य अगर देखा जाए तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो उसकी आवश्यकता है। विजय जी क्या कहना चाहेंगे इस पर?
3: जो किसान पहली कदम लेता है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि लगभग 50-60 साल से यही सुनता आया है कि अगर रसायन नहीं डालेंगे तो फसल नहीं उगेगा, तो बहुत डाउट्स होते हैं किसानों में। तो पहली बात जो है वो एक आधा एकड़ ही करेगा तो वो अपने घर के लिए जो खाना है उसी की तरफ एक्सपेरिमेंट करेगा। तो इस खेती का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है लोकल कंजम्पशन जो है और गुड कंजम्पशन गांव स्तर पर। बाजार की बात भी है लेकिन मुझे जो लगता है गांव का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो बढ़ाने में ये बहुत काम करता है, क्योंकि किसानों को अगर हमारे जो इंटीग्रेटेड प्रपोजल में हर गांव में जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ताकि रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए
1: जी,
3: और जो भी गांव का कंजम्पशन है फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ये केवल अपर मिडिल क्लास या ऊंचे दर्जों के लोग की कंज्यूमर्स के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, हर साधारण सिटीजन हमारे देश का वो हकदार है कि उसको न्यूट्रिटिव खाना मिलना चाहिए
1: जी,
3: और सही दाम पर। तो ये दोनों बैलेंस करना है। तो उसमें अगर गांव पे ही सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए, तेल निकालने का, दाल को रोस्ट करके प्रोसेस करने का, राइस मिल, आटा चक्की, ये सब हर गांव में या क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए अगर ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है अगर एस्टेब्लिश करे, युवक हैं गांव में, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जो गांव का उत्पादन है वो कम एट ए वेरी लो कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट हर परिवार को मिल सकता है। तो हमारा एफर्ट है हमारे राज्य में कि ये ऐसा महंगा नहीं होना चाहिए कि इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन मैन
1: जी।
3: तो फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारे जो 60-70% जो गांव में रहते हैं और जो मजदूरी पर ही आधारित हैं, उनका न्यूट्रिशन शुड बी आवर फर्स्ट चार्ज।
4: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि हमें यहाँ पर कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए न्यूट्रिशन फूड ही मिलना चाहिए, हम सब एक समान है और सबके लिए न्यूट्रिशन फूड की सभी को आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें इसको कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम जो हम पुनः प्राकृतिक खेती के ऊपर जो आज का कार्यक्रम था, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और अपना और अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय।

0: इसी वक्त पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया व्हील 90.8 एफएम के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टंटिया व्हील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टंटिया व्हील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम टूट भी जाते हैं और वहीं से हम खुद को दोबारा बनाना सीख जाते हैं। आज की हमारी कहानी और गेस्ट, उनकी जर्नी, उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। पेन से पर्पस तक का एक बहुत ही खूबसूरत सफर, एक सोलफुल जर्नी। प्लीज वेलकम लवीना झालानी जी, जो एक प्राणिक हीलिंग इंस्ट्रक्टर हैं, फाउंडर ऑफ कुशा डिवाइन होम हैं और एक ऐसी हीलर हैं जिन्होंने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि सबसे पहले खुद को हील किया। तो चलिए आज का जिंदगी के रंग गीतों के संग आगे बढ़ाते हैं लवीना झालानी जी के साथ। तो लवीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
2: बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं।
1: जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज आप बहुत कुछ कर रहे हैं और वो बहुत न्यू फील्ड्स हैं हमारे लिसनर्स के लिए। तो हम डायरेक्ट डाइव करते हैं हमारे पहले सवाल से। आपने बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन मुझे कही थी कि आपने प्राणिक हीलिंग को नहीं चूज किया, प्राणिक हीलिंग ने आपको चूज किया। तो वो कौन सा फेज था मैम, कौन सा एक मोमेंट था, एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में जहां पे आपको ये रियलाइज हुआ कि यू नो दिस इज माय लाइफ पाथ और ये सिर्फ एक लर्निंग नहीं है बल्कि मेरी लाइफ का पर्पस है? वो क्या मोमेंट था या क्या सेट ऑफ इवेंट्स थे जिसने आपको यहाँ लीड किया?
2: तो ऑनेस्टली मुझे आज भी यही लगता है कि प्राणिक हीलिंग को मैंने चूज नहीं किया बल्कि कहीं ना कहीं प्राणिक हीलिंग ने ही मुझे चूज किया है। तो लाइफ का एक ऐसा फेज आया था जब बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बढ़ता चला जा रहा था, एक एम्प्टीनेस थी। मैं एक ऐसी जर्नी पर थी जहां मैं खुद को समझाने या इमोशनल बैलेंस पर इनर स्ट्रेंथ की तलाश में थी। मैं कोशिश कर रही थी सब वापस लौट कर आए। पर जब मैं पहली बार प्राणिक हीलिंग मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होती है बल्कि एनर्जी, इमोशनल और सोल लेवल पर भी होती है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद के अंदर फील किया। मैं पहले से बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करी, इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करी और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मुझे ये लगा कि ये हीलिंग मुझे वापस खुद से कनेक्ट कर रही है। तो शायद मैं भी और किसी की लाइफ में छोटी सी होप या एक छोटी सी लाइट वापस ला सकती हूँ। वही एक मोमेंट था जब मुझे समझ में आया कि ये मेरी लाइफ की लर्निंग नहीं है, ये मेरी लाइफ की एक कॉलिंग है।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जर्नी मैम आपने बताई और बहुत डेफिनेटिव मोमेंट्स होंगे वो जब आपने अपने आप को एक्चुअली एक्सटर्नल की जगह इंटरनल शिफ्ट लिया एंड दैट इज वेन आपने टैप किए अपने अंदर के सोर्सेज, आपके अंदर की एनर्जीज। एंड बहुत ही खूबसूरत सफर रहा आपका जैसे आपने बताया। इसी एहसास के साथ, इसी खूबसूरत जवाब के साथ हम सुनते हैं आज का हमारा पहला गीत, आशाएं, फ्रॉम द फिल्म इकबाल।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक लवीना जी। आपने हमें बताया कि आपकी पर्सनल जर्नी में बहुत सारे इमोशनल फेजेस आए मैम, जो मैं आई लीव इट टू यू इफ यू वांट टू डिस्कस देम स्पेसिफिकली, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम अगर आप बताना चाहें। बट मुझे ये जानना है कि जब ऐसा वक्त किसी के जीवन में आता है तो नेचुरली अंदर से आप टूट जाते हो, अब मतलब शैटर हो जाते हो, तो खुद पर वापस भरोसा करना कितना डिफिकल्ट होता है। और बिकॉज आप एक हीलर हैं, तो आपने क्या मेथड्स अपनाए अपने आप को दोबारा बिल्ड करने के लिए एंड टू बी वेयर यू आर टुडे? वो क्या जर्नी थी मैम?
1: तो प्रेगनेंसी का जो लॉस होता है ना, वो एक वेमेन को पूरी तरीके से तोड़ देता है, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल पेन नहीं होता है, आपको बहुत डीप लेवल तक इमोशनल और मेंटल पेन भी देता है। और एक मदर या एक विमेन ना इसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरे लिए वो फेज एक्सट्रीमली पेनफुल रहा और मैं कम्प्लीटली इमोशनली शैटर हो गई थी। मैंने बेस्ट डॉक्टर्स, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूटने लगा और कुछ एक्सटेंट तक खुद पे भरोसा भी। लेकिन उस पेन ने मुझे एक बहुत पावरफुल लेसन दिया, ब्रोकन का मतलब हमेशा फिनिश नहीं होता। थ्रू प्राणिक हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेयर्स एंड सॉर्ट ऑफ इनर हीलिंग ने मुझे धीरे धीरे समझाया कि खुद से कनेक्ट करे रखना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने सबसे पहले अपने पेन को सप्रेस नहीं किया और उसे एक्सेप्ट किया कि ये मेरे साथ हो चुका है, और फिर धीरे धीरे उसे हील करा। मंत्रा वर्ड वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। और आज जब मैं अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ तो दिल से लगता है कि लाइफ ने मुझे सिर्फ टेस्ट नहीं किया है, लाइफ ने मुझे पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो लेसन सिखाया वो ये है कि हमेशा होल्ड अप नहीं करना और लेट गो करने देना चीजों को और इमोशंस को, आपके पास्ट को जाने देना और आगे बढ़ते चले जाना।
0: टूली, जितना हम उसे होल्ड करते हैं उतना वो पेन आई थिंक बढ़ता जाता है, एंड हम सेल्फ इन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं एक पॉइंट के बाद, और हम उसे वैल्यू करने लग जाते हैं, रिवेल करने लग जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम समझने की जगह हम उसको एक स्टेट ऑफ अफेयर बना लेते हैं अपने जीवन का। तो बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि कैसे लेट गो करना, एंड सबसे पहले एक्नॉलेज करना अपने ग्रीफ को, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, एंड देन वो जो फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ है उनको पास करना। सो आई वुड लाइक टू टेक द नेम्स ऑफ योर चिल्ड्रन, उनका क्या नाम है, हम उन्हें हमारी पूरी एसएन फैमिली उन्हें हेलो कहना चाहेगी।
1: तो मेरे बेटे का नाम है राम।
0: ओके, वाओ।
1: और मेरी बेटी का नाम है राध्या।
0: ओ ब्यूटिफुल नेम। तो राम एंड राध्या, हम आपको बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं एसएन फैमिली की तरफ से, आपको हेलो, हाय एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर योर फ्यूचर।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। मैम आगे चलते हैं। फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बिकॉज कई बार जैसे हमने डिस्कस किया कि हम पेन को गले लगा लेते हैं, उसके साथ रहना सीख लेते हैं और उसको एक स्टेट ऑफ अफेयर मान लेते हैं। बट इसी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जिन जिन ने आपको शायद हर्ट किया है आपके रास्ते में, जो आपकी जर्नी में लोग आए हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं यू नो दुख पहुंचाए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो फॉरगिवनेस से काम करना और लेट गो करना उन लोगों को ब्लेस करके कि ठीक है ये हो गया एंड नाउ यू नो वी आर डन एंड डस्टेड विद इट। तो लेट गो करने के लिए ये फॉरगिवनेस वर्क, ये मेडिटेशन, ये जो पूरी जर्नी है जो आपने अपनाई अपनी लाइफ में, वो कैसी थी और कितना इम्पोर्टेंट है सच में किसी को फॉरगिव करना खुद को फ्री करने के लिए?
1: तो फॉरगिवनेस वर्क और मेडिटेशन ने मेरी जर्नी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पहले मुझे लगता था कि फॉरगिवनेस का मतलब है सामने वाले को सिंपली माफ कर देना या ये मान लेना जो भी हुआ वो सही था या डेस्टिनी थी। लेकिन धीरे धीरे प्राणिक हीलिंग फॉलो करने के बाद मुझे एक बहुत ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग आई। फॉरगिवनेस जनरली सामने वाले के लिए नहीं होती है, ये हमारे खुद के पीस और हमारे खुद के अटैचमेंट जो हम पास में ग्रजेस रख के बैठे हैं उसके लिए होती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स और अपने क्लाइंट्स को यही एग्जाम्पल से समझाती हूँ से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अभी एक पानी से भरी हुई बॉटल दूं और मैं बोलूं आपको इसे 5 मिनट तक हाथ में पकड़े रखना है, आपको शायद इजी लगेगा कि ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है। मैं बोलूं अब आप इसे 1 घंटे तक पकड़े रखिए, थोड़ा सा आपके हाथ में पेन चालू होगा। नाउ मैं नेक्स्ट बोलूंगी इसे 2 दिन तक हाथ में इसी तरीके से पकड़े रखिए, टू एन एक्सटेंड आपका हाथ इतना स्टिफ हो जाएगा कि आप उसे मूव भी नहीं कर पाओगे। अब चीज क्या है, बॉटल भी सेम है, उसके अंदर जो पानी है वो भी सेम है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग दैट बॉटल वो बढ़ गया है जो आपको अब हर्ट दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने पास्ट को, अपने एंगर या रिसेंटमेंट को, किसी ने कुछ कह दिया उसे होल्ड अप करके अपने अंदर रखे जा रहे होते हैं। क्या वो पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहा है जो आप अपने मन में ग्रज लेके बैठे? तो हम जितना अंदर होल्ड करके रखते हैं उतना ही हम इमोशनली स्टक हो जाते हैं। हम फिजिकली तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन समहाउ हमने अपने लेसन नहीं लर्न किए हैं और हम उसी पर्सन से आज भी अटैच्ड हैं। एंड आप अगर गौर करेंगे तो लाइफ में आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो सेम चीज आपको वापस सिखाने आए। तो मेडिटेशन ने मुझे रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सिखाया, थोड़ी देर शांत बैठ के पूरी पिक्चर को देखना समझाया, और फॉरगिवनेस ने मुझे बहुत डीप लेवल तक लेट गो करना सिखाया ताकि मैं खुद को अंदर से हील कर सकूं।
0: बहुत ही,
1: और जब आप जेन्युइनली सिंसियरली फॉरगिव करना स्टार्ट करते हो तो एक अंदर जो हैवीनेस है वो आप धीरे धीरे डिसॉल्व करते हो, और ये ही आपकी ट्रू फ्रीडम है जो आपको खुद से बिल्कुल फ्री कर देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल आपने हमें बताया। जब आप कह रहे थे तो मैं इमेजिन कर रही थी पैरेलली कि वो कैसा होगा वो फीलिंग, कि सच में कितनी स्टिफनेस आ जाएगी, और वो स्टिफनेस सिर्फ एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर नहीं आपकी पूरी पर्सनालिटी में आ जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया। अब प्राणिक हीलिंग के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज हमारे लिसनर्स जो हैं वो बहुत ले पीपल हैं जिन्होंने शायद नहीं जानते कि प्राणिक हीलिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है, तो अगर कुछ बेसिक्स अगर आप बता सके प्राणिक हीलिंग के बारे में मैम।
1: तो प्राणिक हीलिंग एक नो टच थेरेपी है, ये मास्टर चुआ ने दी है और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ,
0: मास्टर आई मिस दैट
1: मास्टर चुआ कॉक्सी,
0: ओके
1: ही वाज फ्रॉम फिलिपिन, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ स्टडी करी और हम जैसे नॉर्मल लोगों को मोडालिटी दी है जिससे बोलते हैं प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, 1 पार्ट इज हीलिंग एंड अदर पार्ट इज मेडिटेशन।
0: राइट,
1: तो आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द सीनियर्स टेलिंग इन द क्लास जब उन्होंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन दिया था
0: जी,
1: बहुत ब्यूटिफुल मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है 20 मिनट का। तो जो मठों में लामा वगैरह होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने काफी आर्ग्यूमेंट किया था कि आपने 20 मिनट में वो दे दिया जो हम शायद 20 साल की तपस्या में फील कर पाते हैं।
0: राइट,
1: तो ये जो पूरी मोडालिटी है ये चक्रा बेस्ड और एनर्जी बेस्ड मोडालिटी है। वी डू नॉट टच आवर क्लाइंट, हम इसे डिस्टेंसली करते हैं और आपके चक्रा की जो कर उसे क्लेंस और एनर्जाइज करने पर फोकस करते हैं, इसीलिए ये और मोडालिटी से पूरी तरीके से अलग है।
0: राइट, थैंक यू सो मच मैम हमें बताने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा ले पर्सन्स हैं और वो जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली प्राणिक हीलिंग किस तरह से काम करती है। जैसे आपने बताया चक्रास को हील करती है, विदाउट टच हील करती है, और मेडिटेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। हम हमारे अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आज का अगला गीत फिर से उड़ चला फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, इंस्पिरेशन से भरा। आगे चलते हैं लवीना जी, आपने बताया कि प्राणिक हीलिंग आपके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, और मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि कोई भी इंसान जो एनर्जी हीलिंग में है, इस तरह की प्रैक्टिसेस में है, वो आई थिंक उसके लिए ये सच में सिर्फ एक प्रोफेशन से बहुत बढ़ के होता है। ये ह्यूमैनिटी को टच करने जैसा होता है, सेवा जैसा होता है, जैसे आपने बताया। तो आप जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है, जब आप किसी इंसान का स्ट्रेस, उनका फियर, उनका इमोशनल पेन हील कर पाते हैं, उसके बाद वो जो फील करते हैं, जो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको क्या फीलिंग देते हैं? और इसी के साथ अगर आप कोई एक क्लाइंट एक्सपीरियंस या कोई ऐसा मूविंग एक्सपीरियंस जो आपको आज भी याद है, वो अगर साझा करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: बिल्कुल सही है, प्राणिक हीलिंग मेरे लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत डीप डाउन मेरे हार्ट से कनेक्टेड है और मैं ऐसे एक सेवा के जैसे भी देखती हूँ। तो जब कोई पर्सन स्ट्रेस, फियर, इमोशनल पेन या कंफ्यूजन के साथ मेरे पास आता है या मेरी क्लास में बैठता है, और क्लास के बाद जब वो मुझसे फीडबैक देता है और कहता है कि लवीना जी बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत टाइम बाद एक शांति सी महसूस हो रही है, तो जनरली मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं अपनी खुशी जाहिर कर सकूं, क्योंकि उस मोमेंट पर आप सिर्फ एक इंसान को हील नहीं करते हो, आप देखते हो कि उसके अंदर वापस जीवन जीने की एक होप वापस आ रही है, जो सिर्फ टेम्पररी नहीं है, जो वो क्लास के दौरान सीख रहा है और एक स्पिरिचुअल टूल अपने साथ लेके जा रहा है जो आगे लाइफ में उसे हर फेज पर सपोर्ट करेगी। मास्टर चोकॉक्स की टीचिंग्स ने मुझे ये समझाया कि हीलिंग सिर्फ टेक्निक नहीं होती है, हीलिंग में कंपैशन, आपका इंटेंशन और जेन्युइन सर्विस भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। ऑनेस्टली कभी कभी मैं जब अपने बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में सोचती हूँ और मैं ये रियलाइज करती हूँ कि लाखों लोगों के बीच में गुरु ने आपको ट्रेनर बनाया और उनकी टीचिंग्स को स्प्रेड करने का एक मौका दिया, तो मैं बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाती हूँ कि आप किसी की लाइफ को टच करके उसे हील करना सिखाते हो, उसे इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाते हो। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आप अगर किसी का पूरी तरीके से पेन नहीं भी हटा पा रहे हो, तो उस अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला पा रहे हो। तो मैं मेरे बच्चों का ही एग्जाम्पल दूंगी, तो मेरा जो बेटा है ही वॉज बर्न सेकेंड डिग्री, तो पूरी फैमिली प्राणिक हीलर है एंड फाइव, मतलब हम लोग को यही था कि वेदर ही विल सर्वाइव और नॉट, ही वॉज जस्ट 9 months ओल्ड बेबी एंड उसका पूरा बैक चल गया था। Around the clock उसकी हीलिंग हुई, 5 days he was admitted and doctors were also shocked कि ये कैसे हो गया, मतलब इतनी जल्दी हीलिंग कैसे हो गई। Thanks to the guru and thanks to universe and my complete family जिन्होंने उसको हील किया, क्योंकि उस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं थी, बच्चे के साथ थी। वो एक फेज ऐसा था तब मुझे लगा कि जितने भी बर्न केसेस है मुझे हॉस्पिटल जाके लोगों को हील करना चाहिए। जो आप देते हो वो आपके पास पलट के आता है। मैंने कई लोगों की फ्री हीलिंग्स करी है बर्न केसेस में, वो डर एक कर्मा मेरे पास रिपीट होके आया।
0: जी आई कैन इमेजिन हाउ वो फेस किस तरह से आपको झंझोर के रख देता होगा। आई होप योर सन इज ऑल फाइन नाउ एंड
1: ही इज परफेक्टली वेरी नॉटी नाउ।
0: गुड गुड गुड, वी आर सेंडिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम इवन नाउ एज वी स्पीक। एंड आपने सच कहा कि अगर कंपैशन नहीं है, डिवाइन आपका इंटेंशन नहीं है, तो ये काम आप नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको बियॉन्ड अपने प्रोफेशनल डोमेन से निकल के बहुत पर्सनल होना पड़ेगा टू डू सच वर्क, और बहुत खूबसूरत काम आप कर रहे हैं मैम, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं, और आपका जो वेंचर है, आपका जो बेबी है कुशा डिवाइन होम, आपका एक और बेबी है एक्चुअली, आई थिंक यू हैव 3 kids, जो आपकी हीलिंग जर्नी का एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे आप क्रिस्टल्स, अतर और स्पिरिचुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स की तरह नहीं देखते, बल्कि एक एनर्जेटिक सपोर्ट की तरह देखते हैं। तो अगर आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा बता सकें कि ये किस तरह से काम करता है, एनर्जी और इंटेंशन का क्या कनेक्शन है, और ये जो आपके सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे कुशा डिवाइन होम में, ये किस किस तरह से कहाँ कहाँ तक हीलिंग कर सकते हैं, क्या इनका पर्पस है, कैसे आप इनको डिवाइस करते हैं?
1: कुशल डिवाइन मेरे लिए मेरी हीलिंग जर्नी का एक नेचुरल एक्सटेंशन है. मैं क्रिस्टल और अतर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं देखती हूँ. मेरे लिए ये एक एनर्जेटिक सपोर्ट टूल है. जैसे हर क्रिस्टल की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अतर्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है इंटेंशन. एनर्जी हमेशा आपका इंटेंशन फॉलो करती है. जो आप सोचते हो वो होता है, वो ही आप अट्रैक्ट करते हो. इसलिए कुशा डिवाइन में हम रेडीमेड क्रिस्टल्स रैंडमली डिस्पैच नहीं करते. हम पहले अपने क्लाइंट का पूरा इंटरव्यू लेते हैं, उसका इमोशनल स्टेट, वो क्यों हमसे क्रिस्टल बाय करना चाह रहा है, उसका क्या एनर्जी पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक न्यूमरोलॉजिक वैदिक चार्ट क्रिएट करते हैं. करेंटली उसकी कौन सी दशा या अंतर दशा चल रही है
0: जी
1: वो समझने की पूरी कोशिश करते हैं. एंड उसके बाद उसे कोई भी क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है. जैसे ही वो अपना चूज कर लेता है क्रिस्टल जो भी उसे बाय करना है, हम उस क्रिस्टल को फिजिकली क्लेंस करते हैं ताकि जो भी पहले की एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टल है तो वो अच्छी बुरी दोनों एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो जितनी भी पहले की नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव कर सके. फिर उस क्रिस्टल को हम स्पेसिफिकली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 days वी चार्ज इट विथ स्पेसिफिक मंत्र प्राणी के लिए होते हैं. हम उसे खुद पर्सनली चार्ज करते हैं ताकि उस पर्सन को अपनी लाइफ में कोई भी इमोशनल फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप इश्यू आ रहा है वो उसे बहुत इजीली डील कर सके. तो मेरे लिए रिचार्जिंग एक रिचुअल नहीं है, ये एक एनर्जी प्रोसेस है. मैं खुद को बहुत प्राउडली अलग इसलिए कहती हूँ क्योंकि वी जस्ट डोंट सेल. हम उसके बाद आपने क्रिस्टल पहन लिया, हम उसे 2 दिन बाद फिर सेल्फ रिचार्जिंग करने का भी तरीका बताते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि उसकी एनर्जी, अगर हम फोन आज बैटरी से चार्ज करेंगे कितनी लाइफ है उसकी, 2 दिन, तीसरे दिन हमें फिर से चार्ज तो करना ही पड़ेगा ना. ये चीज कोई नहीं बताता.
0: राइट,
1: तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने क्रिस्टल्स को रेगुलरली चार्ज करें. और मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिस्टल्स मैजिक शॉर्टकट नहीं है. आपकी हीलिंग और आपकी ग्रोथ हमेशा आपकी इनर वर्क से आती है. लेकिन राइट क्रिस्टल, राइट गाइडेंस और राइट इंटेंशन से अगर वो चार्ज है तो आपकी ग्रोथ बहुत इजीली हो जाएगी. जितने भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एकदम साइड होके चली जाएगी.
0: कोई एक दो अगर क्रिस्टल्स के बारे में हमें बता सके या अतर्स के बारे में, आपके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता सके मैम, जो आपको
1: जैसे
0: लगता है
1: मैं
0: कि
1: रोज क्वार्ट्ज बेचती हूँ या फिर हम सेल करते हैं सिफ्रीन. तो रोज क्वार्ट्ज बेसिकली आपका शुक्र प्लैनेट फ्राइडे को एक्टिवेट करता है. पीपल हु डू नॉट हैव सेल्फ लव या फिर उनकी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, पैसा आ जाता है टिकता नहीं है, या खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, तो मैं उनको रोज क्वार्ट्ज देती हूँ. या फिर हस्बैंड वाइफ में या माँ बेटी में या इन लॉज में झगड़ा चल रहा है, रिलेशनशिप कोई भी टाइप का रिलेशनशिप है या फेसिंग स्ट्रगल इन योर रिलेशनशिप, आई जनरली सजेस्ट देम रोज क्वार्ट्ज. या तो आप पहन ले या फिर उसका स्टोन अपने रूम में या अपने ऑफिस में रख लीजिए. वही अट्रैक्ट करेंगे धीरे धीरे लोगों को आपकी वैल्यू, आपके टाइम की और आपकी प्रेजेंस की रियलाइज होने लग जाएगी.
0: राइट. एंड सिट्रीन आपने बताया, सिट्रीन का पर्पस?
1: सिट्रीन बेसिकली आपके जुपिटर प्लैनेट को एक्टिवेट करता है, गुरु को.
0: ओके, ये ऑरेंज कलर का होता है शायद?
1: इट्स येलोइश, वेरी पेल येलो.
0: ओके ओके,
1: वेरी पेल येलो
0: जी.
1: तो यूजुअली ये जो लोग आफ्टर मैरिज जिनको प्रॉब्लम आती है, पैसा घर में बहुत है लेकिन मेरे लिए नहीं है. बाहर स्पेंड कर रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दे रहे हैं. ठीक है, मेरे पास ज्ञान बहुत है लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं इस ज्ञान को कैसे लोगों तक पहुंचा सकूं. मैं बोलने में बहुत अच्छी हूँ लेकिन जहाँ विजडम वाले मुझे डिसीजन लेना, आई एम ऑलवेज मेकिंग अ मिस्टेक. क्योंकि गुरु इज फॉर योर एजुकेशन और डिलीवरिंग प्रॉपरली. तो उस केस में मैं ये रिकमेंड करती हूँ. तो आप जो अर्न करते हो वो आपके पास टिकता भी है और आता भी है.
0: वाह
1: आप सडनली बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हो किसी भी नॉलेज के। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राणिक हीलिंग कर रहे हो तो आप उसके आगे के स्टेजेस पढ़ने लग जाओगे, एनर्जी वर्ल्ड को बहुत डीपली समझने लग जाओगे। तो हर इंसान का अलग अलग कंसर्न होता है, उस हिसाब से इसे चार्ज किया जाता है।
0: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मैम। बहुत सारी नॉलेज आज शायद हम साझा कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के साथ। और जैसे कि आपने सुना कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, आपका वीनस वीक है, तो रोज क्वार्ट्ज पहने, ये पिंकिश कलर का स्टोन होता है, और कुशा डिवाइन सेंटर को प्लीज यू नो कॉन्टेक्ट करें और जानें कि आपका कौन सा प्लैनेट वीक है और किस स्टोन की, किस क्रिस्टल की या किस प्रोडक्ट की आपको जरूरत है अपनी वेलनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए। तो आगे चलते हैं मैम, हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, तू फिजा है, फ्रॉम द फिल्म फिजा।

नवीना जी, आजकल बहुत सारे लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। हम जिन ओवरवेलमिंग टाइम्स में रह रहे हैं, जिस तरह का हमारे आसपास फिजिकल जो हमारे एनवायरनमेंट्स में चेंज है, जो

0: हमारी लाइफस्टाइल्स में चेंज है, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं बहुत नॉर्मल है, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और ये सब होना। तो आज जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जो इस वक्त मेंटली हेवी फील कर रहे हैं, उनके लिए अगर आप कोई एक बेसिक सी एडवाइस देना चाहें कि वो ये कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज अगर ये प्रैक्टिस अपना लें, तो शायद कुछ हैवीनेस, थोड़ी सी चीजें बेटर हो सकती हैं और आप उसकी तरफ एक पहला कदम उठा सकते हैं, वो अगर कुछ अगर आप साझा करना चाहें तो इस डायरेक्शन
1: जो
0: में।
1: भी इस वक्त मेंटली या इमोशनली फील कर रहे हैं, मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहती हूँ, प्लीज अपने आप को वीक मत समझिए। ये भी जिंदगी का एक दौर है और ये भी निकल जाएगा। आजकल हम सब बहुत कुछ इमोशनली स्ट्रेस कैरी करते चलते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रेशर, ओवरथिंकिंग, एक्सपेक्टेशन आ जाती है और धीरे धीरे माइंड और एनर्जी दोनों ही ड्रेन हो जाती है। कभी कभी आप वीक नहीं होते, आप सिर्फ इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हो। तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, आप रोज खुद को 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। एक शांति की जगह में 5 मिनट खुद के साथ बैठिए और आंखें बंद करके जीभ को तालू पे लगा के डीप इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। और वाइल एक्सहेलिंग, जब आप सांस छोड़ते हैं, आप विजुअलाइज करिए कि जितना भी स्ट्रेस है, जो भी थॉट आपको परेशान करना है या जो भी हैवीनेस आप फील कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके पूरे सिस्टम से रिलीज हो रही है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि सुबह नहाते वक्त या जिस भी वक्त आप नहाते हैं, थोड़ा सा पानी में बाल्टी में नमक डाल सकते हैं या फिर नहाने के बाद पूरी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं एंड जस्ट नॉर्मली पानी से उसे साफ करते हैं। आपने ध्यान होगा, बचपन में मम्मियां हमारी नमक से नजर उतारती थी। तो नमक क्या होता है, एक नेचुरल क्लेंजिंग होती है नमक में, जो हमारे ऑरा में से कोई भी डर्टी एनर्जी होती है, कोई भी नजर होती है, उसे नेचुरली क्लीन कर देता है। और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो हर वक्त स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है और हर चीज अपने सर पे लेने की भी जरूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थोड़ी देर नेचर के साथ, अपने साथ वक्त बिताइए और उस ऊपर वाले पर और उसके प्रोसेस पे भरोसा रखिए। कभी कभी लाइफ के टफेस्ट फेज हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं और
0: बिल्कुल
1: जब हम वो लेसन सीख जाते हैं, वो प्रॉब्लम याद भी नहीं होता है भी या नहीं। और जब तक हम नहीं सीखते हैं, सेम प्रॉब्लम लेकिन डिफरेंट पर्सन रिपीट चली जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लेसन।
0: राइट, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लेसन्स लर्न करें। और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करी कि हर बार वो बर्डन कैरी करना जरूरी नहीं है, कई बार आप वो बर्डन उतार भी सकते हैं, उसको थोड़ी देर साइड में रख भी सकते हैं और किसी और के साथ उस बर्डन को शेयर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो बोझा लेके अपने जीवन भर घूमते रहें। अपने आप को थोड़ा एक स्पेस दीजिए, कट योर सेल्फ सम स्लैक एंड लाइफ अपने आप आसान लगने लगेगी। और जो रिचुअल्स मैम ने अभी हमारे साथ साझा किए, दीजिए कट योर सेल्फ सम स्लैक एंड लाइफ अपने आप आसान लगने लगेगी। और जो रिचुअल्स मैम ने अभी हमारे साथ साझा किए, आई होप हमारे श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं वो इन रिचुअल्स को अपना सकें, क्योंकि बहुत बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं अपने चक्रास को, अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को क्लीन रखने के लिए। सो आई होप ये आपको हेल्प करते हैं जैसे कि मुझे हेल्प करेंगे। आई विल सर्टनली डू इट। आगे चलते हैं मैम हमारे आखिरी सेगमेंट पर। आपके लिए ये जो पूरी जर्नी थी, आपकी जो पूरी हीलिंग जर्नी थी, आपका ये जो दिस होल पाथ जो आपने तय किया अपने जीवन में, इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें एक लाइन में या एक फलसफे में, तो वो क्या है और आपके आपके जीवन की, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही, अगर आप कुछ बताना चाहें?
1: मैंने अपने स्ट्रगल्स को हमेशा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा है और उन्हें स्ट्रेंथ में बदला है और अपनी हीलिंग को सेवा बना ली है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल, रुकावटें या जो टेस्ट आते हैं, वो हमेशा हमें तोड़ने के लिए नहीं होते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कुछ बड़ा या बेहतर दिखाने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है।

0: मुझे तुम्ही तो कैसे पसंद। मेरे लिए स्ट्रगल से, मेरे को स्ट्रगल से बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाया, लेकिन प्राणिक हीलिंग ने और उसकी टीचिंग से मुझे एक डायरेक्शन और एक पर्पस दिया। पहले मुझे लगता था हीलिंग सिर्फ मेरे इमोशन, इनर बैलेंस और कॉन्फिडेंस के लिए होती है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि हीलिंग सिर्फ पर्सन तक नहीं रिलेटेड लिमिटेड रहती है, वो आगे तक जाती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत घना पेड़ होता है, आप अगर उसके पास जाएंगे उसका काम ही है छाया देना। आप चाहे उससे कुछ एक्सपेक्ट करें या नहीं करें, वो आपको छाया ही देगा, क्योंकि उसके ऑरा में से यही निकलता है। तो जब एक पर्सन एनर्जी लेवल पर हील होता है, कोई चाहे या ना चाहे उसकी फैमिली की एनर्जी चेंज होती ही है। उसके घर का ऑरा, उसके रिलेशनशिप, उसके फाइनेंसेस, घर का माहौल, सब कुछ धीरे धीरे बेटर के लिए शिफ्ट होता है। तो हीलिंग एक पर्सनल जर्नी से शुरू जरूर होती है, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल नहीं रहती, वो धीरे धीरे दूसरों तक पहुंचती है। और मेरे लिए हीलिंग का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आप खुद को हील करें और अपनी लाइट से दूसरों की लाइट में रोशनी डालें, क्योंकि जो आप दोगे वो 100 गुना आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, शेयर योर लाइट As far and as wide you can. मैम, आप कंक्लूड करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई आपकी डिस्ट्रेसिंग हॉबीज हैं क्या? आप गाते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली, हमारा शो, हमारा प्लेटफॉर्म SN रेडियो गानों और गीतों पे बहुत फोकस्ड है, तो अगर आप गीत गुनगुना सकते हैं, अगर आप गाते हैं, तो हमारे लिए अगर एक छोटा सा गीत गुनगुना दें, या कोई फलसफा शेयर कर लें, या कुछ लिखावट आपकी जो आपने कभी लिखा हो वो शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं के साथ, जस्ट एज एन एंडिंग।
0: जी बिल्कुल, मैं गाती हूँ
1: जी।
0: मैं पिया तो से आपके साथ शेयर करना।
1: ओह वाओ वाओ,
0: कैसी भी आवाज निकले।
1: नहीं नहीं, आई एम श्योर यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। यस
0: ओके, शैल आई स्टार्ट?
1: जी।

0: के तन मन पिया तो लेना ना धीरे।
1: बहुत बहुत खूबसूरत मैम, आई एम श्योर आपको लर्न करना चाहिए। आई थिंक इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अ लर्न सिंगर, यू शुड गो अहेड एंड लर्न सिंगिंग, बिकॉज यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस। और ये इतना डिफिकल्ट गाना है, तो बहुत ही खूबसूरती से आपने गाया है। ऑलरेडी आई थिंक आई गॉट सम गूज बम्स। तो
0: थैंक यू सो मच,
1: ब्यूटिफुल सिंगिंग, एंड आई थिंक आपको परस्यू करनी चाहिए सिंगिंग, और फिर आना चाहिए ऐसे रेडियो पर अपना एक शो के साथ आज के कलाकार में। तो थैंक यू सो मच लवीना जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी प्यारी, इतनी सहज और इतनी सटीक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे श्रोताओं को आज बहुत फायदे हुए होंगे इस एपिसोड से, इस कॉन्वर्जेशन से, एंड आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आज के जमाने में, आई थिंक आज से ज्यादा इसकी कभी पहले जरूरत नहीं थी जो जिस जनरेशन में हम अब हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी एसएन फैमिली की तरफ से। तो दोस्तों, हमने जाना कि हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द को खत्म करना नहीं होता, कभी कभी हीलिंग का मतलब होता है खुद को दोबारा पहचानना। और आज लवीना जी ने हमें यही याद दिलाया कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी जरूर होती है, बस कभी कभी उसे जगाने के लिए थोड़ी सी फेथ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत होती है। चलिए अगले एपिसोड तक हम खुद के अंदर की हीलिंग को ढूंढते हैं, टैप करते हैं और उससे उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे थे अपनी आरजे, अपने तरानों की हमसफर तनुषा को, ओनली ऑन जिंदगी के रंग गीतों के संग एसएन रेडियो पर।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ

अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही

संस्कृत बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता? चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

से डरता है अपन और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान आके

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर कलाकार धर्मेंद्र। जी हां, धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल। तो आइए दोस्तों, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत सुनते हैं।

दोस्तों, धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। कहना ना होगा दोस्तों, आप भी मानेंगे कि बॉलीवुड में धर्मेंद्र सबसे ज्यादा हैंडसम इंडियन एक्टर माने गए। तो लीजिए उन्हीं की फिल्म का एक गीत हो जाए।

आपको पता ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र को बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? धर्मेंद्र का जन्म सहनवाल नामक एक गांव में, जो कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, हुआ था।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: भैया हमेशा स्पेशल बनकर रहा करो, आम बन जाओगे ना तो अचार बना दिए जाओगे।
2: What?

आपको एक मजेदार बात बताते हैं दोस्तों, धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल के बेटे का नाम भी धर्म रखा गया उन्हीं के नाम पर। तो आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी की फिल्म का एक और गीत।

दोस्तों धर्मेंद्र 1998 से लेकर आज तक कैरेक्टर रोल्स करते आए हैं। उन्होंने नए कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहित किया, जगह दी और उनका आशीर्वाद सभी नए एक्टर्स पर हमेशा बना रहता है। तो लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपको मालूम ही होगा दोस्तों, धर्मेंद्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जगह है बीकानेर राजस्थान की। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की एक फिल्म का ये गीत।

की उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, मैं तत यमला पगला दीवाना।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं दिव्या भारती। दिव्या भारती जी का जन्म 25 फरवरी 1974 में हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की ऐसी अभिनेत्री थीं जिनकी अभिनय विविधता ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे आकर्षक युवा अभिनेत्री होने का गौरव दिया। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 90 की दशक से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दिव्या ने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अभिनय किया। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: 1992 से लेकर 1993 यानी कि सिर्फ एक साल में ही दिव्या भारती ने मात्र 19 साल की उम्र में 7 हिंदी फिल्में और 7 दक्षिण भारतीय फिल्में की। इतने कम समय में इतनी सारी फिल्मों करने का उन्हें ये उपलक्ष्य हमेशा दिया गया। लीजिए सुनिए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

चंडाल चौकरी चांद चुराने आए, चमचा चिलम चकोर चिड़ैया चूचू चू चल रहा है, भैया चूचू का मुरब्बा, भैया चूचू का मुरब्बा। टकला टकलू टाक टवोरी टकिया टपकी जाए,

साप सुने सरसाए, साप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा सा संग समाए, समय सबक समझाए, खोखा खोखा जी मेरा खोखा खोखा है। फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए, फिरते फिरते फेरा फेरी फेरे

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। हालांकि दिव्या भारती को अपने पूरे करियर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को ढूंढ ही निकाला और बॉलीवुड में एक सफल मुकाम बनाया। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम टुम

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज की।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: कुछ दर्द सिर्फ दिल में रहते हैं, कहने से और बढ़ जाते हैं। लोग पूछते हैं सब ठीक तो है, हम मुस्कुराकर टाल जाते हैं। जो अपना था वही दूर हो गया, ख्वाब सारे बिखर जाते हैं। यादों के सिलसिले भी अजीब हैं, हर पल दिल को रुलाते हैं। आंसू आंखों से गिरते नहीं, बस दिल में रह जाते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जनाब, जो कभी अल्फाज नहीं बन पाते हैं, लेकिन एहसास बन के चुपचाप वहीं ठहर जाते हैं। कुछ लोग मिलकर भी नहीं मिलते और कुछ बिन मिले ही दिल में बस जाते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। महफिलों लेकर हाजिर हो चुकी हूं आपकी अपनी आपकी महफिलों की रौनक बढ़ाने वाला प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक। दोस्तों, इस दुनिया के अजीब दस्तूर हैं, कभी कभी बहुत सारी बातें कह कर भी दिल का बोझ हल्का नहीं होता, और कभी महज एक नफीस नज्म को सुनते ही रूह जैसे अंदर तक भीग जाती है। आज की शाम भी कुछ ऐसे ही अछूते एहसासों का एक मुकम्मल गुलदस्ता है, जहां गुजरे दौर की वफा और आज के जमाने के रंग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज आपको हर मकाम पर एक नया मिजाज और रंग मयसर होगा। तो अपनी सारी मसरूफियात को किनारे कर दीजिए और सुरों के इस बहाव के साथ खुद को ताज़ा एहसास अता कीजिए। तो आइए पर्दा हटाते हैं आज की हमारी पहली और बेहद ख़ास पेशकश से। दोस्तों, गुजरी हुई बातें, पुरानी यादें और वो बीते हुए लम्हे, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने दिल से जुदा नहीं कर पाता। जब तन्हाई का साया गहरा होता है तो माजी का एक एक पल हमारे सामने आईने की तरह साफ दिखाई देने लगता है। शायर अमीर कजलबाश यादों के इसी सिलसिले को इस नज्म में बेहद नज़ाकत के साथ समेटा है। वो महबूब से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछते हैं कि मुझे तो हमारे उस गुजरे कल का हर एक लम्हा आज भी वैसा ही याद आता है, पर क्या कभी तन्हाई में तुम्हें भी हमारा वो अफसाना याद आता है? और जब इस तहरीर को सुरों का लिबास पहनाने की बात आई तो हमारे सामने जो नाम आया वो है हमारे मारूफ गुलूकार गुलाम अली साहब का, क्योंकि लफ्जों को सिर्फ गाते नहीं हैं बल्कि उसके दर्द को अपनी आवाज में घोल देते हैं। उनका वो साफ और बेदाग उर्दू लहजा सीधे जहन पर एक गहरा असर छोड़ जाता है। जरा इस गजल का मिसरा मुलाहजा फरमाइए, क्या मोहब्बत के उस शुरुआती दौर का जिक्र है, कहते हैं, नया नया था वो रोना, नया नया था वो रोना, वो मुस्कुराना भी, हमें तो अब भी पहला जमाना याद आता है। और जब मोहब्बत में इंतज़ार आखिरी हदों को छूता है तो ग़ुलाम अली साहब की ठहरी हुई तान सीधे कलेजे के पार हो जाती है। फरमाते हैं, गए दिनों का तसव्वुर बदल गया वरना, गए दिनों का तसव्वुर बदल गया वरना, हमें तो अब भी वो पहला ज़माना याद है। दोस्तों, 80 की दहाई में इस कलाम को गज़ले दिल कैसेट एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत कलाम ग़ुलाम अली साहब की रूहानी आवाज़ में, हमें तो अब भी वो गुज़रा ज़माना याद है। आपकी नज़र।

दोस्तों, जब दो चाहने वालों के बीच एक लंबा अरसा गुजर जाता है और फिर वक्त के किसी मोड़ पर जब अचानक वो हमसफर सामने आ खड़ा होता है, तो बरसों की वो खामोशी पल भर में जश्न में बदल जाती है। अली सरदार जाफरी ने इस खूबसूरत कलाम में उसी रूहानी मिलन और सुकून को लफ्ज दिए हैं। मुद्दत यानी एक बहुत लंबा जमाना। शायर कहते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने देखा अचानक, तो ऐसा महसूस हुआ मानो इस बेचैन रूह को हमेशा के लिए अपनी मंजिल मिल गई हो। और दोस्तों, जब साल 1980 में इस नायाब तहरीर को मैं और मेरी तन्हाई एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया, तो हमारे जगजीत जी और चित्रा जी ने अपनी बेहद मखमली आवाज़ में इसे चार चांद लगा दिए। गज़ल के मिसरे मुलाजा फरमाइए। तिश्ना नजरें मिली शोक नजरों से जब, मैं बरसने लगी जाम भरने लगे। फिर कहते हैं, रात सोने लगी सुबह होने लगी, शम्मा बुझने लगी दिल मचलने लगे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये बेहद नफीस कलाम जगजीत और चित्रा सिंह की किया जादुई आवाज़ में।

गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया, किधर गया वो अजीब मानुस, अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। दोस्तों, जिंदगी के इस उतार चढ़ाव में कभी कभी कोई ऐसा शख्स हमारे रास्ते में आता है जो बिल्कुल अजनबी होकर भी दिल के बेहद करीब महसूस होता है। वो हमारे अतीत की दबी हुई यादों को अचानक ताज़ा कर देता है और इससे पहले कि हम समझ पाएं, वो चुपचाप उछल हो जाता है। शायर नासिर काज़मी साहब ने वजूद के इसी खामोश मलाल और बिरह को इन वजनी अल्फाजों में पिरोया है। सुराग यानी बीती हुई बातों की कोई निशानी या खोज। वो कहते हैं, वो शख्स ना जाने कहाँ से आया, मुझे अपनी यादों की कश्मकश में छोड़ गया और फिर ना जाने किधर गुम हो गया। और दोस्तों, जब साल 1983 में इस खूबसूरत तहरीर को मेराज़े गज़ल एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया तो इन अल्फाजों को रूहानी पैरहन ओढ़ाया गया हमारी आशा ताई और उस्ताद गुलाम अली जी की खूबसूरत आवाज़ों में। जब उस्ताद जी की ठहरी हुई क्लासिकी गायकी के साथ आशा ताई के सुरों का वो नाजुक सोज खुलता है तो ये कलाम सिर्फ एक गज़ल नहीं रहता बल्कि सीधे रूह के पार उतर जाता है। गज़ल का मिसरा सुनिए। ना अब वो यादों का चढ़ता दरिया, ना अब वो यादों का चढ़ता दरिया, ना फुर्सतों की उदास बरखा, यूं ही जरा सी कसक है दिल में जो जख्म गहरा था भर गया वो। फिर वो आगे कहते हैं, वो हिजर की रात का सितारा, वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। तो आइए अल्फाज से एहसास तक के इस तीसरे और बेहद नफीस मरहले पर समायत फरमाते हैं आशा ताई और उस्ताद गुलाम अली साहब की आवाज़ में इस खूबसूरत से कलाम को। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया, किधर गया वो अजीब मानुस, अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो आपकी नज़र।

साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे, साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे, दुनिया की निगाहों से जख्मों को छुपा लेंगे। दोस्तों, 1981 में इस बाकमाल सूफियाना ख्याल को मैं नौश कैसेट एल्बम के लिए रिकॉर्ड किया गया, तो इसे अपने ख़ास सुरीले अंदाज से नवाजा हमारे दौर के बेहद बाकमाल गुलकार अनूप जलोटा जी ने। जी हाँ दोस्तों, अनूप जलोटा जी जिन्हें ज़्यादातर लोग भजन गाने के लिए ही समझते हैं या जानते हैं, लेकिन अनूप जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उनकी मखमली मिठास और साफ उर्दू उच्चारण ने इस रिवायती विधा के साथ मिलकर जहन पर एक अजब सा सुकून तारी कर दिया। इस गजल का मिसरा मुलाजा फरमाएं। कहते हैं, हम देख नहीं सकते शर्मिंदगी कातिल की। मुलाहिज़ा फरमाएं, गौर करें क्या कह रहे हैं। हम देख नहीं सकते शर्मिंदगी कातिल की, जब काबे में जाएंगे जम जम से नहा लेंगे। शायर कहते हैं, जिसने मुझे जख्म दिए हैं मैं उसे अपनी ही आंखों में शर्मिंदगी का पानी भी नहीं देख सकता, यानी उसकी ही आंखों में शर्मिंदगी का पानी भी नहीं देख सकता जिसने मुझे ज़ख्म दिए हैं, इसलिए मैं अपनी तकलीफ़ों का इल्ज़ाम उन पर लगाने की बजाय खुदा की बारगाह में जाकर अपने आंसुओं और उस पाक पानी से अपने दिल के सारे ज़ख्मों को मुकम्मल तौर पर धो लूँगा। जब काबे में जाएंगे जम जम के नहा लेंगे। तो आइए सुनते हैं महफिल के अगले मरहले पर बहुत ध्यान से अनूप जलोटा जी की आवाज़ में इस बेहद खूबसूरत शाहकार को। साकी तेरी महफिल में हम जाम उठा लेंगे, दुनिया की निगाहों में जख्मों को छुपा लेंगे। शौक फरमाएं।

दोस्तों, इस मशहूर कलाम के शायर मसरूर अनवर साहब ने इस तारीखी कलाम को मोहब्बत के उसी अटूट हौसले को लफ्ज़ दिए हैं। वो महबूब की बेरुखी के जवाब में एक साफ गवाही देते हैं कि तुम आज भले ही मुझे अपने नज़रों से उछल कर दो, मगर मेरी इस पाकीज़ा चाहत को का जो नक्श तुम्हारे दिल पर छुटा है, उसे तुम मरते दम तक नहीं मिटा पाओगे। बुनियादी तौर पर ये गज़ल मेहदी हसन साहब की आवाज़ में साल 1967 में रिकॉर्ड हुई थी और आज हम इसे बिल्कुल नए और जुदा अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। आज इस नफीस तहरीर को अपने रेशमी और मखमली लहजों का पहरहन दिया है मोहतरमा अनुराधा पौंडवाल जी ने। जी हाँ, अनुराधा पौंडवाल जी ने जब इस गुजरे ज़माने की इस महान विरासत को अपनी ठहरी हुई आवाज़ से नवाजा, तो ये कलाम बिरहा के जज्बात को एक नए सुकून के साथ बयान करने लगा। गज़ल का मिसरा कुछ यूं है। मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बनके कभी बनके आंसू, तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ में ये गज़ल आपकी नज़र।

ए इश्क हमें इतना तो बता, ए इश्क हमें इतना तो बता, अंजाम हमारा क्या होगा। तकदीर बता अब इससे बुरा, अंजाम हमारा क्या होगा। दोस्तों, इस महफिल की आखिरी गजल एक बहुत नायाब चीज है। इस कलाम में मोहब्बत की उस बेबसी और आजमाइश को लिखा गया है, जहाँ सब कुछ लुटा देने के बाद भी इंसान को मंजिल का कोई सिरा नहीं मिलता। वो कहता है, ए इश्क तूने मुझे जिस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, ज़रा मुड़ कर देख कि अब इस तन्हाई से बुरा मेरा और क्या हशर हो सकता है। साल 1977 के उस सुनहरी दौर की इस तारीखी नज़्म को गाया है उर्दू अदब की एक बेहद शालीन और बुलंद शख्सियत ने, यानी मोहतरमा मुन्नी बेगम साहिबा ने, जिनकी पुरसोज भारी और ठहरी हुई आवाज़ में एक मखमली कशिश छुपी हुई है, जो सीधे सुनने वालों के दिल पर एक गहरा असर छोड़ जाती है। गजल का मिसरा कुछ यूं है, नादान चमन में कलियों ने लब खोल दिए हंसने के लिए। गौर फरमाएं दोस्तों, नादान चमन में कलियों ने लब खोल दिए हंसने के लिए। वो पूछ रही हैं शबनम से, वो पूछ रही हैं शबनम से, अंजाम हमारा क्या होगा। फिर ये कि कश्ती ना रही, साहिल की तमन्ना भी ना रही, कश्ती भी ना रही और साहिल की तमन्ना भी ना रही, अब पूछने वालों जाहिर है अंजाम हमारा क्या होगा। तो आइए सुनते हैं अल्फाज से एहसास तक के इस प्रोग्राम की।

दोस्तों, गुजरे हुए ज़माने की यादों से शुरू हुआ अल्फाज और सुरों का ये कारवां अब आज के इस सुरीले सफ़र के आखिरी मोड़ पर आ पहुंचा है। आज जो अजीम गुलुकारों के बेहतरीन कलाम हमने सुने, वो यकीनन आपको पसंद आए होंगे। हकीकत यही है, रेडियो की तरंगे खामोश होने पर भी दिल के किसी कोने में ये अल्फाज और सुर गूंजते रहेंगे। किसी शायर ने महफिल के इसी खामोश असर को क्या खूब बयां किया है। कहते हैं, धुंधली सी एक लकीर मुकद्दर की खींच कर, धुंधली सी एक लकीर मुकद्दर की खींच कर, कुछ लफ्ज हवाओं में सुलगते ही रह गए। इसी खूबसूरत और मखमली असर को अपने दिलों में महफूज रखते हुए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त आरती राय को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो 90.8 FM पर SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील। आप सभी कदरदानों को मेरी तरफ से पुरसकून शबा खैर। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

0: दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते हैं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM। रेडियो टांट्याभील 90.8 FM झाबवा की आवाज। खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसान साथियों, रेडियो टांट्याभील 90.8 FM खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगा हुआ है। किसान साथियों, रेडियो टांट्याभील का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह आपको आपके खेती बाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं को आप हम तक पहुंचा सके और हम एक्सपर्ट के माध्यम से आप तक उसकी उसका परामर्श दे सकें और आपके खेतों में नई से नई तकनीकी खेती को हम कैसे कर सकते हैं आदि जानकारियों को आप तक पहुंचा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो हमारा जो पर्यावरण है, दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, तो इस बदलाव को देखते हुए हमें हमारी कृषि पर भी बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा किसान भाई जानता है हमारी जो कृषि है वो पूर्णतः हमारे पर्यावरण पर निर्भर है। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा बना रहेगा, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, तो हमारी खेती, हमारा जल, हमारी वायु आदि के ऊपर, हमारी फसलों पर इन्हीं सभी का प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पहले का किसान था वो प्राकृतिक खेती करता था और वह सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती करता था, परंतु हमारे आज के किसान जो हैं वो व्यावसायिक खेती करते हैं और व्यावसायिक खेती में अधिक से अधिक उपज लेने के उद्देश्य से हम काफ़ी रसायनिकों का प्रयोग करते हैं जो कि हमारे वातावरण में, हमारी मृदा के लिए और हमारे जल स्रोतों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। साथ ही किसान साथियों, अगर हम देखें तो आज हमारी जो फसलें हैं उनमें काफ़ी रसायनों की मात्रा मिलती है, जो कि हमारे मानव जाति के लिए, सबके लिए एक हानिकारक साबित हो रहा है। साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो जैविक खेती है, इसके माध्यम से भी बहुत ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है, बहुत ही अच्छी कृषि की जा सकती है। तो किसान साथियों, अगर हम अपना रुख पुनः प्राकृतिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारी उपज उतनी ही मिलेगी और उससे ज़्यादा मिलेगी, और हमारी जो उपज है उसमें हमें एक नवीनता देखने को मिलेगी, जो हमें भरण पोषण है हमें पूर्णतः मिलेगा। साथ ही हमें जो हमारा वातावरण से मिला हुआ प्राकृतिक और प्योर चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। तो किसान साथियों, यहाँ पर ज़रूरी है हमें प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करने की। तो किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्राकृतिक खेती के माध्यम से अधिक उपज ले सकते हैं और हम परिवार का भरण पोषण के साथ ही साथ हम व्यवसायिक कृषि भी कर सकते हैं। तो जानेंगे आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम में। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, રોજ સાંજે 6-8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM।
4: कार्यक्रम में खास तौर से हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती की। किस तरीके से हमने जाना, कोरोना कालखंड की अगर बात की जाए, हमें बैक टू बेसिक्स आना पड़ा, यानी फिर से जो चीजें हम करते थे पहले, और खास तौर से जब कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं तो जो पुरानी पद्धतियां थी उस पर आने की आवश्यकता है। और उसी के लिए हम मान सकते हैं जो प्राकृतिक खेती है उसको लगातार सरकार अपने स्तर पर बढ़ावा दे रही है, और न जाने कितने ही किसान हैं जो लगातार इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती जो है वो कर पाए, और इसके साथ साथ जो हमारी कृषि क्षेत्र है, जो खेती है, उसको रसायन मुक्त भी कर सकें। एक मुहिम है किसान की जो लगातार वो चला रहे हैं अपने स्तर पर, लेकिन कैसे जो प्राकृतिक खेती है और अधिक मुनाफा दे सकेगी, इस पर आज हम कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे।
5: न सिर्फ फसलों में जहर घुल रहा है बल्कि मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है। खराब सेहत की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी लगातार घटती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रही है। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किए जाने की बात कही है। पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। ये जमीन किसानों की ही होगी। प्राकृतिक खेती में खाद और कीटनाशक घर पर मौजूद प्राकृतिक सामग्री से बन जाते हैं। दो तरह के खाद होते हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। ये मुख्य रूप से गाय आधारित खेती है और एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती हो जाती है। चूंकि इसमें लगने वाली सामग्री घर पर प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे जीरो बजट खेती भी कहते हैं। ये खेती मूल रूप से मिट्टी की भौतिक संरचना सुधार कर इसे सेहतमंद बनाती है। बजट में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। इसके लिए राज्य सरकारों की मदद ली जाएगी।
6: देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
4: किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, और ना सिर्फ कोशिशें, और खासतौर से डॉक्टर गंगनेश, अगर देखा जाए तो आज के समय की मांग हम मान सकते हैं, अभी का जो स्थिति है कृषि क्षेत्र की उसको देखते हुए हम मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है।
7: जी बिल्कुल, प्राकृतिक खेती एक बहुत अच्छा विकल्प है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राकृतिक खेती जो है, जो नेचुरल फार्मिंग जिसको हम कहते हैं, कि वर्षों से हमारे भारतवर्ष में तो जो ट्रेडिशनल है, जितना भी जब हमारे ऋषि मुनियों से अगर शुरू करें, हम हमारे वैदिक भी लिटरेचर को अगर देखें जी, तो वहां पर भी कृषि के ऊपर और नेचुरल फार्मिंग का बहुत ज्यादा उसमें इवन शोध किए गए हैं उस टाइम में जी, और उन्हीं चीजों को आज अपनाया जाता है। और उस टाइम क्या होता था कि कोई केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब सिंथेटिक कोई भी चीजें नहीं थी, तो उसके आधार पर ही जो खेती की जाती थी। और नेचुरल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जंगल जो फॉरेस्ट है हमारे, कैसे फल फूल रहे हैं, अपने आप ही वहां पर फल होते हैं, अपने आप ही वहां पेड़ उगते हैं, तो यही एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल फार्मिंग का भी, कि वहां पर कौन जाकर कल्टीवेशन करता है, वहां कौन जाके इनपुट्स देता है, वहां कौन जाके केमिकल फर्टिलाइजर देता है। अगर आप जंगल में देखें और नेचर को देखें नेचुरल तरीके से, तो वहां पर माइक्रोब्स हैं जंगल में, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर है, रिसाइकलिंग हो रहा है लीफ का, वही वहां पर वर्षा भी हो रही है अपने आप में, जो क्लाइमेट चेंज की बात है वो भी अपने आप में नियंत्रण रहता है वहां पर, और इसी के साथ में सबको फल फूल भी मिलते हैं, प्रकृति अपने आप में फलती फूलती है, तो यही नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है और यही नेचुरल फार्मिंग का आधार है।
4: जी बिल्कुल, तो देखिए आधार जो है वो अगर मजबूत होगा तो और ज्यादा मजबूती इस क्षेत्र में हमें मिल सकेगी। भारतभूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से जैविक खेती से भी जुड़े रहे हैं और ना जाने कितने ही किसानों को इस दिशा में आगे भी आपने बढ़ाया है, लेकिन आपको कैसे लगता है कितनी आवश्यकता कि ना सिर्फ जैविक खेती बल्कि प्राकृतिक खेती की तरफ भी जो किसान है उसका रुझान होना चाहिए। ये नहीं कि पूरे खेत में प्राकृतिक खेती करें लेकिन एक छोटे से हिस्से से ही, जैसे शायद पहले जैविक खेती की शुरुआत हम करते थे।
8: जी नमस्कार, मैं आदरणीय गगनेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए इस संदर्भ में कुछ बात रखना चाहूंगा। मुद्दा यह है कि जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक साफ तौर से बात सामने आती है कि प्राकृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाना इसके लिए एक अनिवार्य वस्तु बन जाती है। प्रकृति अपने आप में कैसे काम करती है, प्रकृति में नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक किस प्रकार से व्यवस्था बनी हुई है, मौसम बदलते हैं, फसलें पैदा होती हैं और वहां पर खरपतवार और रोगों का नियंत्रण रहा, इसकी प्रेरणा हमको अपने पूर्वजों से बराबर मिलती रही। लेकिन आज का सवाल एक ज्वलंत सवाल है कि आज़ादी के बाद जो चुनौतियां हमारे सामने थी वो भुखमरी थी और भुखमरी के कारण हम लोगों ने बहुत जो प्रयास किया इसमें अनुसंधान शोध शिक्षा नीतिगत सभी विषयों के लोग इसमें लगे, किसानों ने भी मेहनत की और एक मुकाम पर हम लोग पहुंचे और राष्ट्र एक अस्तित्व को लेकर आगे खड़ा हुआ। लेकिन जो सवाल आपका है वो बड़ा वाजिब सवाल ये है कि क्या केवल नाम भर बदलने से काम होगा या नाम के पीछे जो कंटेंट है और जो कैरिकुलम है उसको कैसे हम किसानों तक पहुंचाएंगे
9: जी।
8: और जो किसान आज तक अभी तक भी अपनी खेती में केवल उत्पादक बनकर रह गया है और खेती के बाजारीकरण के प्रभाव में उसकी सारी इकोनॉमी कर्जे में बदल गई है, ऐसी स्थिति में राष्ट्र ने प्राकृतिक खेती को किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए जो आह्वान किया है इसके लिए हम राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ हैं और उन सभी मनुष्यों को भी साधुवाद करते हैं कि जो इस दिशा में विजन और मिशन के साथ में इसके बारे में पूरा सोचेंगे
9: जी।
8: मेरा एक छोटा सा निवेदन इसके साथ और भी है, चर्चा तो आगे करते ही रहेंगे। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि आधुनिक खेती में इनपुट बेस्ड प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जो कदम बढ़ाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनपुट बेस्ड जो हम बात का अभी तक कर रहे हैं उसको हम प्रोडक्शन बेस्ड यदि लेंगे और प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग सर्टिफिकेशन ब्रांडिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग तक आगे जाने के लिए जो हमने क्लस्टर अप्रोच में फार्मर प्रोडक्शन जो एफपीओ का जो विकल्प खोला है पूरे देश में
9: जी।
8: ये एक बहुत बड़ा विकल्प है, सजगता के साथ यदि हम कदम बढ़ाते हैं तो अवश्य सफल होंगे और प्राकृतिक खेती आज देश की जरूरत है
7: जी। बिल्कुल एक जरूरत देखिए देश की, और जैसा कि भारतभूषण जी ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं और ये बात हमारे किसानों पर बहुत सटीक बैठती है क्योंकि एक किसान के लिए असंभव कुछ नहीं, पूरे ना सिर्फ साल भर वो मेहनत करते हैं बल्कि उन्हीं की बदौलत आप देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमारी सुनिश्चित हो चुकी है उन्हीं की वजह से ये है, लेकिन यहाँ पर अब जो परिवर्तन है वो आज के समय की मांग है।
10: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा किसान जो है वो बरसों से खेती करता आ रहा है और हमने हमारे पूर्वजों से खेती के तौर तरीके आदि चीजें हमने उन्हीं से सीखी है, लेकिन आज़ादी के बाद जो भुखमरी जो समय की मांग थी उसके हिसाब से हमने अपने रासायनिकों का प्रयोग करके अधिक से अधिक उपज को प्राप्त किया, परंतु अभी समय आ चुका है, अभी हमारा देश सक्षम है तो अभी हमें जरूरत है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख करने की और कैसे प्राकृतिक खेती द्वारा हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमारी मृदा को बचाना है और साथ ही हमें हमारे जल स्रोतों का भी यहाँ पर बचाव करने की आवश्यकता है। तो किसान साथियों आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय और जानते हैं कैसे यह करना संभव हो सकता है।
11: धन्यवाद। ये कार्यक्रम 2016 में शुरू किया हमने और केंद्र सरकार की जो प्रोग्राम्स थे राज्य सरकार की प्रोग्राम्स हैं और ये एक डेडिकेटेड मिशन बनाया ये हर किसान के पास ये कार्यक्रम ले जाने के लिए, और इस साल हम 3730 गांव में हैं, 28% गांव में हैं और लगभग 6,50,000 किसान इसमें अभी जुड़े हैं और हमारा लक्ष्य है कि हमारे राष्ट्र के सारे किसान कितने 80% 85% किसान अगले 5-6 साल में ये कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे। और ये प्राकृतिक खेती जो है ये विश्व में हर देश में चल रहा है
9: जी,
11: और इसमें बहुत साइंस है, इसमें ये आप सबको जानना चाहिए कि इसका साइंस जो है ये एडवांस साइंस है और बहुत साइंटिफिक वैलिडेशन हो रहे हैं अलग अलग देशों में, हमारे देश में भी, और इट इज लाइक ट्रेडिशन एंड मॉडर्न साइंस कंबाइंड
4: जी.
11: एंड हमारे मेरा विचार है ये भविष्य का व्यवसाय है क्योंकि इसमें तीन फायदे हैं. एक तो किसान की आमदनी दुगनी तिगुनी जितना भी बढ़ोत होना है हो सकती है इसके द्वारा
4: जी.
11: दूसरा जो कंज्यूमर्स हैं उनका हेल्थ का विषय में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए हमारे आहार में जो रासायनिक विष पदार्थ नहीं होना चाहिए ये सब ये प्राकृतिक खेती से होता है. लेकिन तीसरा विषय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है
4: जी.
11: क्योंकि संतुलन अभी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस माने बाढ़ आने से भी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए
4: जी.
11: या ड्राउट होने से भी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए. तो प्राकृतिक खेती से ये जो अभी संतुलन नहीं है बिगड़ गया है
4: जी.
11: हमारे देश में हर साल हम वी आर लूजिंग सॉयल ऑर्गेनिक मैटर खो रहे हैं. तो प्राकृतिक खेती एक ही मार्ग है जिससे हम सॉयल की जो पूर्व फर्टिलिटी थी
4: जी.
11: उसको लाने के लिए पानी का विनियोग भी कम होता है. तो ये क्योंकि तीनों क्षेत्र में पीपल प्लैनेट जो यू कैन समराइज
4: जी
11: इज सो दिस इज इन माय ओपिनियन द फार्मिंग ऑफ द फ्यूचर. ये भविष्य का खेती ऐसे ही होगा
4: जी. भविष्य की खेती के तौर पर विजय जी आप इसको देख रहे हैं और आपके शब्दों में अगर हम सरल शब्दों में कहें तो मान सकते हैं जल जमीन जलवायु जो है जीवन को किस तरीके से सार्थक बना सकती हैं ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती जो है हमारे किसानों को लगातार सीख दे रही है. लेकिन जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं कृषि की पुरानी पद्धति जो प्राचीन पद्धति है और आधुनिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं दोनों का समावेश जो है वो हमें प्राकृतिक खेती में नजर आता है. इस बारे में डॉक्टर गंगनेश आपकी राय हम जानना चाहेंगे किस तरीके से ये जो जानकारी है ये किसान तक भी पहुंचे कि ना सिर्फ प्राचीन पद्धति बल्कि इसके साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है वो भी है इसमें जुड़ा हुआ.
7: बिल्कुल जैसा कि आदरणीय विजय कुमार जी ने और आदरणीय हमारे भारत भूषण त्यागी जी उन्होंने कहा कि इसमें हमें साइंस का भी बहुत महत्व है और इसमें हमें इनोवेशन की भी जरूरत है. मतलब साइंस का तो है ही है हमें बट इनोवेशन भी हमें लेके आना है इसमें और इनोवेशन इस तरीके से कि एंटरप्रेन्योरशिप भी जिसको हम कहते हैं उद्यमियता वो भी हमें लेके आना है इसमें. तो तब जाकर जो है इसका संतुलन बनेगा और तब जाके हम अच्छी प्रोडक्शन भी ले पाएंगे और अच्छा होगा. और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विज्ञान के अगर हिसाब से देखा जाए तो जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं और नेचुरल फार्मिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं जो एक्टिविटीज नेचुरल फार्मिंग में अडॉप्ट की जाती हैं जैसे उसमें हमें ऑन फार्म मतलब हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है फार्म पे ही सब कुछ तैयार करना है जैसे जीवामृत है बीजामृत है घन जीवामृत है आच्छादन है या वास है. तो इसको हम आच्छादन वास्पा को यही कहते हैं कि मल्चिंग जो की जाए और मल्चिंग के साथ में क्या होता है साइंस ये है कि जब हम स्ट्रॉ मटेरियल जो हमारा पड़ा हुआ है खेत के ऊपर ही पत्ते हैं सूखे हैं हरे पत्ते हैं उसकी कंपोस्ट बनाई जाए और उसको मल्च के तौर पर भी हम यूज करें. तो मल्चिंग से क्या होगा जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि साइंस की बात यहां पर क्या है कि जब मल्चिंग की जाती है तो वहां पर एक तो वाटर कंजर्वेशन नेचुरल हो जाता है और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता भी सस्टेनेबल धीरे धीरे होने लगती है. माइक्रोब्स भी जो जीवाणु हैं अच्छे जो मृदा में वो पनपने लगते हैं और जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स हैं जितने भी तत्व हैं जो हमें चाहिए अच्छी प्रोडक्शन के लिए और अच्छी क्वालिटी के लिए वो भी बनना शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ साइंस की बात होती है इसके साथ
4: उनकी पूर्ति हो जाती है.
7: और इसके साथ ही साथ जो जैसे वास्पा की बात करें तो वास्पा में हम ये कहते हैं जैसे मान लीजिए कहीं प्लांटेशन है नेचुरल फार्मिंग हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए कॉफी प्लांटेशन है टी प्लांटेशन है तो उसके साथ साथ हम लौंग लगाएं साथ में तो उसको जो बड़ा पेड़ है वो छाया दे रहा है तो अच्छा दान और उसकी क्रॉप की जो प्लांटेशन जो लेयरिंग है वो इस तरह से हो कि वो आपस में एक दूसरे को छाया भी प्रदान कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी हो रहा है पत्ते भी मिल रहे हैं और नेचर का जो नेचुरल कंजर्वेशन जो नेचुरल लॉज है नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं साइंस के आधार पर भी ये सारी भी अपने आप ही सेट हो रही हैं और अपने आप ही स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं.
4: तमाम तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और आपको अलग से कोई जो लागत है वो इसमें लगानी नहीं पड़ती। भारत भूषण जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक किसान जो है अपने आप में बहुत अनुभवी होता है और किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होता, क्योंकि वो लगातार उन्हीं क्रियाओं को करते हैं जब कृषि की हम बात करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो जब हम इसके पीछे विज्ञान की बात करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम कहे दे के शुरू कर दीजिए।

0: प्राकृति की थी। इसके पीछे का जो विज्ञान है, जिसका भी यहाँ डॉक्टर गगनेश ने भी जिक्र किया, ये क्यों आवश्यक है किसान जो है इस बात को अच्छे ढंग से समझे?
1: देखिए, इसमें एक तो जो ऑन फार्म इनपुट की बात बार बार आती है
0: जी,
1: मैं डॉक्टर विजय कुमार जी भी सुन रहे हैं और मैं सारे देश के सामने इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब भी इनपुट का शब्द आएगा, इनपुट का शब्द माने बाहर से हमें कुछ ना कुछ तैयारी करनी होती है या उसी के साथ जोड़कर हम कुछ तैयारी करें। मैं इसमें और एक ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो एक लंबे समय तक हमने प्रयोग किए, जब हम नेचर के लॉ को देखते हैं तो उसमें एक तो कोएग्जिस्टेंस दिखता है, धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षी एक इंटीग्रेशन में काम करते हैं। दूसरी बात ये देखती है कि सभी डाइवर्सिफिकेशन के साथ काम करते हैं, माने कहीं भी मोनोक्रॉपिंग नहीं है, बल्कि खेत एक फसल अनेक के सिद्धांत पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जितने भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल सिस्टम को बढ़ाने की बात है, जमीन के कार्बन को बढ़ाने की बात है, या पीएच और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आधुनिक खेती के जरिए कुछ खराब हुई उसको ठीक करने की बात है, तो ये ठीक करने वाला मनुष्य नहीं है। प्रकृति के नियम को फॉलो करते ही मिट्टी में अपने आप ही वो सारी की सारी क्रियाएं होने लगती हैं
0: जी।
1: और इससे किसान को केवल ये बताना है कि विविधता में फसल प्रणाली लागू किए जाने के कारण जमीन में पानी का संतुलन बनने लगता है, बैक्टीरिया अपने आप डेवलप होने लगते हैं
0: जी।
1: और जमीन की सतह पर भी खरपतवारों का नियंत्रण होने लगता है, अनेक चीजों के उत्पादन मात्रा में भी, गुणवत्ता में और विविधता में भी मिलता है। यहाँ एक और बात दिलाना चाहूंगा कि देश के सामने एक संकट आता है, बार बार सवाल उठते हैं कि प्राकृतिक खेती से कहीं उत्पादन ना कम हो जाए
0: जी।
1: तो जब हम मोनोक्रॉपिंग की बात करते हैं तो उत्पादन कम होने की संभावनाएं बार बार कुछ फसलों में बन जाती हैं। ऐसे में निराशा का विषय जब ही है कि जब हम पूरी विविधता को नहीं समझे, लेकिन यदि अनेक फसलों को साथ साथ लगाकर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो उत्पादन मात्रा में भी बढ़ता है, गुणवत्ता में भी बढ़ता है, इकोलॉजी भी सस्टेन होती है, और एक बड़ी बात होती है कि हमें धरती की सतह पर प्रोडक्शन डेंसिटी बढ़ जाती है, जो धरती की सतह के ताप दाब नमी को संतुलन बनाए रखने के लिए इस समय की बहुत बड़ी जरूरत है
0: जी। यानी जो सारे संशय हैं, देखिए वो कैसे दूर आपके हो सकते हैं, कैसे आप इजाफा जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ आपको सीमित नहीं रहना किसी भी फसल के उत्पादन तक। और खासतौर से विजय जी, अगर बात की जाए, जैसा भारत भूषण जी ने कहा, जो विविधीकरण है वो काफी आवश्यक है आज के समय को अगर देखा जाए।
2: भारत भूषण जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो फसल की वैविध्यता है, डाइवर्सिटी है, उससे एक और बड़ा लाभ है कि जो जमीन के अंदर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, आर्किया, तो इसकी डाइवर्सिटी भी बढ़ती है, और डाइवर्सिटी बढ़ती है, संख्या बढ़ती है, तो जितने भी पौधे हैं उनको सबको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर पौधे को 30, 40, 50 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कुछ बहुत कम मात्रा में जरूरी है, लेकिन ये सब भी जब जमीन में जो माइक्रोब्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बढ़ती है, ये सब पौधों को मिलते हैं, और पौधे जब ट्रेस मिनरल्स लाइक जिंक है, सेलेनियम है, बोरॉन है
0: जी,
2: ये सब पौधों में आ जाता है, फलों में आ जाता है, तो फिर हमारी हेल्थ का भी बहुत बेनिफिट है। तो ये जो फसलों की वैविध्यता है वो एक बहुत बड़ी बात है
0: जी।
2: और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में 50% से भी ज्यादा जो जमीन है वो रेनफेड लैंड्स है
0: जी,
2: वर्षा आधारित है, और अब आप सबको मालूम है कि रेनफॉल पैटर्न में बहुत ही वेरिएशंस आ रहे हैं
0: जी।
2: और हम जो प्राकृतिक खेती आंध्र प्रदेश में हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि रेनफेड लैंड्स में हम तीन फसल ले सकते हैं
0: जी,
2: बिना इरिगेशन के, तो जमीन जो है हम उसको 365 डेज ग्रीन कवर कहते हैं, जमीन को 365 डेज क्रॉप डाइवर्सिटी विविध पौधों के साथ रखने से
0: जी,
2: जमीन के लिए अच्छा और किसान के लिए अच्छा है, और हमारे पशुओं के लिए फॉडर मटेरियल्स, तो इट लाइक ए विन विन विन फॉर एवरीबॉडी, एंड मोर इम्पोर्टेंट, सॉइल का टेम्परेचर कम करके जो ग्लोबल वार्मिंग की जो डेंजर, अभी हम बहुत ही क्लाइमेट इमरजेंसी में है
0: जी,
2: तो विश्व के जो साइंटिस्ट जो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं उनका मानना है ये प्राकृतिक खेती से ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी है उसका सोल्यूशन भी हमारे ये कीपिंग द ग्राउंड कवर्ड विथ लिविंग रूट
0: जी।
2: और एक और बात मैं गणेश जी का जो है थोड़ा एक और एक अंश उसमें लाना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक खेती का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है दैट इज द बेसिस फॉर लाइफ
0: जी।
2: तो जो भी पौधे खाना बनाते हैं पत्तों के पत्ते बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से एक तिहाई 1/3 पोर्शन जो है वो शूट सिस्टम में जाता है लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स लेकिन 2/3 जमीन में है वो रूट्स में है और रूट एक्सुडेट्स में है तो ये खाना देते हैं सूक्ष्म जीवी को। सो प्रकृति ने ऐसा बैलेंस बनाया है कि पौधे जो है जमीन को जो सूक्ष्म जीवी है उनको खाना दे रहे हैं और वापस जो सूक्ष्म जीवी है पौधों को जो चाहिए वो उनको दे रहे हैं। तो जितना हम वैविधता बढ़ाएंगे उतना ही सूक्ष्म जीवियों की संख्या बढ़ेगी उनकी वैविधता बढ़ेगी और साल भर 365 डेज ऑफ द ईयर ये ये फिनोमिनन है वो भी एक एक ग्लोबल ब्रेक थ्रू माना जाता है क्योंकि बिना बारिश के ये फसल आने का एक ही मार्ग है कि हवा में जो वाटर वेपर है
1: बिल्कुल
2: जब हम प्राकृतिक खेती से पौधे उगाते हैं वो पौधे में एक क्षमता है कि हवा में जो पानी है उसको वो ले सकता है।
3: किसान साथियों अभी आप देख रहे थे रासायनिक कृषि से क्या क्या आपदा हमारे पर आ सकती है क्या विपत्ति हमारे पर पड़ सकती है आदि जानकारियों को आप लोग सुन रहे थे। इस जानकारी को हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिली गीत को।
4: आज ये कोहड़े लेकर गए सालियो भाई
5: लाकड़ा वाटवान का हे भाईयो
4: उबर थोड़ी बार मारी बात हमल ले पस जात जे।
5: अरे नहीं नहीं नहीं भैया वाट गए रोटा हमने करनी है बालवानो गरीबी ने मले
4: हो।

0: ખરી સાહેબ, માણસ તો એના ઝાડો નું નહીં વાંચો.
1: હા તો સમજી ગયો, કાલ ઘડેક નાસ લે.
2: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में. अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से बिजली गीत को सुना. इसी के साथ हम आगे की खेती बाड़ी कार्यक्रम की आगे की चर्चा को जारी रखेंगे. कैसे जानेंगे हम कैसे प्राकृतिक खेती हमें मुनाफा देती है. उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है इस प्राकृतिक खेती का राज.
3: कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को बैक टू बेसिक्स के लिए तैयार कर दिया है. इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया ही है, यानी सेहत ही सब कुछ है. और इसकी शुरुआत होगी हमारे खेतों से. जी हाँ, जब हमारे किसान प्राकृतिक खेती करेंगे तो इससे उपजने वाला अनाज, फल और सब्जियाँ ना सिर्फ हमारी और मिट्टी की सेहत को दुरुस्त रखेंगे बल्कि किसानों की आमदनी को भी दोगुना करेगी. आप सोच रहे होंगे कि जैविक खेती तो सुनी थी, लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है, कैसे होती है? दरअसल प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देशी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है. इसमें एक देशी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है. तो जरा सोचिए, जब हमारी एक देसी गाय ही इतने काम की है तो अच्छी खासी संख्या में गायों को पालना हमारे लिए कितने काम का होगा. देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं. साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है. इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है. आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती. साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है. सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है. पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है. प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा का भी खास ध्यान रखा जाता है. जी हाँ, इसमें पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है. ऐसा करने से पौधों को सूरज की रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है. सूरज से ऊर्जा मिलने के कारण पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं. किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं. बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है. देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं. आखिर प्राकृतिक खेती क्यों की जाए? प्राकृतिक खेती में किसान को नगद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं. यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. तो इसका मतलब आपके पैसों की भी बचत होगी. इतना ही नहीं, कम लागत प्राकृतिक खेती से ही जैविक उत्पादन भी किया जा सकता है.
4: इसमें किसानों को पलायन जाने की जरूरत नहीं है.
5: जी,
4: साल भर गांव में ही जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या परिष्कार हो सकती है. और क्योंकि किसान 12 महीने 365 दिन कुछ ना कुछ फसल ले रहा है और गांव की इकोनॉमी बढ़ती है
5: जी.
4: जो भी उस पर आधारित है वो सो रूरल लाइवलीहुड की बढ़ोतरी होती है. सो देर इज इट्स इन माय ओपिनियन, मेरे विचार में ये एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन हो सकता है
5: जी.
4: कि गांव में ये सीजनलिटी ना हो कि एक ही फसल है और दो तिहाई दिन लोग खाली हैं, ऐसा नहीं हो
5: जी.
4: अगर क्राउड पे ये ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, ये रूरल इकोनॉमी को ये पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा।
3: यानी हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो आर्थिकी है देखिए वो किस तरीके से इससे बदल सकती है, और इसके लिए लगातार सरकार अपने स्तर पर भी प्रयास कर रही है। इस बारे में डॉक्टर गगनेश आपसे हम जानना चाहेंगे और किस तरीके से सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्राकृतिक खेती को।
5: जी बिल्कुल, जैसे टी विजय कुमार सर ने जो इतना अच्छा बताया कि साइंस किस तरह से इसमें नेचुरल फार्मिंग में कर रहा है, सारी चीजें कैसे सहयोग करेगा और किस तरह से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, तो इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने बहुत पहले तीन वर्ष पहले जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना की तरह ही उसके सब स्कीम चलाई जिसका नाम है बीपीकेपी या भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो उस स्कीम में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और इस वक्त केरला भी आगे आ रहा है, गुजरात और मध्य प्रदेश इन सब और उड़ीसा में भी, ये सब 7-8 जो हमारे प्रदेश हैं इसमें करीब 4-5 लाख हेक्टेयर एरिया जो है इस भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत इस वक्त कवर किया जा चुका है
3: जी।
5: और इसका जो फोकस है इस स्कीम में इसमें किसानों को क्लस्टर में इकट्ठा आगे किया जाता है और किसानों को जो नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि ऑन फार्म ही, जैसे हमने बात की कि उनको चाहे वहां पर वो बीजामृत जीवामृत बनाना है या और भी कोई बोटेनिकल और भी एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, बायोपेस्टिसाइड्स, नीम आधारित, काउ यूरिन आधारित फार्म के ऊपर जो बनाना है उसके लिए उनको 12,300 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 साल के लिए ये स्कीम चलाई गई और इसमें काफी किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जो फोकस था सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो यही था कि प्रकृति के नियमों के आधार पर और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और ये देखा जाए पायलट बेसिस पर कि क्या इसका जो है रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, काफी सकारात्मक रिजल्ट आ रहे हैं। और यही जो टी विजय कुमार साहब ने जो बात की कि यही जो इन्हीं चीजों के ऊपर, इन्हीं एक्टिविटीज के ऊपर, इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर ट्रेनिंग्स दी गई लोगों को, फार्मर्स को, किसानों को, और उनको ये बताया गया कि इसके लाभ क्या है, किस तरह से इसको किया जाए, गाय आधारित, काउ डंग आधारित, काउ यूरिन आधारित किस तरह से खेती हम कर सकते हैं और जो आउटसाइड इनपुट्स हैं बाहर से हमें कुछ भी चीजें परचेज ना करनी पड़े और आसान जो प्रमाणीकरण का सिस्टम है उसको भी अडॉप्ट किया जाए, जैसे पीजीए सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन है उसको करवाया गया। तो इस तरह से ये स्कीम चलाई जा रही है।
3: जी बिल्कुल डॉक्टर गनी, जैसा आपने कहा, लेकिन ये बात यहाँ पर भारत भूषण जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे किसान के लिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी चुनौतियां उसके सामने आती हैं, बतौर किसान किस तरीके से आप अंतर करते हैं जैविक खेती की हम बात करें और प्राकृतिक खेती की हम बात करते हैं। तो
6: देखिए, लंबे समय से किसानों की आर्थिक कमजोरी का कारण कहीं ना कहीं जो भी रहा उसकी पूरे देश में समीक्षा भी होना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार की बातें अभी आदरणीय टी कुमार जी ने रखी हैं, टी विजय कुमार जी ने
3: जी,
6: मैं उन्हीं में कुछ बिंदुओं को जोड़ना चाहूंगा कि जब हम विजनरी होकर किसी चीज को देखते हैं तो उसमें जो सारी पद्धतियां जो विकसित होती हैं उन सभी को इंटीग्रेट करना जरूरत है ताकि किसानों तक एक ही बार में पूरी सूचना जाए
3: जी।
6: किसानों को एक बार में हम केवल एक चीज बताते हैं और दूसरी बार में फिर दूसरी चीज बताते हैं तो किसानों के लिए मुश्किल होता है। इस समय किसान केवल ये सुनना चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़ने में प्राकृतिक खेती की क्या भूमिका है
3: जी।
6: तो केवल इतना बताना है कि प्राकृतिक खेती में अब तुम्हारा रसायनों का खर्चा तो कम होगा ही होगा, साथ में आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण के साथ प्रसंस्करण और प्रसंस्करण के साथ ब्रांडिंग पैकेजिंग करते हुए यदि हम बाजार व्यवस्था तक जाते हैं तो आधुनिक खेती में जो बाजारीकरण के प्रभाव से किसानों की आमदनी बहुत कमजोर हुई
3: जी,
6: उसके प्राकृतिक खेती में बहुत ज्यादा बढ़ने के, बल्कि गुणात्मक रूप से बढ़ने के संभावना उसमें से दिखती है
3: जी।
6: किसान सुनना यह चाहता है कि यदि मैं आज से ही प्राकृतिक खेती करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, तो करने वाले हिस्से में किसान की अभी तक भूमिका रही है। अब हम उसमें थोड़ा सा ये भी जोड़ दें कि करके समझने से अच्छा जो अध्याय था हमारा वो समझकर करने का है
3: जी।
6: अर्थात किसान 3 वर्ष तक यदि किसी योजना में जुड़ते हैं तो उनको उस बीच में इतना अभ्यास जरूर करा दिया जाए ताकि उनको प्राकृतिक खेती का विजन भी क्लियर हो जाए और उनके मिशन में प्राकृतिक खेती एक व्यवसाय के रूप में स्वावलंबी आर्थिक विकास की प्रेरणा के साथ राष्ट्रीय धरोहर बन जाए।
7: जी,
6: भारत को आज इस चीज की जरूरत है,
7: बिल्कुल आवश्यकता हम महसूस करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो हम हमेशा से हम कहते आए अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहां न सिर्फ मजबूती जो चाहिए बल्कि वो मजबूती हर एक किसान तक आनी चाहिए और हर एक किसान के अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ शायद वो अब मजबूती है और हमारी वजह से ही कहीं ना कहीं जो कृषि है इस देश की वो आत्मनिर्भर बनी है। इस बारे में विजय कुमार जी आपकी राय मैं जानना चाहूंगा, जब हम आत्मनिर्भर कृषि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती को अगर उससे जोड़ा जाए या अब आज के समय में हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो आने वाले समय में जैसा आपने कहा था जो भविष्य की खेती है, तो कहीं ना कहीं भविष्य की खेती जब इन सभी घटकों से मिलेगी तो और ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा।
4: बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भारत भूषण जी की बात थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि ये सबसे प्राकृतिक खेती में खास विशेषता ये है कि ये नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर है।
6: बिल्कुल,
4: जितना ज्ञान बढ़ेगा किसान का
7: जी
4: उतना ही इसमें रिजल्ट आएगा, तो इसमें समय लगता है और किसान के पास कौन जाएगा, कौन है किसान, तो ट्रेनिंग के लिए समय बर्बाद नहीं करेगा कहीं दूर जाके, तो हम क्या करते हैं आंध्र प्रदेश में और बाकी राज्यों में भी, हम जो चैंपियन फार्मर है, जो किसान इसमें एक्सपीरियंस्ड है, प्रिंसिपल समझ में आया है, उन्होंने 2-3 साल ऐसा फसल लिया है, उनको हम किसान शिक्षक मानते हैं।
7: देखिए किस तरीके से एक जो किसान है वो ना सिर्फ एक किसान शिक्षक की भूमिका में हो बल्कि जो एक कहीं ना कहीं विश्वास जो है तब और ज्यादा आता है एक किसान का जब दूसरा किसान जो है उनको और ढंग से सारी चीजें समझाते हैं। और डॉक्टर गंगनीश, अगर देखा जाए क्योंकि ना सिर्फ योजना अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है बल्कि इसके साथ साथ ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब एक किसान दूसरे किसान को चीजें बताता है तो शायद और बेहतर ढंग से उसका जो परिणाम है हमारे सामने होते हैं।
5: बिल्कुल, जैसे कि हमने पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन जिसको हम कहते हैं ना सहभाग प्रतिभूति प्रणाली, अगर हिंदी में कठिन उसमें कहा जाए तो पीजीए सिस्टम के नाम से इस सर्टिफिकेशन प्रमाणीकरण सिस्टम को जाना जाता है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक में देखा कि उसमें काफी अच्छा जो नॉलेज एक्सचेंज से और किसानों के द्वारा खुद की प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को खुद ही करना, पहले तो नॉलेज को शेयर करना, पहले तो अंडरस्टैंड करना, अवेयरनेस मोबिलाइजेशन किसानों की हमने करवाई, उनको कलेक्टिव में जोड़ना, फिर उनको ट्रेनिंग दिलाना, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ये सारी चीजों को एडॉप्ट किया, करवाया किसानों से, किसानों को ट्रेन भी किया और किसान कुछ हद तक ट्रेन भी हुए हैं
7: जी।
5: और नॉलेज एक्सचेंज, नॉलेज शेयरिंग से एक दूसरे के खेत में क्या हो रहा है, खुद ही उन्होंने एक दूसरे का इंस्पेक्शन भी किया, पीयर अप्रेजल भी किया जिसको हम पीयर इंस्पेक्शन कहते हैं, पीयर अप्रेजल कहते हैं, उसके आधार पर एक दूसरे की खेती को मोहर भी लगाना कि हाँ हम एक दूसरे का प्राकृतिक कर रहे हैं खेती में, कुछ भी हम सिंथेटिक केमिकल्स पेस्टिसाइड्स बाहर से नहीं डाल रहे हैं, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो चाहे वो जैविक खेती हो, दोनों के लिए ही प्रमाणीकरण की अगर बात करें तो प्रमाणीकरण का हमारा जो ये एक्सपीरियंस रहा है तो उसमें ये कहा जा सकता है कि नॉलेज एक्सचेंज जो है किसानों को बहुत ही जरूरत है और नॉलेज एक्सचेंज से किसानों ने अपने आप को एम्पावर किया है
7: जी।
5: और अपने आप को उन्होंने प्रमाणीकरण में भी बहुत से सर्टिफिकेशन में काफी आगे आए हैं और इस वक्त हमारे आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लाख किसान जुड़ चुके हैं इस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन से।
7: ये भी एक अच्छा खासा आंकड़ा है किसानों का जिसके जरिए देखिए लगातार हम बात करते हैं कि कैसे कृषि क्षेत्र के जब विकास और विस्तार की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये आंकड़े बल्कि जो परिणाम हमारे सामने हैं वो अपने आप में सारी बात को बतला ही देते हैं। भारत भूषण जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक किसान के लिए जाहिर तौर पर चुनौतियां जो हैं वो होती ही हैं, प्राकृतिक खेती में आपको क्या लगता है, तो जैसा आपने बताया कि जो तकनीकी ज्ञान है या सारी जानकारी किसान को होनी चाहिए, लेकिन और किस तरह की चुनौतियां आपको लगती हैं जो प्राकृतिक खेती में एक किसान के सामने आती हैं?
6: देखिए, एक तो किसानों के स्तर पर सामाजिकता टूटी है
7: जी,
6: और अकेले अकेले भागने का जो कार्यक्रम रहा पिछले आधुनिक खेती में, उससे किसानों में जो आपस में बातचीत करने के तरीके थे उनमें कमजोरी आई है
7: जी।
6: लेकिन प्राकृतिक खेती एक ऐसा विषय है जहाँ किसान जब अपनी आमदनी के साथ साथ ये भी सोचता है कि यदि हम मिलकर काम करते हैं तो हमारे खर्चे भी कम होते हैं और हमारे सामान की जो बिक्री है वह भी स्थायी हो जाती है,
7: मतलब
6: उसके भी अवसर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गगनेश जी ने जो अभी बात कही थी कि जब पोर्टल पर हम देखते हैं कि बहुत सारे किसानों के बारे में पीयर एप्रीजल की बात या उनके इंस्पेक्शन की बात, तो जो अब तक थर्ड पार्टी करती रही उसमें किसानों को जब अपनी जिम्मेदारी मिली कि हम भी एक सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हम अपनी चीजों का वेरिफिकेशन खुद कर सकते हैं, हम इनको लिख सकते हैं, हम आपस में एक दूसरे खेत का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो इससे ही देखने में आया कि यदि प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय मानकों के सही आंकड़े के साथ चलाया जाए तो किसानों में सामाजिकता का भी विकास होगा और जो छोटे किसान अपने को कमजोर मानते हैं कि आधा एकड़ है, एक एकड़ है, लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं, तो उनको भी ये पता लगता है कि खेत में उत्पादन करने के लिए हमको केवल बाहर से चीजें नहीं लानी थी बल्कि खेत में ही बहुत सारी चीजें हैं और उन फसलों पर जैसे सब्जियों की खेती है और फलदार पौधों की खेती है, जड़ी बूटियों की खेती है, उनको अपनाए जाने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है बल्कि कई बार क्लाइमेट के परिवर्तन और जंगली जानवरों के जो प्रकोप किसानों के खेतों में हो रहे थे उनसे भी किसानों को निजात मिल रही है।
7: जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही की जा रही है कि कैसे आपकी लागत कम होगी और आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। जैसा कि यहाँ डॉक्टर गगनेश, आपने विकास सहभागिता जो है वो काफी जरूरी हो जाती है। विजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से जो किसान है वो उनका रुझान नजर आता है प्राकृतिक खेती की तरफ, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक साल करीब तो हमारे जो किसान है वो करते हैं और थोड़ा सा उत्पादन उन्हें कम लगता है, वो विश्वास उनको दिलाना कि अभी आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा है, क्या कुछ चुनौती आपको नजर आती है इस तरफ?
4: मैं भरतभूषण जी का और विघ्नेश जी का थोड़ा बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमने देखा है जो पहला साल है वो बहुत मुश्किल साल है
7: जी,
4: तो क्योंकि जो गांव में 10 लोग हैं तो एक ही किसान एक काम करता है शुरू में, हमारा अनुभव है 5-10% किसान ही इसको पहले साल अपनाते हैं और ये फर्स्ट ईयर में अगर सही तकनीकी जानकारी नहीं मिली तो फिर वो पूरा स्कीम फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम हर गांव में जो किसान 3-5 साल का अनुभव है वो किसान वहां पर शिक्षित है और वही उसी गांव में रहता है
7: जी।
4: ये नहीं कि किसान कहीं ट्रेनिंग पर चले गए, नहीं, शिक्षक उनके गांव में है। और दूसरी बात यह है कि महिला संगठनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि आप सबको मालूम है कि खेती में, कृषि में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो रोल है, इट इज मोर देन मेंस रोल, 60-70-80% है। तो जो हमारे महिला संगठन है ये हर हफ्ता, हर 15 दिन ये प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा करते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, तो उनसे उनको स्फूर्ति मिलती है। अगर कहीं पर कोई किसी किसान ने ठीक नहीं किया उनको सलाह मिलता है ये, तो मेरे ख्याल में ये हमारे देश का एक स्ट्रेंथ है कि देश में लगभग 8 करोड़ महिलाएं ग्रामीण प्रांत में संगठन में हैं, जुड़े हुए हैं
7: जी।
4: तो पूरे देश में प्राकृतिक खेती जल्दी ले जाने का बहुत बड़ा पॉजिटिव फाउंडेशन है, क्योंकि हमारा जो आंध्र प्रदेश में जो भी हमने किया है लगभग 15 लाख महिला जो हमारे संगठन में है, क्योंकि आपको ये भी है कि हमारे कार्यक्रम में जो बिना जमीन के किसान मजदूर हैं
7: जी,
4: तो उनके परिवारों के साथ भी हम काम करते हैं, क्योंकि उनको ये किचन गार्डन्स, होमस्टेड गार्डन्स, तो 2 सेंट है, 3 सेंट है, जितना भी कम जमीन है उनको घर के लिए जो भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्राकृतिक पद्धति से जो पैदा किए हैं, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सामूहिक काम
7: जी
4: बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो नॉलेज डिसेमिनेशन है, फार्मर ही, किसान ही इसको दूसरे किसान के पास ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर हमेशा चर्चा होना चाहिए गांव में, अलग अलग इनोवेशंस की खोज होती है गांव में ही
7: जी।
4: और ये किसान ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है
7: जी, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही है
2: जी। हाँ किसान साथियों, विचारों के आदान प्रदान के इस प्रक्रिया में हमारा जो किसान है वह अपने खुद की जो एक नई सीख है वो बाकी किसानों के साथ साझा करता है, वो बाकी किसानों को भी अपनी सीख को सिखाता है, उससे बाकी किसान भी अपने अपने खेतों में जो उन्हें सीख मिलती है यह उन्हें बाकी लोगों को तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं बहुत ही फायदा मिलता है। साथ ही हम एक्सपर्ट के माध्यम से भी और कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से भी हमारी जो सीख है उन्हें एक दूसरे किसानों के साथ साझा करने की जो ये प्रक्रिया है ये काफी फायदेमंद हो सकती है। और यहाँ पर किसान हमारे पूर्वज भी यह करता आया है और हमें इसे जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें हमारे हमारे जो पड़ोसी किसान हैं उनके खेतों में हम जो विजिट करते हैं उनसे भी उनके खेतों की उनकी फसलों से हमें जो सीख मिलती है उन्हें हमें दूसरे किसानों तक पहुंचाना है और हमें हमारी जो प्राकृतिक खेती है उसको भी बढ़ावा देते हुए उसे हम आगे ले जाना है। साथ ही जानेंगे कुछ और प्राकृतिक खेती से जुड़ी जैविक खेती से जुड़ी कुछ और

0: हमें कौन से प्रकार का बीज चयन करना पड़ेगा, हमारा सामान कहाँ पर बिकेगा और उस बिकने के लिए हमको क्या परिस्थितियों से गुजरना होगा
1: जी।
0: तो इन सारी बातों के क्रम से यदि उत्तर किसानों के पास जाते हैं तो किसान में कोई संकोच नहीं है कि वो बदलना नहीं चाहता। स्थिति तब होती है कि यदि हम प्रारंभ में केवल उत्पादन भर तक बात करते हैं और फिर बाद में फिर प्रोसेसिंग की और बिक्री की बात करते हैं
1: जी।
0: तो उससे उनके बीच में जो टुकड़े टुकड़े में बात जाती है, तो अभी अभी हमारी योजनाओं में थोड़ा सा मैं डॉक्टर टीवी जयकुमार जी को ये जरूर निवेदन करूंगा, चूंकि आप राष्ट्रीय पॉलिसी पर भी आपकी आपका ध्यान रहता है और आपका सम्मान भी पूरे देश में है, मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा एक मिनट में। मुद्दे ये है कि राष्ट्रीय कार्य नीति, जब नीति का विषय आता है तो जो विजन है वो परिभाषा के साथ भी और योजना का को कितने आयाम है, हमको पर्यावरण को देखना है, स्वास्थ्य को देखना है, कुपोषण को देखना है, इकोनॉमी को देखना है और मेजर तरीके से इस समय जो चुनौती है वो इकोलॉजी भी है, हेल्थ भी है और इकोनॉमी भी है। तो ये एकदम तरीके से इंटीग्रेट अप्रोच में किस तरीके से किसान तक पहुंचेगी, ये हमारे राष्ट्रीय नीति का विषय है
1: जी।
0: दूसरा मैं कहूंगा कि मंडल स्तर पर कम से कम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या किसान जो क्लस्टर में है या महिलाओं के जो समूह हैं उनके साथ बैठकर राज्य सरकारें इस पर नीतिगत चर्चा करें कि राष्ट्रीय कार्य योजना में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए इसकी किस प्रकार की योजना इस क्षेत्र के साथ बनाई जा सकती है, ताकि ब्लॉक स्तर पर कम से कम एक मॉडल के रूप में किसान सहभागिता के साथ खड़े हो जाए।
1: लेकिन मुख्य अगर देखा जाए तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो उसकी आवश्यकता है। विजय जी क्या कहना चाहेंगे इस पर?
2: जो किसान पहली कदम लेता है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि लगभग 50-60 साल से यही सुनता आया है कि अगर रसायन नहीं डालेंगे तो फसल नहीं उगेगा, तो बहुत डाउट्स होते हैं किसानों में। तो पहली बात जो है वो एक आधा एकड़ ही करेगा, तो वो अपने घर के लिए जो खाना है उसी की तरफ एक्सपेरिमेंट करेगा। तो इस खेती का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है लोकल कंजम्पशन जो है और गुड कंजम्पशन गांव स्तर पर। बाजार की बात भी है लेकिन मुझे जो लगता है गांव का जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो बढ़ाने में ये बहुत काम करता है, क्योंकि किसानों को अगर हमारे जो इंटीग्रेटेड प्रपोजल में हर गांव में जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ताकि रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए
1: जी,
2: और जो भी गांव का कंजम्पशन है फर्स्ट चार्ज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक फूड है, ये केवल अपर मिडिल क्लास या ऊंचे दर्जों के लोग की कंज्यूमर्स के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, हर साधारण सिटीजन हमारे देश का वो हकदार है कि उसको न्यूट्रिटिव खाना मिलना चाहिए और सही दाम पर। तो ये दोनों बैलेंस करना है। तो उसमें अगर गांव पे ही सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए, तेल निकालने का, दाल को रोस्ट करके प्रोसेस करने का, राइस मिल, आटा चक्की, ये सब हर गांव में या क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए अगर ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है अगर एस्टेब्लिश करे, युवक हैं गांव में, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जो गांव का उत्पादन है वो कम एट ए वेरी लो कॉस्ट, रीजनेबल कॉस्ट हर परिवार को मिल सकता है। तो मैं, हमारा एफर्ट है हमारे राज्य में कि ये ऐसा महंगा नहीं होना चाहिए कि इट इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमन मैन
1: जी।
2: तो फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारे जो 60-70% जो गांव में रहते हैं और जो मजदूरी पर ही आधारित हैं, उनका न्यूट्रिशन शुड बी आवर फर्स्ट चार्ज।
3: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब ने कि हमें यहाँ पर कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, सबके लिए न्यूट्रिशन फूड ही मिलना चाहिए, हम सब एक समान है और सबके लिए न्यूट्रिशन फूड की सभी को आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें इसको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, इसका विभाजन करने की जरूरत नहीं है। तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम जो हम पुनः प्राकृतिक खेती के ऊपर जो आज का कार्यक्रम था, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे और अपना और

0: मेरे परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया व्हील 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंटिया व्हील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहू वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टंटिया व्हील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। DBT के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
0: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता है खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, कृषि भूमि का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। बदलते इस पर्यावरण के समय में हमें वातावरण के अनुकूल खेती करने की आवश्यकता है। किसान साथियों, आप इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरह दिन प्रतिदिन हमारे पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, साथ ही हमारी कृषि भूमि में भी जो बदलाव देखे जा रहे हैं उनको देखते हुए किसान साथियों, हमें बहुत जरूरी है यहाँ पर हमारे खेतों में, हमारे पर्यावरण में एक बदलाव की जरूरत। जी हाँ किसान साथियों, हमें यहाँ पर हमारी मृदा परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। हमें तभी पता चल पाएगा कि हमारी जो मृदा है वो अभी कितनी स्वस्थ है। हमारी मृदा परीक्षण के साथ ही हमें हमारी भूमि में उर्वरक और पोषक तत्वों की जानकारी मिलती है। तो किसान साथियों, ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए शुरू करते हैं।
6: बिल्कुल मैडम, ये एक्चुअली किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारा स्वास्थ्य होता है ऐसे मिट्टियों का भी स्वास्थ्य होता है। और उनको देखो, हम लोग अपना बोली भाषा में हम बता सकते हैं कि आज हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मिट्टियां हैं जो अपनी वो बता नहीं सकती। लेकिन जो उसमें हमारे किसान भाई दिन प्रतिदिन जो भी हमारी खेती की जो गतिविधियां करते हैं उनसे उनको थोड़ा सा पता लगता है कि हमारी मिट्टियां पहले अच्छी काम कर रही थी, अच्छा उपज हो रही थी, अच्छी फसल हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे यदि आपकी फसलों की बढ़वार में कुछ कमी आती है या उनमें विशेष प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे किसान भाई को ये पता लगता है कि कहीं कहीं उनकी मिट्टियों में कुछ प्रॉब्लम आने लगी है। अब ये इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि मिट्टियां बोल नहीं सकती, तो हमको उनका परीक्षण करके जितने भी हमारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमारे पौधे की बढ़वार के लिए, उनकी गुणवत्ता के लिए आवश्यक हैं, उनकी हमारे जितने भी हमारे जो सरकारें हैं इन्होंने हर जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं की हैं उनमें इनका परीक्षण कराना चाहिए, जिससे मिट्टियों में उनकी क्या स्थिति है, मतलब वो कितने किस लेवल तक पैदावार दे सकती हैं कि नहीं दे सकती, क्योंकि ये उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा और उसमें कोई तरह का विकार यदि उत्पन्न हो गया है उस पर आधारित है। तो हमारे को जैसे मिट्टी परीक्षण इसलिए बहुत जरूरी है, किसान भाइयों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह का हम अभी जो बहुत हाई उपज वाली जो किस्मों का यूज कर रहे हैं, फसलों का यूज कर रहे हैं, और फिर दूसरी बात अभी गुणवत्ता की जो बात आ रही है, तो ये सब चीज हमारी मिट्टियों के स्वास्थ्य पे निर्भर करती है और मिट्टियों का स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मृदा परीक्षण के द्वारा ही जांच किया जा सकता है।
5: बिल्कुल जी हाँ किसान साथियों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मिट्टी कुछ नहीं कहती। जी हाँ किसान साथियों, मिट्टी को पहचानना बहुत जरूरी है। आप और हम में से काफी किसान भाई हैं जो मिट्टी को पहचान सकते हैं, मिट्टी को किस चीज की आवश्यकता है, समय समय पर मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी होती है, इस बात से हमारा किसान भली भांति वाकिफ है। परंतु फिर भी हमें यहाँ पर एक बार पुनः हमारी मृदा का परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: किसान साथियों, जैसा कि आप और हम जानते हैं, हम वातावरण के अनुकूल खेती करते हैं और एक वर्ष में अनुमानित 4 से 5 फसलों की उपज हम लेते हैं। तो किसान साथियों, उपज के अनुसार, हमारी फसल के अनुसार हम हमारे खेतों में अलग अलग कीटनाशकों का, अलग अलग खरपतवार नाशकों का और खादों का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हम जिन अलग अलग फसलों को तो हमारे खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो खेत है, हमारी कृषि भूमि है, वो नहीं बदलती है, वह एक ही होती है। वहाँ पर फसलें हम बदला करते हैं और हम हमारी कृषि भूमि को ना देखते हुए सिर्फ हमारी फसलों को देखकर उनमें कीटनाशकों का, खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों, हमारी कृषि भूमि हमारी फसलों को ही नहीं, हमारी फसलों से जो कीटनाशक, जो रसायन हमारी मृदा के साथ जाके मिलते हैं, क्या हमारी मृदा उसे पचाने में सक्षम है या नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर डालेंगे एक नजर। उससे पहले आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: खेती किसानी सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है। अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा और मिट्टी की सेहत जानने के लिए मिट्टी का परीक्षण जरूरी है। बता दें कि पृथ्वी की ऊपरी भुरभुरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। ये निचली पथरीली सतह से बिल्कुल अलग होती है और इसी में फसल उपजाने की क्षमता भी होती है। मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। इसी तरह मिट्टी का प्रबंधन करके भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके लिए खेतों में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करें। संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करने का असर फसलों की गुणवत्ता और पैदावार पर पड़ता है।
5: किसान साथियों, अभी आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। अभी आइए डालते हैं एक नज़र प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के ऊपर।
4: प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती जमीन के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हीं को खेती में कीटनाशक के रूप में काम में लिया जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में आपके पैसों की भी बचत होती है। लघु और सीमांत किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती वरदान है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं। इसके अलावा अक्सर मौसम की मार भी किसानों को झेलनी पड़ जाती है। ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। बता दें कि किसान प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। बात अगर बीजों की करें तो प्राकृतिक खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा है।
6: बिल्कुल मैडम, जैसे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो किसान भाइयों के साथ आज तक, मतलब इसमें जो गलती करते हैं वो नमूना लेने में करते हैं। अब जैसे हमें किसान भाइयों को ये बताना है कि जैसे आपकी दो तरह की फसल होती है, एक होती है सीजनल जो एक सीजन में खत्म हो जाती है, दूसरी पेरिनियल होती है जो वर्षों तक चलती है। तो इन दोनों का जो सैंपल लेने का तरीका है वो उसकी मिट्टी की गहराई पे अलग अलग होता है। जैसे आप पहले जो भी अपना एरिया है उसको पहले आप तीन चीजें आपकी देखनी होगा, एक मिट्टी का कलर, एक मिट्टी का स्लोप और एक उसका कणाकार, यदि ये तीनों में उसमें समानता है तो किसान भाई एक हेक्टर तक एक सैंपल ले सकते हैं उसमें कोई। और जो सैंपल जब लेना है तो किसान भाई अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो खेत के चारों कॉर्नर से लेंगे और एक मिडिल से लेंगे, तो ये एकदम गलत तरीका है। उनको क्या करना चाहिए, बॉर्डर से 2-2 मीटर जगह छोड़ें और जो भी अपना ट्यूबवेल है या अपना कोई बीच में पेड़ है या कोई कंपोस्ट पिट है या कोई बिल्डिंग है, इन जगहों से भी वो अपना 2-2 मीटर जगह छोड़ने के बाद ही सैंपल एकत्रित करें। सैंपल की जो गहराई है उसकी जो हम बात कर रहे थे, सीजनल में हम 0 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं, मतलब 6 इंच। और जो हमारी बागवानी फसलें हैं या जो मेडिसिनल प्लांट वगैरह जो पेरिनियल चलने वाली क्रॉप है, इनका प्रोफाइल सैंपल लेना होता है जिसमें 1 मीटर तक के गड्ढे बनाए जाते हैं। वो 1 मीटर के गड्ढे के फिर 3 भाग बनाए जाते हैं, जो एक 0 से 30 सेंटीमीटर का, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो आपने 4 गड्ढे बनाए या 5 गड्ढे बनाए, तो ऊपर ऊपर की मिट्टी का जो है 0 से 30 वाला वो एक जगह एकत्रित कर लेना है, मिडिल वाला जो है उसको एक जगह लेना है और बॉटम वाले को एक जगह। तो ऐसे करके जब भी हम बाग वगैरह बागवानी फसलों और ये पेरेनियल जो भी है हमारी जो कई वर्षों तक चलती है ऐसी फसलों का जब सैंपल लेते हैं तो हमारा 3 नमूना बनता है, और जो हमारे जो सीजनल फसलें हैं उनमें 1 नमूना बनता है। फिर इसके साथ आता है कि किसान को भाई थोड़ा सा उसकी बैक हिस्ट्री, मतलब उसका जो अब तक किसान भाई ने क्या क्या खाद डाले, क्या क्या उर्वरक डाले, कौन कौन सी फसल ली, अच्छा पानी का जो है सिंचाई की उपलब्धता है या नहीं है, उपलब्धता है तो उसका क्या सोर्स है, उसमें कोई जैसे पानी का जो क्वालिटी है उसकी गुणवत्ता है वो भी थोड़ा उसको, मतलब आजकल लैब में सब जगह इसकी भी टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है, उसका भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टियों में बहुत सारे ऐसे विकार हैं जैसे लवणीयता है या क्षारीयता है, वो सिंचाई जल के द्वारा ही आती है।
7: ठीक है,
6: तो इन चीजों को जब हम सैंपल एक बार ले लिए और सैंपल में देखो कई बार किसान भाई या तो बहुत कम मिट्टी लेके लैब पहुंचता है या बहुत अधिक लाता है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी जगह से 15 से 16 जगह से लेने के बाद उसको इकट्ठा करके उसमें से 300 से 500 ग्राम ही मिट्टी लैब लेके जाना चाहिए।
7: अच्छा, बिल्कुल। आइए अब आगे
5: किसान साथियों, जैसे कि हम चर्चा में बात कर रहे थे कि किस तरीके से हमारी कृषि भूमि में जो पानी हम सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं वह पानी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आइए जानते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
6: मैडम जैसा आप जानते हैं कि हमारे जैसे पूरे भारत देश की हम बात करें तो हर एरिया की जो हमारा जो पानी का जो सोर्स है, कई जगह नहर हैं, कई जगह तालाब हैं, और ज्यादातर हमारा है जो भूमिगत जल पे हम आधारित हैं, और भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो हर एरिया स्पेसिफिक होती है। अभी जैसे आपका अपना शुष्क एरिया लें जहाँ पे बहुत कम वर्षा वगैरह होता है, उस एरिया में अधिकतर जो हमारा जो भूमिगत जल की जो गुणवत्ता है वो या तो लवणीय है या क्षारीयता है। ये क्या होता है, जब किसान भाई इसको जब सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं तो पानी की जितनी मात्रा आप अधिक यूज करोगे उसके साथ साथ उतना ही साल्ट की मात्रा हमारी मिट्टियों में मिक्स होती जाती है। इससे क्या होता है, पानी तो या तो फसल के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है या वो वातावरण में वापस के रूप में चला जाता है, लेकिन वो साल्ट है जो भी उसमें लवण है वो मिट्टियों में ही रह जाते हैं, और ये लगातार जैसे आप कंटिन्यूस यदि पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें उसकी ईसी मात्रा ज्यादा है या पीएच मान ज्यादा है या उसमें रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, ऐसे उसके कुछ गुणवत्ता के जो उसके कारक हैं, पैरामीटर हैं, उनके आधार पे उसकी गुणवत्ता जो आकी जाती है, यदि गुणवत्ता ठीक नहीं है तो जो आज की अभी मिट्टियां आपकी अच्छी है किसान भाइयों की और ऐसा पानी को जाने या अनजाने में यदि वो उपयोग करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में उनकी मिट्टियों का लवणीयता और क्षारीयता का मान बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा बहुत ही मेजर कारण है जिसके कारण हमारे मिट्टियों का स्वास्थ्य वो हो रहा है। तो मिट्टियों के साथ साथ हमें जल का भी जो गुणवत्ता है उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए।
7: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर मीना, जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के पास होता है उसमें मिट्टी से जुड़ी कौन कौन सी जानकारियां किसानों को मिलती है, यानी कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी जानकारी होती है उसमें?
6: बिल्कुल, जब भी किसान भाइयों को जो सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है उसमें मिट्टियों के जैसे जो नमूने लिए गए हैं उसके आधार पर उसमें जैविक कार्बन की मात्रा, उसमें उसका जैसे पीएच मान क्या है और विद्युत चालकता क्या है, जो हम लवणीयता की बात कर रहे हैं अभी क्षारीय लवणीयता, इसके मानक भी उसमें होते हैं। इसके साथ साथ जो उपलब्ध पोषक तत्व हैं, जो हमारे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, बोरोन है, इन ये सभी जितने भी हमारे जो हमारे क्रॉप के लिए बहुत आवश्यक हैं और हमारी जो भारतीय मृदाओं में इनकी कमी देखी गई है, इनको उसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके आधार पर जब आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड देखेंगे तो किसान भाइयों का क्या टेस्ट वैल्यू के साथ साथ एक रेफरेंस वैल्यू दी होती है, उससे किसान भाई ये अपना पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मिट्टी का कौन सा जो कारक है, कौन सा पैरामीटर है, वो पर्याप्त है या उससे कम है या ज्यादा है। तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जैसे हमारा पीएच और हमारी जो ईसी है, विद्युत चालकता का मान है, इसके आधार पर उनको अपनी मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता का पता लगता है। यदि क्षारीय मृदाएं हैं तो उनमें जैसे हमारे जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करें। दूसरा हमारे जिप्सम, जो आसानी से अपने यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है किसी भी उर्वरक डीलर के यहाँ पे, तो उनका उपयोग करें। दूसरा है लवणीयता, यदि उसमें मिट्टियों में लवणीयता हो गई तो उसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना होता है आपका सिंचाई जल का। सिंचाई जल को सबसे पहले आके, यदि उसमें आपकी लवणीयता की मात्रा अधिक है तो सबसे पहले उस जल को रोकें, उससे कभी भी सिंचाई नहीं करें। और कोशिश करें कि जैसे अभी आज के दिनों में देखो बरसात हो रही है, तो वर्षा का पानी इकट्ठा करें, और जो भूमिगत पानी में देखा वो टेस्ट के बाद पता लगता है कि उसकी किस लेवल की लवणीयता है। यदि कुछ आधारित पर हम उसको मैनेज कर सकते हैं तो दोनों पानियों को मिक्स करके हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो है। और ये जो टोटल हमारे 12 पैरामीटर होते हैं जो उसमें स्वास्थ्य।
5: किसान साथियों, जैसे कि अभी आपने डॉक्टर साहब से सुना, हमें पानी की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी के अंदर अम्लता और क्षारीयता होती है जो कि हम खेतों में डालते तो हैं लेकिन वहां पर पानी जो होता है वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, या आधा कुछ पानी हमारी फसल उसको सोखती है, कुछ मिट्टी सोखती है, लेकिन जो पानी के अंदर की जो अम्लता और क्षारीयता है वह हमारी भूमि में ही रह जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारी कृषि भूमि में नुकसान देखना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, इससे जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, उससे पहले आइए लेते हैं छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम।

0: Raye, roque.
1: Raya, roque.

0: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। तो किसान साथियों, हम चर्चा कर रहे थे हमारे खेतों में जो पानी हम डालते हैं, जो सिंचाई के लिए पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका परीक्षण करवाना, क्योंकि जो पानी जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अम्लता और क्षारीयता की मात्रा होने से यह हमारी मृदा में कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: बिल्कुल, देखो जैसे हमने बताया कि टेस्ट के साथ साथ उसमें उसकी संस्तुतियां भी दिया होता है
2: जी।
1: और हर सॉयल हेल्थ कार्ड में ये मैंडेटरी किया गया है कि जो भी वो किसान भाई जिस एरिया का है उसमें वहां पे जो भी तीन क्रॉपिंग सिस्टम वहां के इम्पोर्टेंट हैं उनकी संस्तुतियां, उर्वरकों की संस्तुतियां उसमें दी होती है।
2: अच्छा।
1: तो इससे ये किसान भाई सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि हम जो उर्वरक जो अनदेखी से किसान भाई, जैसे एक कंपटीशन है किसानों के बीच में कि भाई एक बैग डाला, वो कहता है दो बैग डाला, इसको हम कम कर सकते हैं। और हम मतलब जो हमारी लागत आ रही है किसान भाइयों की उर्वरक के ऊपर, इसको हम बहुत हद तक हम इसका सेव कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है ना, जो आपने जैसे अभी बताया कि अधिक से अधिक जो उर्वरक हम यूज कर रहे हैं तो उससे मिट्टियों के साथ साथ हमारा वातावरण पे भी बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा, देखो एक तो किसान का अपना इनपुट कॉस्ट जो उसका मतलब फर्टिलाइजर पर जितना पैसा खर्च कर रहा है, यदि जैसे बहुत सारी अभी की जो विश्लेषण हुआ है जितना भी नमूना उसमें ये पाया गया है कि हमारा जैसे फास्फोरस की मिट्टियों में बहुत ज्यादा अधिकता हो गई है। तो किसान भाई अपना जो फास्फोरस के उर्वरक हैं, जो जैसे आपका डीएपी है, आपका एसएसपी है, तो इनकी मात्रा में जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड में लैब ने दिखाया है कि भाई आपको कितना यूज करना है तो उतना ही यूज करें। अननेसेसरी आप जितना ज्यादा यूज करोगे उसका कोई बेनिफिट इकोनॉमिकली मतलब उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, साथ के साथ आप वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो एक तो सॉयल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान भाई अपनी जो कॉस्ट जितना लगाते हैं फर्टिलाइजर पे उसको बचा सकते हैं। दूसरा हमारे वातावरण का है कि जिससे हम कम से कम फर्टिलाइजर डालेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और एक हमारी मिट्टियों का जो स्वास्थ्य है, जो लगातार हम जैसे कि हम जितना डेफिशिएंसी होती है, जैसे मान लो आपकी मिट्टियों में चार पोषक तत्वों की आवश्यकता है लेकिन आप दो ही डालते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो दूसरे और पोषक तत्वों का भी जो उसमें से निकास हो रहा है वो बहुत अधिक हो रहा है, धीरे धीरे वो मिट्टियां कमजोर होती जा रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे अभी किसान भाई ज्यादातर हमारा है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे आधारित हैं, लेकिन मिट्टियों का विश्लेषण ये बताता है कि उनमें सल्फर की भी कमी है, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट में जाओ तो आप जैसे आपका जिंक है, आयरन है, इवन बोरोन की बहुत ही अधिकता में अभी कमी पाई जाती है। तो जब तक किसान भाई जो हमारे मिट्टियों में जिस पोषक तत्व की कमी है उसको पूरा नहीं करेंगे तब तक उनको लाभदायक उनकी उपज और उनको उतना फायदा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा ये है कि उनको मिट्टियों जो उर्वरकों पर लागत है उसको भी घटा रहा है, मिट्टियों का स्वास्थ्य भी बन रहा है, वातावरण का स्वास्थ्य बन रहा है और साथ ही साथ उनको उनकी जो उपज है वो उसमें काफी मुजाफा उसमें हो रहा है।
2: डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे कि ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं ये तो बेहद महत्वपूर्ण होते ही है फसल के लिए, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये फसलों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
1: ये बहुत ही बड़ा और अच्छा सवाल है और किसान भाइयों को इसको देखो एक छोटी सी भाषा में यदि हम समझाएं तो उसको ऐसे मानो जैसे हमारे खाने में नमक, हम कितना नमक खाते हैं लेकिन उसका इम्पोर्टेंस देखिए कि आपका पूरा जो खाने का स्वाद है वो उस पर आधारित है। ऐसे ही हमारे पोषक जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा बहुत कम चाहिए होती है पौधों को, लेकिन यदि उनकी कमी पाई गई तो जो आपके जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, उनकी दक्षता जो हम उपयोगिता बोलते हैं कि हमारी यूज एफिशिएंसी उनकी बहुत कम है, ये प्रभावित होती है। दूसरा जैसे अभी आपने देखो कोविड के केस में अभी हमारे ज्यादातर देखा कि हम सब लोगों ने जिंक की टेबलेट खाई, यदि हमारे देखो जिंक में मिट्टियों में कमियां हैं और उसी के कारण हमारा जो प्रोड्यूस आ रहा है, खाना आ रहा है, उसमें भी उसकी पर्याप्तता नहीं है, तो इस कारण से हम जितना फूड ले रहे हैं उससे हमारी जिंक की रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रही। तो आप देखो ये मतलब उपज के साथ साथ अपना जो अपनी प्रोड्यूस की क्वालिटी है, स्पेशली जो मिनरल कंटेंट है हमारे खाद्य पदार्थों में, तो उनमें भी बेहद जरूरी है। और जो विशेषकर जो हमारे जो हमारी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन बिल्कुल मतलब इसी पे दानों पे आधारित हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनको एक अच्छे गुणवत्ता वाले फूल फोर्टिफाइड जो हम कहें ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करने के लिए ये सभी पोषक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए।
0: किसान साथियों, आइए जानते हैं मृदा कार्ड से हमें क्या फायदा हो सकता है और इसके क्या क्या उपयोग है, आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: हाँ मैडम, अभी जैसे आप देखें तो हमारे भारत सरकार ने इसके जैसे ज्यादातर हमारे किसान भाइयों को मतलब सभी को उनके मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और भारत सरकार की तरफ से कि हर 2 साल में इसको रिपीट करना है और किसान भाइयों को मतलब 2 साल में उनका जो मृदा का स्वास्थ्य है, क्योंकि उनको जो परामर्श की गई है जिसके उर्वरक में और खादों की परामर्श की गई है उनको उपयोग करते हुए 2 साल में क्या बदलाव मिट्टियों में आया है और उसके इसका फिर से हर 2 साल में इसका साइकिल किया गया है। अभी भारत सरकार ने और एक अच्छा जो इसी में इसी योजना के तहत कर रहे हैं कि एक गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं और गांव को अडॉप्ट करके उसका सभी पूरे गांव का हर खेत उससे मतलब मृदा का नमूना लिया जाए, विश्लेषण किया जाए और उनको मतलब एक जैसे किसान भाइयों को क्या होता है ना कि हम लोगों ने सब सॉइल हेल्थ कार्ड दिया लेकिन बहुत किसान भाई इसको लेके घर बैठ गए, तो ये एक ठीक नहीं है किसान भाइयों को कि भाई आपको कोई मतलब भारत सरकार ने इतना मेहनत करने के बाद इतने लेबोरेटरियों ने उनका परीक्षण किया, उनका जो स्वास्थ्य कार्ड बनाया उनको दिया और उसको उपयोग नहीं कर रहे, तो ये एक क्या है ना कि उनको एक लाइव डेमो दिखाने के लिए अभी हर गांव में ये डेमोस्ट्रेशन लग रहे हैं और उनको ये दिखाया जा रहा है कि देखो आप जो अपनी प्रैक्टिस अपनाते हैं, जो फार्मर प्रैक्टिस करता है कि आप कितना खाद डालते हो उसकी लागत इतनी आती है, हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कह रहा है कि भाई इतना आपका उर्वरक डालना चाहिए उससे आपको, अब दोनों का जो कंपेयर आप करो तो आपको उनकी जो लागत है उसमें बहुत फर्क है
2: जी,
1: बहुत आपका फर्टिलाइजर सेविंग है और इससे क्या हो रहा है उनकी उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों में सेम उपज मिल रहा है
2: जी,
1: तो इससे देखते हुए किसान भाइयों को एक समझ में आ रहा है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो कहीं कहीं गलत है, तो ये एक जो भारत सरकार के पहल है कि नहीं अभी हमने ये किया लेकिन जो किसान भाई कुछ किसान भाई 80% लोग अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं लेकिन अभी 20% किसान ऐसे हैं कि वो अभी भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को अपने घर पे रखे हुए हैं और उसके आधार पे उनके जो परामर्श हैं उनको नहीं मान रहे, तो इसी के आधार पे अभी भारत सरकार की ये पहल है कि हमें गांव एडॉप्ट करना चाहिए वहां।
0: जी हाँ किसान साथियों, अगर हमें हमारे पास हमारा मृदा परीक्षण कार्ड पड़ा हुआ है और उसका हमने समय पर उनका हमारी मृदा का हमने टेस्ट भी करवाया हुआ है लेकिन अगर हमने डॉक्टर ने हमें जो सलाह दी है अगर हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं या डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार हम हमारे खेतों में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यह किसी काम का नहीं है। तो किसान साथियों, जो भी हमारे पास जो मृदा परीक्षण कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इनका हमें उपयोग करना चाहिए, समय समय पर हमें परीक्षण करवाते रहना चाहिए और इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टाइम टेबल 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।

0: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं रेडियो टाइंडा भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेती बाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, आवश्यकता की मांग को पूरा करने के लिए हमने हमारे खेतों में अंधाधुंध रसायनों प्रयोगों से अभी खाद्यान्न फसलों की मात्रा तो हमने बढ़ाई है, परंतु रसायनों के इसके अंधाधुंध प्रयोग से अभी हमारी मिट्टी न केवल ठोस बल्कि अनउपजाऊ होते जा रही है। तो किसान साथियों, आइए जानते हैं और चर्चा करेंगे कैसे हम इससे बचा जा सकता है और हमें अभी प्राकृतिक खेती को कैसे करना चाहिए। तो आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
1: प्राकृतिक खेती, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों या यूं कह लीजिए कुदरती सामग्री पर आधारित है। ये खेती का ऐसा तरीका है जो मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, उसे कुदरती तौर पर उपजाऊ बनाता है और फसलों को जलवायु परिवर्तन की मार का सामना करने के काबिल बनाता है। इस तरीके में लागत कम लगती है, पानी की बचत होती है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। सिर्फ एक देसी गाय से 30 एकड़ जमीन के लिए खाद तैयार हो जाती है। इस तरह प्राकृतिक खेती मुख्य रूप से देसी गाय पर आधारित है और जमीन को सेहतमंद बनाने के सिद्धांत पर काम करती है, क्योंकि पौधे अपना सारा पोषण मिट्टी से ही लेते हैं। मिट्टी जितनी ताकतवर होगी, उपज भी उतनी ही ज्यादा और क्वालिटी वाली होगी। दरअसल रसायनों ने न सिर्फ मिट्टी को कमजोर किया है बल्कि फसलों को भी जहरीला बना दिया है। कई बार मानक से ज्यादा कीटनाशक पाए जाने पर विदेशी खरीदार हमारी फसल को खरीदने से मना कर देते हैं। इसका कहीं न कहीं नुकसान कृषि क्षेत्र को उठाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। ये रसायन सिंचाई के पानी के साथ भूमिगत जल में जा मिलते हैं और उसे प्रदूषित कर देते हैं। यही वजह है कि आज प्राकृतिक खेती समय की मांग है और जरूरत भी।
2: प्राकृतिक खेती, जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज करते थे, और उसमें जो है जो नेचर से मिला, जिस पद्धति को, उसके सारे अंग होते थे उसमें। जैसा कि मैं कहूं तो उसमें फसल भी है, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं, औषधीय वर्ग पौधे हैं इत्यादि, ये सारी चीजें एक साथ होती थी, एक समन्वय बनाता था और उन्हीं में एक दूसरे के वो पूरक होते थे। मिट्टी है तो मिट्टी में उसमें केचुए है, केचुआ के साथ साथ उसमें कई सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पौधों को जो है, जो उनकी उर्वरता चाहिए, उनको पोषक तत्व चाहिए, उनकी उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो पत्तियां गिर रही हैं वो नेचुरल मल्च का काम कर रही है, जिससे कि आप जो है उसमें जो नमी बनी रहती है उसको लंबे समय तक बनाए रहती है। और उसमें मिनिमम जो मैं कहूँ, जितना कम से कम सस्य क्रियाएं करें, तो वहां प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है।
1: मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं जो फसलों की अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए जरूरी है। इनमें से अगर एक तत्व की भी कमी हो जाए तो बाकी 15 तत्वों का भी बहुत ज्यादा फायदा फसल को नहीं मिल पाता। देसी गाय के गोबर में ये सभी तत्व मौजूद हैं। गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। दूसरी ओर प्राकृतिक कृषि के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती और इसमें सिंचाई भी पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने की वजह से जड़ों की लंबाई बढ़ जाती है और तनों की मोटाई के साथ साथ पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है।
2: इनमें जो उत्पाद जो पैदा होता है शुरुआती दौर में, तो मैं कहूंगा कि कुछ गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद के वर्ष में जब वहां जब मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तब उत्पादन करीब 15-20-25% तक देखा गया है। इसमें अच्छी बढ़वार मिलती है, उत्पादकता अच्छी मिलती है।
1: प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों की सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसके अलावा खेती की इस विधि में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार भी ज्यादा देते हैं। भारत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत डॉक्टर सुभाष पालेकर ने की, इसलिए इन्हें इस तकनीक का जनक कहा जाता है। इन्होंने नागपुर में कृषि की स्नातक डिग्री हासिल की और कमाल की बात तो ये है कि इनकी पूरी पढ़ाई रासायनिक तरीकों पर ही आधारित थी, लेकिन फिर इनके जीवन में कुछ ऐसे वाकये हुए कि इनकी जिंदगी का पूरा रुख ही बदल गया। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने खेती की एक ऐसी तकनीक इजाद की जो रसायन रहित है और इसका नाम दिया सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1972 में सुभाष पालेकर ने अपने फार्म पर रासायनिक खेती पर ही काम शुरू किया। बरसों तक वो इसी तरह काम करते रहे। प्राकृतिक खेती का विचार वेदों और उपनिषदों से मिला। इन धार्मिक ग्रंथों में मौजूद कुछ सूत्र इन्हें प्राकृतिक खेती की ओर ले गए। इसके बाद इन्होंने वैज्ञानिक शोध शुरू किए। दूसरी ओर वो महात्मा गांधी के अहिंसा वाले सिद्धांत से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यही वजह है कि वो खेती के ऐसे तरीके तलाशने लगे जिनसे मिट्टी में मौजूद जीवों की रक्षा हो सके। ऐसा तभी मुमकिन था जब खेत जहरीले रसायनों से मुक्त हों और मिट्टी की सेहत मजबूत हो। डॉक्टर पालेकर ने खेती करते समय ये भी पाया कि 1972 से 1985 तक तो रासायनिक खेती में पैदावार बढ़ती रही, लेकिन उसके बाद घटनी शुरू हो गई। दूसरी ओर आदिवासियों के साथ काम करते हुए सुभाष पालेकर को पता चला कि जंगलों में पौधों के विकास के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बढ़वार के लिए जरूरी सभी साधन प्रकृति से ही हासिल हो जाते हैं।
3: हमारे विदर्भ के जो आदिवासी क्षेत्र है सातपुड़ा पहाड़ी, उसमें मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था कि जंगल के पर्यावरणीय व्यवस्था का आदिवासियों के जीवन पद्धति पर क्या परिणाम होता है, ये मेरा विषय था। तो मेरा पढ़ाई भी चलती थी और आदिवासियों में मेरा कार्य भी चलता था। तो मुझे हमारे प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में कि भाई भूमि में कुछ भी नहीं होता, अगर आपको फसल के उत्पादन लेना है तो ऊपर से खाद डालना ही पड़ता है। लेकिन जब मैं जंगल में जाता था मेरी प्रोजेक्ट के दौर में संडे को रविवार को, तो वे विशाल का पेट जंगल के घने जंगल के अनगिनत फलों से लदे हुए बिना मानवीय सहायता मुझे बता रहे थे कि भाई देखो यहाँ तो कोई खाद नहीं है, हर साल अनगिनत फल लगते हैं तो खाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: इसके बाद उन्होंने अपने फार्म पर शोध किए और 6 साल की सख्त मेहनत के बाद बिना रसायनों वाली तकनीक तैयार करने में कामयाब हो गए। नाम दिया कम लागत प्राकृतिक खेती। अब वो इसे पूरे भारत में प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार भी उनकी भरपूर मदद कर रही है, यहाँ तक कि उन्हें इसके लिए 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
3: भूमि अन्नपूर्णा है, भूमि माँ है, महासागर है, केवल एक ही है। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं, जो जड़ों को जिस स्थिति में चाहिए उस स्थिति में नहीं होते, पके हुए नहीं होते, वो कच्चे होते हैं। जड़ों को चाहिए पका हुआ। ये पकाने का काम अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। सुभाष पालेकर प्रकृति कृषि में देशी गौ माता के गोबर गोमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, भूमि में डालते हैं, तो जीवाणु का कल्चर ही होता है क्योंकि अनंत कोटि जीवाणु उसमें होते हैं। ये जीवाणु भूमि में जाते हैं, जब पालेकर कृषि में आप जीवाणु घन जीवाणु डालते हैं और वो जो पकाते हैं खाना और जड़ों को उपलब्ध करते।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तरह की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में भी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस उपयोजना में अब तक 4,09,400 हेक्टेयर क्षेत्र कवर हो चुका है और 8 राज्यों के लिए 4,981 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 35 जिलों की 98,670 हेक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए प्रस्तावित किया है। इस पर 19,772 लाख रुपए का खर्च आना है और 51,450 किसानों को फायदा मिलना है। अकेले प्रयागराज जिले में 1,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के अंतर्गत आ गई है, जो यहाँ के 913 किसानों को फायदा पहुँचा रही है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहू बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्राकृतिक खेती किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे किसानों के पास आय के काफी कम साधन होते हैं और खेती में लगने वाली भारी लागत इनकी कमर तोड़ देती है। कई लोगों को लगता है कि प्राकृतिक खेती से शुरुआत में उपज कम रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही साल में आप भरपूर उपज ले सकते हैं।
2: प्राकृतिक खेती द्वारा उगाई गई जो दलहन है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड से जो आती है या नॉर्थ ईस्ट से जो आती है, वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। ये होती इसलिए है क्योंकि उसको नेचुरल तत्व मिल रहे हैं जो उर्वरक और कीटनाशकों से परे रहता है, और यही वजह है कि उसकी खाने में मिठास है, बहुत लोग उसे लाइक करते हैं। और बाजार भाव, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे उत्पाद अगर हम बाजार में, अगर प्रमाणित है, सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और इसे हम अगर बाजार में उतारते हैं तो ये हमें 20-30% तक ज्यादा मुनाफा देती है।
1: खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें घर पर मौजूद कुदरती सामग्री से बन जाती है। इसमें खाद दो तरह से बन सकती है। पहला तरीका ये कि एक देसी गाय का 24 घंटे का गोबर लेना है, जो करीब 10 किलो होगा। 24 घंटे में ही इकट्ठा किया 8-10 लीटर मूत्र, 1.5-2 किलो गुड़, इतनी ही मात्रा में किसी भी दाल का बेसन और पेड़ के नीचे से मुट्ठी भर मिट्टी। इन पांच चीजों को प्लास्टिक के ड्रम में 180 लीटर पानी में लकड़ी के डंडे से सुबह शाम 5-5 मिनट मिलाना है। डंडा क्लॉकवाइज घुमाना है और इस मिश्रण को छायादार जगह पर रख देना है। 4-6 दिन में ये खाद तैयार हो जाएगी, जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इस तरह अगले 30 दिनों में 30 एकड़ खाद आपके पास होगी। ये खाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। दूसरी खाद घन जीवामृत है। इसमें 100 किलो गाय का गोबर सुखाकर बारीक कर लेते हैं, साथ ही 24 घंटे का गोमूत्र, 1.5 किलो गुड़, 1.5 किलो बेसन और एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर छायादार जगह पर ढककर रख देते हैं। यूरिया की तरह ही इस खाद को 6-7

0: वजह से ही पौधे काफी सुदृढ़ होते हैं और हेल्थी होते हैं, उन पे रोग और कीट का प्रभाव बहुत कम पड़ता है।
1: रासायनिक कृषि में संकर बीजों का उत्पादन और जनुक रूपांतरित बीजों का उत्पादन में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का उत्पादन देशी बीजों से ज्यादा मिलता है, हमें मान्य है, हम कबूल करते हैं, हम कबूल करते हैं। लेकिन सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज्यादा मिलता है, हमने सिद्ध कर दिया है, हमें मॉडल खड़े, इसलिए हम देशी बीजों का ही प्रचार करते हैं। नंबर दो, एक देखा गया है कंपेरेटिव स्टडी में, देशी बीजों में पोषण मूल्य, औषधि मूल्य रासायनिक खेती में पैदा हुए संकर बीजों से पौधों से ज्यादा होते हैं, कई गुना ज्यादा होते हैं। इसका मतलब है मानव का पोषण अगर करते हैं तो देशी बीजों से पैदा प्राकृतिक फसलें करती है, रासायनिक फसलें नहीं करती।
2: किसानों को अक्सर मौसम की मार भी झेलनी पड़ जाती है, ऐसे में इन सब चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही निकाला जा सकता है। प्राकृतिक खेती दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो रही है, खास तौर से कर्नाटक के किसान इसे काफी पसंद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में फसलें मौसम की मार और जलवायु में हो रहे बदलाव को भी आसानी से सहन कर लेती है।
0: जो मौसम में बदलाव दिखता है, तो अगर अधिक बारिश हो जाए तो गलना शुरू करेगा, तो वहां फफूंद के अगेंस्ट अगर कोई कार्य कर रहा है तो वहां पर प्राकृतिक खेती में देखा गया है कि उसमें क्षमता रहती है, अवरोधी क्षमता रहती है। इसी तरह टेम्परेचर का भी अगर बढ़ना घटना, अगर मॉइस्चर की भी अगर कमी और घटता है तो इसमें जो है जो पत्तियां गिरी रहती हैं वो मॉइस्चर को रोके रखती हैं। तो इस तरह से अगर ड्राउट सिचुएशन भी आता है तो ये जो नेचुरल फार्मिंग वाले जो किसान होते हैं उनके फसल देखा गया है कि बच जाते हैं। तो ये इसमें एक मैं कहूं कि प्राकृतिक इसमें एक ऊर्जा जो है सभी का समन्वय ही इस खेती को सक्सेसफुल बनाता है।
2: खेती में लगातार बढ़ रही लागत से किसान परेशान हैं। रसायनों ने जिस तरह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर वार किया है उसने लागत को और भी बढ़ा दिया है, ऐसे में प्राकृतिक खेती नई उम्मीदें जगा रही है। बढ़ती लागत और रसायनों से परेशान बहुत से किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। देसी गाय पालन करने वाले किसानों के लिए तो प्राकृतिक खेती और भी आसान है, क्योंकि ये विधि देसी गाय पर आधारित है। गुजरात के मनोज सोलंकी गाय के गोबर से न सिर्फ खाद बनाते हैं बल्कि प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी तैयार कर रहे हैं।
3: प्राकृतिक खेती अब समय की मांग भी है और जरूरत भी। बेहतर स्वास्थ्य और संतुलित पर्यावरण के लिए किसान तेजी से जीरो बजट खेती अपना रहे हैं। ये रासायनिक खेती की तुलना में कम खर्चीली और बेहतर मुनाफा देने में सक्षम है, साथ ही लंबे समय तक मुनाफा देने में सक्षम है। इसकी प्राथमिक जरूरत है पशुपालन, क्योंकि पशु अपशिष्ट के इस्तेमाल से खाद और कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। कच्छ में रामकृष्ण ट्रस्ट के प्रमुख मनोज सोलंकी जी करीब 20 साल से इस तरह की खेती कर रहे हैं। वो मानते हैं कि खेती प्रकृति के द्वारा ही की जाती है, प्रकृति अपने हिसाब से खेती के हर पहलू को नियंत्रित करती है जिसमें बाहर से कुछ शामिल नहीं करना होता है। इस समय सोलंकी जी खेती के साथ पशुपालन, कांकरेज गाय संवर्धन, गोबर से उत्पाद बनाना, जैविक खाद बनाना, जैविक कीटनाशक बनाना जैसे कई अहम काम कर रहे हैं। वो पशुओं को जैविक चारा ही खिलाते हैं, इस तरह से मिलने वाला दूध भी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और गोबर से बनने वाली खाद भी।
4: एक मुख्य बात जो है आज हम विस्मृति में है, वो स्मृति में लाने की जरूरत है कि हमें प्रकृति को अपना प्रकृति ही खेती करती है, हमें उसके साथ भागीदारी करनी है, उसकी मालिकी नहीं करनी है। और हमें खेती में हर व्यवस्था को समझना है जो प्रकृति में जंगल में हो रहा है, कचरे के ढेर के ऊपर जब बीज गिरता है तो उसमें टमाटर मिर्चा लग जाता है, तो कोई नाइट्रोजन तो दिया, फॉस्फरस तो दिया, प्लांट प्रोटेक्शन तो हुआ, तो किसने किया? तो वास्तव में प्रकृति का एक व्यवस्था है जो ये सब मैनेजमेंट चला रही है, और उसकी ऐसी कल्पना नहीं है कि ये कंपनी आएगी, ये दवा का निर्माण होगा, खाद का निर्माण होगा और उस तरीके से

0: ये अपनी खेती मानव अपना अनुपार्जन करेंगे। उसकी कल्पना है कि जहाँ खेत है वही उसका पोषण की व्यवस्था है, वही धरती को समृद्ध बनाने की व्यवस्था है, वही किसान का जो उत्पादन है वो ठीक से हो उसके लिए प्रकृति खुद अच्छी तरीके से एक वेल मैनेजमेंट कर रही है, वो हमें ध्यान में लेना है। उसमें मुख्य भूमिका है ये पशुओं की भी है, मुख्य भूमिका वृक्षों की भी है, मुख्य भूमिका सूक्ष्म जीवों की भी है और पक्षियों की भी है और ऐसे कई प्रकार के जो नहीं देख सकते इनडायरेक्ट फॉर्म में कई जीव है वो ये प्रक्रिया में भागीदार है, ऐसा 20 सालों में मुझे ध्यान में आया है।
1: कृषि वैज्ञानिक भी ये मान चुके हैं कि खेत में रासायनिक खाद के उपयोग से शुरुआत में फसल में अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसके कई दूरगामी दुष्परिणाम भी हैं। इसके प्रयोग से फसल के लिए महत्वपूर्ण चक्र बनाने वाले मित्र कीटों को भी नुकसान होता है। इसीलिए मनोज सोलंकी जी जैविक खाद के साथ जैविक कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं, जिससे खेती के लिए जरूरी प्राकृतिक चक्र में संतुलन बना रहे।
0: के लिए हमें ध्यान इतना ही रखना है कि हमें यहाँ जहर का इस्तेमाल ना करें। कोई भी जहर इस्तेमाल होने से जब हमें दुश्मन को मारने में लगते हैं तो मित्र कीटक भी मरते हैं, तो कई मित्र कीटक की संख्या बड़ी है और नुकसान करने वाले जो कीटक है उसकी संख्या कम है, तो उससे थोड़े के लिए हम बड़ा नुकसान कर रहे हैं वो ना हो, ऐसा मेरा एक अनुभव है। और कृषि के अंदर जो जैसा समझ बढ़ती जाएगी उतना हमारा कृषि सहज और सरल बनती जाती है। जमीन को जैसे हमारी जमीन आज मक्खन जैसी हो गई, हम जमीन नीचे देख सकते हैं कि कई माइक्रो पिन होल कई जीव जीवात है जमीन को कल्टीवेट कर रहे हैं और जमीन को एकदम उम्दा बना के रखी है। जमीन है भौतिक तरीके से, जमीन है बायोलॉजिकल तरीके से और जमीन है वो खनिज द्रव्य की तरीके से मिनरल तरीके से भी समृद्ध होना जरूरी है। और आज मेरी जमीन 10 सालों के बाद तीनों तरीके से समृद्ध दिख रही है और उसका एक प्रमाण भी है कि हमारा जो उत्पादन है वो काफी कुछ इसमें इनपुट डाले बिना अच्छा सा उत्पादन हम आज ले रहे हैं। आप इसका कलर भी मेरे पीछे जो पार्क है उसका कलर देख सकते हैं कि बिना नाइट्रोजन के इसकी ग्रीनरी आप देख सकते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन की अब कोई कमी नहीं है। शुरुआत में हमें ज्यादा डालना पड़ता था, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो भी हमारा जो भी यहाँ गेहूं भी पकाते हैं, यहाँ बाजरा भी पकाते हैं, मक्का भी पकाते हैं, तो उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते उसका अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। तो हमें प्रकृति को समझना है और प्रकृति को समझते हुए हमारी कृषि व्यवस्था में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। ये जो अगर हम काम करते हैं तो किसानी है वो उत्तम किसान, जो उच्च किसानी थी वो उच्च किसानी का जो पद है फिर से प्राप्त हो सकता है। तो पहले मैं आय की जब बात रखता हूं तो बोल सकता हूं कि गाय के गौशाला का चार प्रोडक्ट होता है, एक है दूध है, एक है गोबर, एक है गौमूत्र, एक गौवंश खुद। तो ये चारों जो आय के उपार्जन के स्रोत है उसके अंदर भी हमने काफी काम किया है। उसमें हमने प्रथम दूध जो है तो दूध हम डेयरी में नहीं देते हैं, हमने गाय का दूध की विशेषता लोगों को समझाते हुए हमने सीधा दूध का मार्केटिंग करते हैं। और दूसरा है कि हम जो बचता है कभी कभी ज्यादा कम होता है उसके हिसाब से तो उसमें से हम घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। और ये जो दूध है हम 55 रुपये लीटर बेचते हैं और लोगों को गाय की गुणवत्ता जो दूध का साइंस है उसको समझा के हमने मार्केटिंग खड़ी की है और हमारे घर से ही वो ले जाते हैं।
2: किसान साथियों, यहाँ पर हमें तालमेल बिठाने की बात कही गई है, हमें प्रकृति के साथ, हमारी खेती के साथ और हमें खुद, क्योंकि हम कुछ नहीं करते, हमारी प्रकृति ही इन उपज को तैयार करती है, उसे बनाने का सारा भागीदार उनका है, हम सिर्फ इसमें सहयोगी हैं। तो किसान साथियों, हमें मिट्टी को भी हमें अपना समझ के इसमें कम से कम रासायनिकों का प्रयोग करना चाहिए और समय समय पर इसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याविल 90.8 FM के साथ। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
7: हर घर

0: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है। कई प्रोडक्शन हाउसेज हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। आइए दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आज के कलाकार के एक बिल्कुल नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो टैलेंट हैं वो हैं अनीता मैम। बाकी अनीता मैम खुद बताएंगी तो जरा ज्यादा मजा आएगा। अनीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: नमस्ते समीर जी, मेरा नाम अनीता पई है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। एक बैंक मैनेजर रह चुकी हूँ, रिसेंटली मैंने रिजाइन किया है
0: जी। ओके, तो दोस्तों आपने सुना, अनीता जी बैंक मैनेजर रह चुके हैं और शायद जो भी है अपने वर्क लाइफ बैलेंस को और ज्यादा इंजॉय करने के लिए शायद उन्होंने अभी रिजाइन किया है और अब वो मेरे ख्याल से अपने सिंगिंग के पैशन को परस्यू कर रही हैं। ठीक है ना अनीता जी?
1: सही सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को अनीता जी के ही गाए हुए इस गीत से।

0: बहुत सुंदर शुरुआत अनीता जी। चलिए बचपन में चलते हैं आपके। आप बचपन में जब थे तो बचपन में बड़ी सारी हरकतें हम लोग करते हैं, शैतानियां करते हैं, कभी चोट भी लगती है, कभी खुशी भी होती है। तो अपने बचपन की कोई पसंदीदा प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: समीर जी, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो उस हिसाब से बचपन में जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तब हमारे घर पे सब मेरे चाचा और मम्मी डैडी सब के मतलब रिलेटिव्स जो है वो रहने आते थे, और हम भी कभी कभी उनके घर पे रहने जाते थे गांव में
0: जी।
1: तो जो सब बच्चे मिलकर खेलते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, वो जो बचपन के दिन है वो सबसे यादगार दिन थे।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सबसे यादगार दिन थे। तो उसी उन्हीं यादों में से कोई एक प्यारी सी याद बताइए ना, कोई शैतानी की होगी आपने, कुछ किया होगा।
1: एकदम जब छोटे थे तो मेरे एक चाचा का लड़का है
0: जी,
1: उसका मैंने वो बहुत छोटा था, मैं उससे थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने जो इंक है
0: जी जी जी
1: वो इंक से उसके फेस पे सब पेंट की तरह पेंट किया था। घर पे डांट बाद में मिली
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी जी
1: तभी बचपन था, कुछ समझ में नहीं आता था।
0: जी मैं समझ सकता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरीके की चीजों के बारे में ही तो पूछ रहा था मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अपने बचपन के छोटे छोटे यादों को याद कीजिए, और चलिए सुनिए अनीता जी का ही गाया हुआ ये प्यारा सा गीत।

0: सुंदर गायकी, बहुत प्यारी गायकी। अनीता जी, अब हम बड़े हो गए हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कभी हम कामयाब होते हैं, कभी हम नाकामयाब होते हैं, नाकामयाबियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई नाकामयाबी, कोई असफलता रही जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो?
1: ऐसे ऐसे कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए असफलता जरूरी है,
0: जी,
1: और हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार ऐसे छोटी छोटी बातों में हुआ है। जब भी मैं स्पेशली बोलूंगी, ऑफिस रिलेटेड बोल रही हूँ, तो उसमें कभी अगर हम काम करके भी प्रमोशंस नहीं मिलने में थोड़ी देरी होती है, मतलब वो चलते रहता है, उसका कुछ इश्यू नहीं है वैसा। लेकिन वो ऐसे छोटी छोटी चीजें होती है, मतलब कुछ काम दिया गया है और वो टाइम पे, टाइम बाउंड रहता है सब काम, तो वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते तो थोड़ा सा, थोड़ी सी निराशा होती है
0: जी।
1: लेकिन किसी बाद में मन को अपने ये करके किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस न देके अपने में पॉजिटिविटी रख के आगे बढ़ते जाना है, यही सबसे बड़ी सीख है और सबक है।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने साहब, बड़ी ही सुंदर बात कही कि असफलता से सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स आते रहते हैं और उन्हीं से सीख कर हम आगे बढ़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए दोस्तों, एक और गीत इसी रंग में डूबा हुआ सुनते हैं, अनीता जी का गाया हुआ।

0: अनिता जी, जब हम असफलताओं को पार कर लेते हैं और सफल होते हैं तो हमें एप्रिसिएशन मिलता है, हमारी प्रशंसा की जाती है। और देखिए, आप माने या ना माने, इस दुनिया में प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। तो आपको आज तक की मिली सबसे अच्छी प्रशंसा कौन सी है?
1: सबसे अच्छी प्रशंसा तो मुझे याद नहीं है समीर जी। हाँ, लेकिन प्रशंसा तो मिलती रहती है। मैं तो बैंक में काम कर चुकी हूँ, तो मेरे बैंक के सुपीरियर से मेरे काम के प्रति जो निष्ठा थी, अभी जो भी मैं काम करती थी उसके लिए, और जो बैंक के कस्टमर्स थे उनका मेरी सर्विस जो देती थी उसके लिए, सब प्रशंसा मिलती रही है हमेशा। और म्यूजिक की अगर कहे तो मैं म्यूजिकल ग्रुप्स में गाती हूँ, तो उसमें भी मेरे गाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा मिली है मुझे।
0: बड़ी ही सुंदर बात, बिल्कुल ठीक ठीक कहा मनीता मैम आपने। ये बहुत जरूरी होता है, मोटिवेशन प्रशंसा के रूप
1: मोटिवेशन मिलता है,
0: मोटिवेशन प्रशंसा के रूप में ही हमारे पास आता है। और हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और गीत का मजा लेते हैं अनिता जी की ही आवाज में।

0: अनिता जी, मुझे अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली तीन व्यक्तियों के बारे में बताइए, तीन लोगों के बारे में, थ्री, जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो, आपके जीवन पर प्रभाव डाला हो, तीन ऐसे व्यक्ति आपके जीवन के।
1: मैं ऐसे स्पेसिफिकली मैंने जैसे कहा आपसे कि मैं जॉइंट फैमिली में पली बढ़ी हूँ, तो तीन प्रभावशाली को मैं तीन ग्रुप में करूंगी। सबसे पहले मेरी जॉइंट फैमिली, जिन्होंने मुझे नैतिक मूल्य सिखाए, ईमानदारी से अपना काम कैसे करना है, सबका सम्मान करना और सबके लिए करुणा और सहानुभूति रखना, ये सब जो मूल्य है मुझे मेरे फैमिली से मिले हैं, जो भी है जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे, और मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और दूसरी प्रभावशाली व्यक्ति मेरे जो बचपन से जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो कलीग्स जिनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मिलके जिम्मेदारी से कैसे काम करते हैं, एक टीम बन के कैसे काम करते हैं, ये मुझे सीख मिली है, चाहे अपने से सुपीरियर से हो या अपने से छोटों से हो, सबसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है लाइफ में। और तीसरे प्रभावशाली अगर आप पूछेंगे तो वो है मेरे ससुराल वाले, स्पेशली मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मेरा हर काम मेरे साथ दिया है, हर तरह से उन्होंने मुझे सपोर्ट करके एक सपोर्टिव जीवन साथी होने का फर्ज निभाया है, हर एक इसमें, हर एक फील्ड में, कोई भी हो, चाहे मेरा घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे म्यूजिक के रिलेटेड हो, कुछ भी।
0: बहुत खूब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है आपका। तो चलिए, बहुत खूबसूरत अगला गीत हम उन्हीं को डेडिकेट करते हैं, आप ही की आवाज में।

0: बहुत सुंदर अनीता जी, जिस भी उम्र में आप है, उम्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को अपने आप को फिट और सक्रिय रखना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं डूब जाना चाहिए, और शारीरिक तौर पर भी थोड़ी सी एक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए क्या करती हैं?
1: समीर जी, मेरे लिए फिट रखने का तरीका है प्राणायाम, योगा, और अभी जबकि मैं अभी बैंक में नहीं हूँ तो उसमें 40 to 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक भी रहता है मेरा, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक जो मन को शांति देता है वो तो है ही।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत सारे लोगों की ही तरह से आपका भी तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। योगा हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, बढ़ती हुई उम्र में हमारे जोड़ों को, हमारे शरीर को ताकत देता है, प्राणायाम हमको शांत बनाता है, एक्टिव बनाता है, और ब्रिस्क वॉक ऑफ कोर्स कार्डियक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बिल्कुल सही है दोस्तों, मुझे भी सारा दिन स्टूडियो में कुर्सी पर बैठे बैठे गड़बड़ हो जाती है, मुझे भी थोड़ा सा योगा करना चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो चलिए दोस्तों, एक बिल्कुल फिट और एक्टिव गीत भी सुनते हैं अनीता जी का ही।

0: बहुत खूब। अनीता जी, हमारी दुनिया में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, बहुत अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हमारे चारों तरफ हो रहा है, हम उसका एक पार्ट हैं। ना भी हों तभी भी हम बहुत तेजी से बहती हुई इस डेवलपमेंट की धारा में बह गए हैं, हमें भी लपेट लिया गया है, हम चाहें या ना चाहें। उसी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है इंटरनेट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फर्ज कीजिए इंटरनेट 8 बजे रात से सुबह 8 बजे तक बंद कर दिया जाए हमेशा के लिए, तो आपकी जिंदगी पर क्या असर आएगा?
1: आज की दुनिया में इंटरनेट एक नेसेसिटी हो गई है समीर जी, सबके लिए, चाहे वो आम लोग के लिए हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। इंटरनेट के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और अभी जब कैश कंपोनेंट कम हो गया है, मतलब अभी जो है सब यूपीआई ट्रांजेक्शन्स ये सब जब ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी वजह से इंटरनेट का तो जो जितने नुकसान है उतने फायदे भी है और नुकसान भी है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इंटरनेट बंद होने से फिर से फैमिली के सभी मेंबर्स एक दूसरे के लिए वक्त निकाल सकेंगे
0: जी,
1: अगर इंटरनेट बंद किया जाए तो। और पर्सनल लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव होगा आदमी का। लेकिन अगर कमर्शियल एक्टिविटीज के हिसाब से देखें तो इमरजेंसी सर्विसेज पे फर्क पड़ेगा।
0: मैम, कमर्शियल एक्टिविटीज की ही अगर आप बात करते हैं तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज रात को 8 बजे से पहले भी तो की जा सकती हैं।
1: हाँ, की जा सकती है, लेकिन इसलिए बोला इमरजेंसी में कभी कभी अपने को कुछ ट्रांसफर करना पड़ता है, फंड्स ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो उसमें क्या है, अभी जो इतनी सहूलियत हो गई है तो उस हिसाब से, नहीं तो इट इज परफेक्टली ओके कि 8 to 8 नहीं रहेगा तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी जो आदत हो गई है, अपने आप को मेन क्या है, आदमी ने खुद को ही कंट्रोल करना चाहिए कि जो जरूरी नहीं है वो चीजें यूज करनी नहीं चाहिए। एक बार घर आने के बाद अपने फैमिली को ही वक्त देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
0: आपका मानना बिल्कुल ठीक है अनीता मैम। मैं उसी वजह से तो कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं, पहली बात तो ये, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा विचारक बाबा हूं जो दुनिया को समझाने चलूं, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हम लोगों की अगर आदतें बिगड़ जाए ना तो हम लोगों को डंडा ही चाहिए होता है अपनी आदतें ठीक करने के लिए।
1: हाँ, सच कहा,
0: पिटाई, हमें पिटाई चाहिए होती है। तो अगर हम अभी किसी को भी कहने लगे कि आप 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट यूज ना करो ना, तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन अगर बंद कर देंगे ना तो मजबूरन उनको मानना पड़ेगा।
1: बराबर कहा।
0: तो मैं इसलिए कह रहा हूं मैम कि 8 बजे से 8 बजे तक अगर बंद, मैं आपका विचार जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो
1: तो
0: जाए,
1: मेरे लिए तो परफेक्टली ओके है सर
0: जी,
1: बहुत से लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे
0: दोस्तों
1: इसमें
0: जी। दोस्तों सुनिए, अनीता जी ने जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, और आज की डेट में इंटरनेट का भरपूर इस्तेमाल भी कर रही हैं वो, लेकिन साथ ही साथ वो इस चीज को भी रियलाइज कर रही हैं कि अगर ऐसा हुआ 8 बजे से 8 बजे तक बंद हुआ तो जिंदगी के कई पहलुओं में हमें बड़ा फायदा पहुंचेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनीता जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं आप ही की आवाज में।

0: बहुत सुंदर। फर्ज कीजिए अनिता जी, आपको किसी भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति से, हिस्टोरिकल यानी कि इतिहास में जाइए, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐतिहासिक व्यक्ति से बात करने का मौका मिले, बिल्कुल एक्सक्लूसिव, वो अकेले आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, तो उनसे आपको एक सवाल पूछने की इजाजत दी जाए, एक सवाल पूछिए उनसे। तो पहली बात तो किससे बात करना चाहेंगे और सवाल क्या पूछेंगे आप?
1: मैं आदरणीय श्रीमान रतन टाटा जी, जो एक आदर्श भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति रह चुके हैं, उनसे पूछना चाहती कि कौन से अनुभव ने आपको परोपकार के लिए प्रेरित किया?
0: बहुत खूब, अमेजिंग अमेजिंग अनिता जी, मैं आपकी थॉट प्रोसेस को सीरियसली अप्रिशिएट करता हूं। भारत रत्न रतन टाटा जी से आप बात करना चाहेंगे? रतन टाटा जी से मैं ही नहीं, करीब करीब पूरा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। इतने सरल इंसान, इतने ज्यादा अमीर होते हुए भी इतने सरल, बड़ा मिलना मुश्किल है साहब। मैंने कई जगह पर इस चीज को सुना, मैं कॉरपोरेट में भी रहा, कि टाटा कंपनी को जो भी ज्वाइन करता है वो कभी टाटा कंपनी छोड़ता नहीं है। पैसे कम मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति टाटा कंपनी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही इस तरीके की है कि वो इंसान से, इंसान को इंसान समझते हैं,
1: इंसान को इंसान समझते हैं, बराबर था आपने,
0: वो इंसान को नंबर्स नहीं समझते, वो इंसान को इंसान समझते हैं।
1: सच कहा आपने सर।
0: तो इस वजह से मुझे भी रतन टाटा बहुत ज्यादा पसंद है, और आपने बहुत ही अच्छे कैरेक्टर को, ऐतिहासिक व्यक्ति को चुना, शुभकामनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं अनिता जी की ही आवाज में।

0: अनिता जी, हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज करते हैं। आप बैंक जाया करती थी, बैंक में तमाम काम किया करते थे। हम सुबह 9 बजे पहुंच गए, 10 बजे पहुंच गए, जो भी एक ऑफिस टाइम होता है। या कोई महिला अगर घर पे काम कर रही है तो उसका वक्त जो दिन होता है बड़े जल्दी शुरू हो जाता है, या जो भी है। हर व्यक्ति दिन के कोई ना कोई वक्त में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, प्रफुल्लित होता है, मोटिवेटेड होता है, एक्साइटेड होता है, पावरफुल होता है। वो वक्त आपका कौन सा होता है पूरे दिन में?
1: अगर पूरे दिन में कहो तो सुबह का जो टाइम है
0: जी,
1: वही सर्वश्रेष्ठ काम होता है तभी, क्योंकि तभी जो फिट रखने के लिए अपने आप को हम लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जो भी करते हैं
0: जी,
1: और सुबह उठ के भगवान की पूजा करते हैं, फिर फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, और ऑफिस में जब रहते हैं तो ऑफिस का भी सबसे फ्रूटफुल काम जो है वो सुबह के समय ही होता है, जब हम एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक रहते हैं। इसलिए सुबह का स्पेशली, सुबह मेरे दिन की शुरुआत तो 5:30 बजे होती है सुबह से।
0: बहुत बढ़िया।
1: 5:30 से लेके समझो जब मैं बैंक में थी, अभी रिसेंटली छोड़ा है, तो 2 बजे तक जो मेन रहता है, तो उसमें सब जो डिफिकल्ट काम है वो करके लेते हैं, तो सब काम अच्छे से होते रहता है, आगे बढ़ते रहता है। तो मेरे लिए सुबह का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ काम।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने जाना कि अनीता जी के लिए सुबह का वक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। सबके लिए अपना अपना वक्त होता है, कोई परेशानी नहीं है। 24 घंटे ऊपर वाले ने हमारे अकाउंट में डाले हैं, हम कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनीता जी के लिए सुबह का वक्त बिल्कुल सही है। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और प्यारा सा गीत सुनते हैं अनीता जी की आवाज में।

0: बहुत सुंदर। अनिता जी, आपके सारे दोस्तों को, हमारे सारे दोस्तों को, इस प्लेटफॉर्म के सारे पार्टिसिपेंट्स को कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी समीर जी,
0: थैंक यू,
1: कि इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से मेरी आवाज जो है लोगों तक पहुंच पाई। और सबसे सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने शौक को जिंदा रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए।
0: बड़ा ही प्यारा संदेश दोस्तों, क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत खूब। अनिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर।
2: तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल ही अनप्लग्ड, कोई तैयारी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बातचीत में हम लोगों ने म्यूजिक का, संगीत का, गायकी का तड़का लगा लिया है। मेरे साथ मेरे आज बहुत ही प्यारे मित्र गगनप्रीत जी मौजूद हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा बॉस, गगनप्रीत जी जिनको मेलोडियस मुंडा भी कहा जाता है, हमारे पास पहले भी पधार चुके हैं। उन्होंने हमें मौका दिया था, वी वेर ऑनर्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स, टू लिसन टू हिज म्यूजिक एंड वी एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद बस कुछ व्यस्तता रही, मुलाकात ना हो सकी और गायकी की भी थोड़ा गैप हुआ, लेकिन आज हमें फिर मौका मिला है। तो गगनप्रीत, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। वेलकम टू अवर प्रोग्राम एंड बिलीव मी, दिस इज टोटली अनप्लग्ड। हम लोग मस्त बातें करेंगे, डोंट वरी, कोई नहीं सुन रहा ये समझ के चलना आज मैं कोई सुन ही नहीं रहा, बस आप मुझे गाने सुनाओ यार, काम खत्म हुआ। पहले तो फिर भी मुझे बता दो यार, मैं थोड़ा थोड़ा सा भूल रहा हूं, लेकिन चलो हमारे दोस्त लोग, यार लोग भी सुन रहे हैं, तो उनके लिए बता दो कहां आओ आप।
1: हाय समीर जी, थैंक यू सो मच, इतने समय बाद आपसे आज एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिला। मैं फिलहाल हमेशा की तरह चंडीगढ़ में ही हूँ और आपको बहुत याद करता हूँ। पहले भी आपसे मैंने कई बार कोशिश की आपसे बात करने की, बट कुछ आपकी व्यवस्था जो कुछ आप व्यस्त रहे, कुछ मैं व्यस्त रहा, हमारा दोनों का जो टाइमिंग जो है वो मैच नहीं हो पा रहा था।
0: कोई नहीं, कोई नहीं,
1: आई एम ऑनर्ड कि आज जो है हम दोबारा आमने सामने बैठे हैं और आज हम फिर से बात कर पा रहे हैं। रियली हैप्पी फॉर दिस।
0: मी टू। बड़ी मजेदार बात है यार, मतलब बल्कि मुझे ठीक से याद पड़ता है गगनप्रीत जी, हम लोग ने ना एक म्यूजिकल ट्रीट भी वो किया था, प्लान किया था, जिसमें आपको इंक्लूड किया था और दो लोग और थे, पर समहाउ उसमें भी आप आ नहीं पाए थे, तो हम लोगों को दो ही लोगों के साथ उसे बनाना पड़ गया था।
1: हाँ जी,
0: बट चलो कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, आपके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ही रिजर्व रखा था ऊपर वाले ने, इस वजह से आज फिर से बात हो रही है। अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो गगनप्रीत मुझे ये बताओ कि ये मेलोडियस मुंडा आपको क्यों कहा जाता है?
1: सर, मेलोडियस मुंडा जो नाम है ये मुझे चंडीगढ़ से ही मिला है बेसिकली। okay. मैं पहले भी गाता था म्यूजिक, आपको भी पता है कि मैं म्यूजिक से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल टाइम से ही मैं म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने स्कूल में ही अपने म्यूजिक सीखा, गायकी सीखी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, और उसके बाद फिर मैं जब जॉब्स में रहा तो म्यूजिक से नाता थोड़ा सा टूट गया था, क्योंकि जॉब्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज में व्यस्त हो गया था मैं। चंडीगढ़ आके जब मुझे दोबारा मौका मिला गाने का और जब मैंने गाया तो लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार मिला, मैंने फिर इस अपने जो ये सफर है इसको फिर दोबारा से चंडीगढ़ आने के बाद ही दोबारा शुरू किया। तो पंजाब में जो मुंडा जो एक वर्ड है, ये लड़के को पंजाबी में कहा जाता है मुंडा, तो फिर मुझे जो जो ये प्यार करने वाले हैं श्रोता जो मेरे सारे, तो इन्होंने मुझे मेरा नाम रखा कि आप बड़े मेलोडियस हो, आपकी आवाज बड़ी प्यारी है, तो दे कॉल मी मेलोडियस मुंडा। तो वो दो शब्द जो है मिलके ये मेरा नाम पड़ा मेलोडियस मुंडा, और अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, हर जगह आप कहीं भी, इनफैक्ट गूगल पे भी सर्च करेंगे मेलोडियस मुंडा तो आप सीधे मेरे घर तक भी पहुंच सकते हो।
0: बहुत बढ़िया। सो जाहिर सी बात है, पिछली प्रोग्राम में मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने इस बारे में बात की थी या नहीं की थी, तो इसलिए ये सवाल बस उछल के आ गया।
1: इस बार में हमारी बात नहीं हुई थी।
0: तो दोस्तों इस वजह से गगनप्रीत को मेलोडियस मुंडा कहा जाता है। चलो ज्यादा बातचीत क्या, अभी पहले गीत सुनते हैं, उसके बाद गगनप्रीत जी से और बातचीत करते हैं। अब की बार बिल्कुल अनप्लग्ड। लीजिए पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग एज बिफोर, हमेशा की तरह। तो चलो आगे बढ़ते हैं गगनप्रीत भाई। और मुझे ठीक से याद है कि आपने मुझे बताया था कि आपका जन्म जो हुआ था वो रुद्रपुर में हुआ था, एम आई राइट?
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो आपके रुद्रपुर के ही निवासी थे, फिर उसके बाद आप प्रोफेशन के चक्कर में शिफ्ट हो गए, जो भी है। तो चलो थोड़े से आपकी बचपन के बारे में बात करते हैं। यूं तो मुझे मेरे दोस्तों को सुन के लगेगा कि मैं पूछना चाहूंगा कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, लेकिन उसको जाने दीजिए। मुझे तो ये बताओ, बचपन में सबसे मजेदार शरारत कोई याद है जो आपने की हो?
1: सर ऐसे तो बहुत सारी यादें हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पर कई ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में हमेशा हमारे साथ जुड़ी रह जाती है, हम कभी भी भूल नहीं पाते उन बातों को। तो ऐसे कई सारे किस्से मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, पर अगर आप जानने ही जाएंगे कि मैं कोई एक किस्सा उनमें से आपके साथ शेयर करूं, तो वो एक है कि मेरे जो मदर है उनको डॉग्स और कैट्स ये पेट्स वगैरह का ज्यादा शौक नहीं है, नहीं था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे को बहुत ज्यादा, अभी भी है, मुझे अभी भी पेट, आई एम अ बिग पेट लवर। तो मैं अपनी गली से एक छोटा पपी उठा के घर ले आया था, और जितना मैं उससे प्यार नहीं कर रहा था उतने उससे ज्यादा मुझे मार पड़ी थी। जब मैं उसे ले आया और मैंने उसे छुपा के रख दिया, एक मैंने उसके लिए एक डब्बे कार्टन का, मेरे को याद है मैंने गत्ते का एक बॉक्स जो था वो रखा, और मैंने उसके अंदर उसका पूरा सेटअप क्रिएट किया सब। और मैंने मार इसलिए पड़ी थी कि मैंने जो मेरा ही जो ब्लैंकेट था, मैंने वही ब्लैंकेट उसके अंदर रख दिया था, उसको उसको पीको उसके ऊपर बिठा दिया था। मुझे बहुत मार पड़ी थी उस वक्त मेरी मम्मी से कि व्हाई आई डिड दैट। मुझे अच्छी तरह वो किस्सा कभी नहीं भूलता।
0: वाओ, ये छोटी छोटी शरारतें होती हैं दोस्तों जो हम बचपन में करते हैं, और खास करके जो गगन जी ने बताई, पेट को घर के एक छोटे से पिल्ले को घर पे ले आने वाली, तो ये हरकत ना बहुत बच्चे करते हैं और बेचारे सबकी बहुत पिटाई होती है। कोई एक आधी बच्चा होता होगा जो शायद उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर
1: ले, हाँ बिल्कुल,
0: और जिसने ये ना किया हो। ये बिल्कुल सही बात है यार, बच्चों का दिल वैसे ही होता है, मतलब वो पपी में भी उनको बच्चा ही दिखता है, तो उनके साथ वो खेलना चाहते हैं, सिंपल
1: जी,
0: ब्यूटीफुल। तो चलो दोस्तों, आप अपने बचपन की कोई शरारत याद करो, क्या थी वो, संभव हो, इम्पॉसिबल हो, तो हमारे साथ शेयर करो, बड़ा मजा आएगा। चलिए तब तक हम लोग गगन जी के ही गाए हुए ये गीत सुने और फिर आगे बढ़े।

0: बहुत खूब। चलो
1: थैंक यू सर।
0: अब क्या हुआ गगन जी, छोटे से शरारते करते करते करते करते हम बड़े हो गए। ओके
1: जी हाँ जी।
0: प्रोफेशन में आ गए, कुछ मैच्योर भी हो गए, जिंदगी को समझने लगे।
1: बिल्कुल।
0: कोई ऐसा मोमेंट,
1: जिम्मेदारियों
0: में आ गए, ठीक है ना
1: जी।
0: मे बी EMIs चालू हो गई होंगी, लोन चालू हो गए होंगे बस उलझ गए होंगे उसमें तो लेकिन कोई ऐसा पल अभी या कुछ समय पहले कभी भी आया होगा तो ऐसा कौन सा पल था जब आपको ये लगा कि यार मैं तो बदल गया हूं? कौन सा ऐसा पल था, कुछ याद है आपको, जब आपको रियलाइज हुआ हो रही यार मैं क्या था, क्या हो गया?
1: बिल्कुल होता है सर, जब मैं अपने कॉलेज पास आउट होके और नई नई जॉब में स्टार्ट हुआ, उस वक्त मेरी उम्र शायद 25-26 साल रही होगी जब मैंने जॉब में आया था मैं, और उस अब मैं और जब आज मैं इस मुकाम पर बैठा हुआ हूँ, मैं एक अच्छे बड़े रियल एस्टेट कंपनी में बैठा हुआ हूँ एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर, तो अब और तब के स्वभाव में बहुत ज्यादा फर्क है। जो मैं खुद ये बात अपने लिए ऑब्जर्व करता हूँ कि पहले अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत क्विक डिसीजन मेकर उस उम्र में शायद मैं था, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, अब मैं बहुत सहजता से और स्वभाव से बहुत ज्यादा विनम्रता से बात करने लगा हूँ और चीजों को बहुत अलग वे में देखने लगा हूँ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्टेन एज के साथ साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके अंदर ये बदलाव आ ही जाता है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि दिस इज एक्चुअल मी, यही होना चाहिए एक व्यक्ति को। आप अग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, क्विक डिसीजन, ये हमारी, हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं होता। उस स्वभाव के चलते हम कई फैसले ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत गलत ले लेते हैं जिसका जो रिजल्ट है हमें बहुत बाद में समझ आता है। तो अपने सारे लिसनर्स को मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि बोलने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले एक बार जरूर उसे दोबारा विचार कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए।
0: That's right. That's very right. बिल्कुल। Moreover, गगन मैं आपको सच बताऊं, अभी पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, शायद हफ्ता भर हुआ होगा या 10 दिन हुआ होगा मे बी, आई हैव रियलाइज्ड एट दिस एज नाउ कि यार कोई मैसेज आता है या कोई फोन कॉल आती है कि जी ऐसा हो गया, मतलब जैसे मैं कॉलेज में जाता हूं तो वहां पर यह हुआ कि साहब बच्चों की जॉब नहीं लगी है, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक सेकेंड में बहुत तेज गुस्सा आता है कि अरे यार ये क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने ठेका लिया हुआ है क्या यार, एक बात कह रहा हूं। लेकिन फिर पिछले 10 दिनों में, समझो 15 दिन हो गए होंगे, ये रियलाइज किया कि ऐसी कोई भी बात आ जाए ना, चुप हो जाओ, रिएक्ट ही मत,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वेट फॉर सम टाइम, जस्ट लाई लो, स्लीप ऑन इट।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, मानता हूं बहुत परेशानी हो जाती है, लेकिन दोस्तों ट्रस्ट मी, पिछले 10-12 दिनों का एक्सपीरियंस है मेरा, जस्ट लीव इट अलोन। किसी मैसेज का जवाब भी मत दो, कोई फोन का कॉल भी मत जवाब दो, भाई उन्होंने बोल दिया चुप करके, आपने सुन लिया, काम खत्म, ओके आलसी खत्म।
1: बिल्कुल,
0: कुछ समय बाद ही कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके दिमाग में आ जाएगा।
1: कई बार सर चुप रहना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, हर बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है,
0: कोई जरूरी
1: प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। मेरा अब ये मानना है कि चुप रहने से भी बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि बात को बढ़ाया ही जाए।
0: दैट्स वेरी राइट। तो थोड़ी सी फिलोसफिकल जरूर लगती है बॉस ये बातें दोस्तों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी इसको फील कर रहे होंगे और हम भी फील कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लेते हैं ना कि यार ये सच्चाई है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए इन्हीं विचारों को जरा सा और गहरा सोचते रहिए, लेकिन रुकिए गगन जी के इन गीतों का आनंद भी उठाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।

0: बखूब, अमेजिंगली ब्यूटिफुल।
1: थैंक यू सर।
0: गगन जी, चलो आपने कहा कि कई बार चीजों पर शांत रह जाना, चुप रह जाना ही ठीक है, चाहे फिर वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो जाता
1: जी।
0: आपने भी सीख लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सभी लोगों ने सीख लिया, हमने भी सीख लिया। लेकिन यार फिर भी कभी कभी तो पांव फिसल ही जाता है ना, तो आप बताओ किस बात पर आपको बहुत जल्दी सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है?
1: सर ये शो बहुत लोगों ने सुनना है और उन्हें मैं ये जाहिर कर दूं कि मुझे इस बात पे गुस्सा, ये तो मेरी कमजोरी पकड़ने वाली बात है।
0: नहीं तो हम केयरफुल रहेंगे ना यार कि हम ऐसी हरकत ना करें।
1: सबसे अहम बात जो है सर, जो मुझे बहुत बुरी लगती है और जिसमें मुझे बहुत ज्यादा एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता है, वो दो ऐसी बातें हैं। एक ये कि जहां मुझे लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरा नाम जोड़ा गया या मुझे उसमें इन्वॉल्व किया गया, तो मैं चुप रहना फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और दूसरा ये कि अगर मैं आपके साथ सच्चा हूं तो अगर आप आगे से मुझे झूठ बोलते हैं तब भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं हमेशा अपने दोस्तों को भी, अपने चाहने वालों को भी, सबको यही बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी करना, बस मुझसे झूठ नहीं बोलना।
0: ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट।
1: क्योंकि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कई लोग कहते हैं, मेरे रोज के जो मुझसे मिलने वाले लोग हैं, कई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं, तो दे ऑल्सो से कि गगन तेरा जो मूलांक है ना वो 8 है, यू आर रियली मतलब ब्लेस्ड विद दैट ऑरा एंड दैट एनर्जी। जो मूलांक 8 जो है वो शनि देव से प्रभावित रहते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि यू आर एग्जैक्टली दैट व्हाट नंबर 8 इज। तुम बिल्कुल वही हो। तो अपने काम को इतनी ज्यादा अहमियत देते हो कि फैमिली, दोस्त, यार, सबसे पहले अपने काम को प्रेफरेंस देते हो, उसके बाद तुम्हारे लिए सब लोग आते हैं। तो मूलांक 8 जो है तो वो इसी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और यू आर एग्जैक्टली दैट। मैं सुबह अपने टाइम से पहले ऑफिस पहुंचता हूँ और टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ऑफिस से जाता हूँ। और मेरे लिए आज भी मुझे पता है कि मेरा काम सबसे पहले है, काम के बाद ही मैं आगे, उसके बाद सबको रखता हूँ।
0: आई अंडरस्टैंड, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड। और ये एक पर्सनल ट्रेट होता है दोस्तों, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्सनालिटी है जो हर व्यक्ति अपने साथ कैरी करता है, वो अलग अलग होती है। तो आज हमें मौका मिल गया गगन जी की पर्सनालिटी को और गहरे समझने के लिए। सो दैट्स वेरी वेरी नाइस। आइए दोस्तों फिर हो जाएं ये गीत गगन जी के, और फिर इसके बाद विल टॉक मोर अबाउट गगन जी।

0: अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चलो गगन जी, अब आपकी थोड़ी संगीत, आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले ली हमने कि आपका बचपन में शरारतें, देन आपने कब रियलाइज किया दैट, या रियलाइज किया कि आप बदल गए, फिर आपने रियलाइज किया कि चुप रहना क्यों इंपॉर्टेंट है या मजेदार है या बेनिफिशियल है, एंड देन आपका जो पर्सनल ट्रेट है कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है, हमें वो भी पता चल गया। अब अगर आपके म्यूजिक की बात करें तो दो ऑफ कोर्स ये सवाल मैं पिछले प्रोग्राम में आपसे सर्टनली पूछ चुका हूं, लेकिन फिर भी हमारे नए जो सुनने वाले लोग हैं जो आज आपको सुन रहे हैं वापस से, दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट इट कि किस तरीके का म्यूजिक पर्सनली अगर आपको गाना ना हो, फर्ज कीजिए, क्योंकि गाना तो मैं मानता हूं आप अपने आप को खुश करने के लिए और अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए गाते होंगे, लेकिन सुनने में आपकी पर्सनल चॉइस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक टू लिसन?
1: सुमीर जी, मैंने पिछली बार भी मुझसे सवाल किया था और मैं आज फिर अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं

0: 87 बॉर्न, और मैं मुझे कह सकते हैं ओल्ड स्कूल बॉय, जो जो वर्ड बना है ना वो एग्जैक्टली मेरे लिए बना है। मैं आज की इस जनरेशन में 80s और 90s के गाने ही सुनता हूँ, वही पसंद करता हूँ और वही गाता हूँ। मुझे देख के कई लोग कहते हैं कि आप पंजाबी गाने नहीं गाते,
1: अच्छा,
0: बट मेरा रिप्लाई यही होता है कि नहीं जनाब, मैं पंजाबी गाने नहीं गाता हूँ। मैं आई एम अ सिख जेंटलमैन, बट मैं पंजाबी गाने नहीं गाता हूँ। मेरे को वही, मेरे उसी ऑरा में ही रहना पसंद है जो मेरे डैड के टाइम से मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है। मेरे डैड भी बहुत म्यूजिक लिसनर थे, गाते भी थे, शौक से गाते थे, बट उनके शौक हम में आगे आए और हम उस शौक को आगे ले आए कि मैं गाने लग गया। वो गाते नहीं थे, मैं पैशनेटली प्रोफेशनली भी गाने लगा, मैंने लाइव शोज किए, इंटरनेशनल शोज भी किए।
1: सो दिस चॉइस ऑफ म्यूजिक गगन जी हैज, हम लोगों को ये पता चला आज, बहुत बढ़िया। चलिए फिर हो जाए फिर एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत मेलोडियस मुंडा जी की ही आवाज में।

0: बहुत बहुत खूब गगन भाई, बहुत खूब।
1: थैंक यू सर।
0: चलो फिर हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, पुराने नए, वैसे तो नए बहुत ज्यादा है, लेकिन सब लोगों को एक बार फिर से क्या संदेश देना चाहोगे, क्या बात करना चाहोगे, कुछ बात कर लो दिल से दिल की।
1: अगर ये समय अब जाते जाते बात करने का ही है तो कुछ आपको भी, आपके लिए भी मैंने कुछ लिखा था जो मुझे, हाँ जो मैंने लिखा था वो मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ आपको भी। ये मेरे दिल से ये मैंने लिखा था आपके लिए भी कि हम जो मिले हैं तुमसे, जब से आपसे मिला हूं मैं, हम जो मिले हैं तुमसे ये कोई इत्तेफाक थोड़ी है।
0: अच्छा।
1: मिलके तुम्हें छोड़ने ये कोई मजाक थोड़ी है।
0: ओके।
1: अगर होती तुमसे मोहब्बत एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी मोहब्बत है किसी का हिसाब थोड़ी है।
0: किसी का हिसाब, वाह वाह वाह वा, क्या बात है। ये कोई डेबिट क्रेडिट थोड़ी है।
1: हाँ, अब आप ढूंढोगे मेरी इस बात का जवाब। बींगन आज समीर जी, आप जवाब देने में आपसे ज्यादा माहिर कोई भी नहीं।
0: अरे नहीं साहब,
1: लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि अब आप ढूंढोगे मेरी इस बात का जवाब, पर ये मेरे दिल की आवाज है, कोई किताब थोड़ी है।
0: हाय हाय, क्या कह दिया। क्या कह दिया, क्या कह दिया। तो साहब सायना की जवाब तो हम नहीं दे सकते इस बात का, क्योंकि लाजवाब हो चुके हैं, कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी ने एक और एहसान कर दिया हम पर, आपसे मिला के, आपसे मिला के।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आई एम ऑनर्ड जो आपसे मुलाकात हुई आपके थ्रू। कितने ही श्रोताओं से, लिसनर्स से मेरी मुलाकात हुई, कईयों के मेरे को मैसेजेस भी आते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, जो शो सुनते हैं उनके मेरे को मैसेजेस आते हैं। कई ऐसे लिसनर्स हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि आपने कितने ही टाइम से कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है वो मैसेजेस देख के, और मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, वक्त का थोड़ा सा कमी जरूर है कि टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन जब भी वक्त मिलता है मैं जरूर रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं जल्द ही आप सबके लिए अगली जो रील्स है वो पोस्ट करूंगा गाकर, और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल सकूं आप सबके लिए।
0: Certainly. We'll keep on waiting. और तब तक तो खैर आपके इन गीतों का मजा हम लेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, और फिर मौका लगा कोई ना कोई ऐसा मौका अपने आप ऊपर वाला भेज ही देगा कि फिर से आपकी और मेरी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, और आपके गीतों का एक महफिल जमेगी।
1: डेफिनेटली सर।
0: चलो गगन जी, आप अपना ख्याल रखना, गाते रहना, टेंशन मत लेना, मस्त रहना, गुस्सा मत करना।
1: मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ सर, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ, मस्त मौला रहता हूँ, हंसता गाता रहता हूँ। गुस्सा तो, गुस्सा करने से कोई बेनिफिट नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर यू इग्नोर एंड मूव ऑन।
0: चलो सर, थैंक यू सो मच गगन भाई, फिर मुलाकात।
1: थैंक यू सो मच सुमित सर, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: लीजिए दोस्तों, दिव्य दर्शन का एक और पवित्र कार्यक्रम, एक और पवित्र एपिसोड हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं रोहिणी जी। और जैसा मैं हमेशा करता हूं, जिससे कि जो भी हमारे मेहमान हैं वो सीधे सीधे आपसे बात करें, मैं बीच में से हट जाऊं, मैं रोहिणी जी का स्वागत करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करती हैं। तो रोहिणी जी, हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए, उनके सामने आइए, हमें बताइए आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
2: मेरा नाम टीवीबी रोहिणी है। बेसिकली मैं हैदराबाद की नेटिव हूँ और रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में
1: जी।
2: ऑल माय लाइफ, जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक तो हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉरेक्स मैनेज करती थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ही वाज अ डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वी लिव्ड इन पंडारा रोड। ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा, ये हमारा।
1: दैट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पंडारा रोड बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है, और वहां पर रहकर हम बात करेंगे रोहिणी जी से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, समझा दुनिया को, जिंदगी को समझा। तो रोहिणी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने आप को पहचानने की। तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करने कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या, और सबसे पहले आपको आध्यात्म के बारे में कब पता चला, किसने बताया?
2: ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे आपने इस सुंदर दिव्य दर्शन नाम से जो चैनल आप कर रहे हैं काम, इस नाम से उस पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और सुंदर तरीके से अगर बताएं तो आध्यात्म तो हर घर में, एवरीवन, एवरी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो पूजा पाठ अपने घरों में करते ही हैं। तो आस्था ही हमने समझा कि स्पिरिचुअलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरुआत हुआ था, आई वुड से कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि मेरी आत्मा ने या मेरे सोल ने ऐसे पेरेंट्स को चुना जो आंध्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं
1: जी।
2: तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग यू नो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, उनको मैं बचपन से देखती रही हूँ, और मुझे लगा कि वही आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। बट दैट इज ओनली रिचुअल दैट वी वर डूइंग इट, और आत्मा को अपने इवोल्यूशन के लिए जो चाहिए था वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे आई हूँ, इस पृथ्वी पे आके क्या मकसद है मेरा और मुझे कहाँ जाना है
1: जी।
2: अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर उठे तो आप समझो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो। देयर एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप बिगिंस। और वो कब होता है, जनरली हम देखते हैं कि या तो मन बहुत ही खुश है या फिर बहुत ही सैड है। जैसे घर पे आपने अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को, किसी को देखा, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे, एंड यू सी द बॉडी एंड यू सी दैट ही इज नो मोर इन इट, देयर इज नो लाइफ, आत्मा कहीं चली गई। ये सिर्फ शरीर है, और वो जब देखते हैं वो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है अंदर कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो
1: जी
2: ये वाला जो प्रश्न आपने बोला मेरे स्पिरिचुअलिटी का कब शुरू हुआ, तो ये तो मेरे को लगता है कि 35-36 इयर्स ओल्ड जब मैं हो गई, आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 34, उसके बाद से ये डीपर सर्च जो है ये हमारा जर्नी इस सर्च पे शुरू हुआ।
1: ओके
2: सो दिस इज व्हाट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी।
1: जी
2: तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को समझ, जो मुझे समझ में आया अभी तक, तो मैं ये बता सकती हूँ आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी
1: जी
2: और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे ये ऐसा लगता है। आई एम देयर फ्रॉम 1996 से मैं कुछ साधना कर रही हूँ जिससे मुझे इस बात पे कॉन्स्टेंटली विथ कमिटमेंट चलने का मौका मिला।
1: जी बहुत खूब। इसी तरीके की यात्राएं हमारे अपने जीवन में भी होंगी। आज जब रोहिणी जी ने कहा है तो हो सकता है आपको भी आपकी यात्रा याद और आ रही हो। दोस्तों चलिए उस यात्रा पर चलते हैं अपने को समझने की और इस भजन को सुनते हुए।

0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं अपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड